0: Constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
1: श्रावण हमें जोड़ता है भगवान से, रक्षाबंधन हमें जोड़ता है अपनों से, और कुछ रिश्ते एक डोर से शुरू होते हैं और एक अनमोल निशानी के साथ हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। हर रिश्ता अपनी एक कहानी लिखता है और पीएमजे ज्वेल्स उस कहानी को देता है सोने की चमक, हीरों की रोशनी और क्राफ्टमैनशिप जो पीढ़ियों तक साथ रहे।
2: BMJ Jewels now open on 13215 Main Street, Frisco.
3: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
4: Floors clean.
5: Check.
4: Windows clean.
5: Check.
4: Kitchen clean.
5: Check.
4: Air ducts clean.
5: Wait, air ducts भी clean करना होता है?
6: बिल्कुल, जो दिखता है वो तो हम clean कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं दिखता उसका क्या? That's where Duct Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology, no roto brush, plus dryer vent or chimney cleaning. घर हो, restaurants, hotels, offices या फिर any business, Duct Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
7: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338, 4697343338। myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
8: अरे तीन पे क्यों अटक गया?
9: क्योंकि Sal's Hot Chicken भी तीन पे पहुंच गया।
2: Plano Richardson and now at a brand new location. Sal's Hot Chicken coming soon.
10: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी, एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड। अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फाइनेंशियल रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस।
2: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर। मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली।
11: आपके सुहाने सफर का साथी फाइनेंशियल रेडियो।

मॉर्निंग एंड वेलकम बैक दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यू आर लिसनिंग टू द फनीशिया नेटवर्क ब्रॉडकास्टिंग नॉनस्टॉप बॉलीवुड एंटरटेनमेंट हियर ऑन 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो एंड आल्सो ऑन 104.1 एफएम रेडियो कैरवान। मोर वैरायटी है, मोर चॉइसेस है और मोर फन भी है। और दोस्तों मैं हूं आपकी होस्ट और आपके इस रिले सफर की साथी, आपकी अपनी अपूर्वा। एवरी संडे की शाम 6 से 8 रहता है आपका और मेरा साथ। वैसे तो आज ये साथ बोनस हो चुका है और 1 घंटा हमें एक्स्ट्रा मिल चुका है, तो आज का साथ रहने वाला है रात के ठीक 9 बजे तक। स्टूडियो के घड़ी में हो चुके हैं 6 मिनट्स पास्ट 7 और आज के शो में हम तो गाने सुन रहे हैं कमाल धमाल और पूरे के पूरे अमेजिंग टेकन फ्रॉम द 90s। तो अगर आपको भी 90s का कोई गाना सुनने की इच्छा आकांक्षा और मनोकामना है, गिव मी अ कॉल 972-235-5555।

लवली लवली ट्रैक टेकन फ्रॉम द मूवी हर दिल जो प्यार करेगा। ऐसे ही कमाल धमाल के गाने चलते रहेंगे दोस्तों, बट उससे पहले कुछ बता दूं आपको दैट देयर इज अ ब्रेकिंग न्यूज इज ऑन पेज 3। डैलस हैज गॉट अ न्यू फ्लेवर एट हब 121 पेज 3 इटरी वेयर बोल्ड इंडियन स्ट्रीट फूड मीट्स मॉडर्न फ्लेयर। कबाब्स, चाट, फ्यूजन बाइट्स एंड मॉकटेल्स, वाइब्रेंट वाइब्स फॉर ब्रंच, लंच और डिनर, परफेक्ट फॉर फूडीज, डेट्स एंड फ्लेवर चेजर्स। विजिट page3eatery.com फॉर फर्दर डिटेल्स। अगला गाना रीता की रिक्वेस्ट पर आप सबके लिए।

बहुत ही खूबसूरत गाना है दोस्तों, ये 90s का मेरा वन ऑफ द फेवरेट्स है, संग बाय नाना दादा अलका याग्निक और उदित नारायण। मोस्टली 90s के गाने इन दोनों ने ही गाए हैं और क्या कमाल के गाए हैं। दिस वन वाज टेकन फ्रॉम द मूवी राजा। आई एम श्योर आप सभी लोग ये गाने एंजॉय कर रहे होंगे। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि पुराने गाने जब ऐसे बाहर आते हैं या फिर रेडियो पे सुनने मिलते हैं तो बहुत ही मजा आ जाता है, अलग सा एक नॉस्टैल्जिया में हम लोग चले जाते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर कीप योर कॉल्स कमिंग इन। अगर आपकी भी कोई 90s का गाना सुनने की इच्छा आकांक्षा और मनोकामना है, गिव मी अ कॉल, 972-235-5555 है स्टूडियो का नंबर। अगले गाने की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले बता दूं दैट अटेंशन टेक्सास बिजनेस ओनर्स, looking if you're looking for a smarter commercial energy solution, trust Tara Commercial Energy, which is proudly serving Texas businesses since 2002 with competitive rates, reliable service and customized energy plans. You can call them. The number to call is 844-428-2808 or you can visit their website, which is taraenergy.com today.

0: जिस कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
4: Everyone's mind at the moment in Dallas, because the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights bhi.
2: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway, because miracles happen in Mirage.
5: बेटा, 95% आए?
6: हाँ मम्मी।
5: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
7: मेरा?
5: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
7: वो
2: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। AG Fintechs helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintechs.com. Call 972-618-8555. AG Fintechs, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
8: Ya pehle us aadmi ka sign lekar aao jisne mere haath pe ye likh diya tha.
9: Sign milna mushkil hai, lekin Plano mein zabardast tha na, uska signature mil gaya. Signature cuisine in Plano. Famous Nihari, sizzling grills, crispy fried chicken और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स, और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो। विजिट signaturecuisine.net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
10: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
11: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
12: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
13: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
9: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
14: ड्यूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
15: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
14: कैसे?
15: पेज 3 ईटरी?
14: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
15: ड्यूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्ट एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
14: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
16: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट।
17: When life feels too loud, it's time to listen within. Join Miracle Rhythms, a 4-day meditation, bodywork and movement retreat by Osho Universal at Osho Kevalya Dham in Denison.
18: My name is Ritika Anand, sannyas name Ma Prem Jaya. I am coming to Dallas on the 27th, 28th and 29th of August.
17: Experience meditation, breath work, intuitive movement, music and inner healing. Limited to just 25 participants. Book now at oshouniversal.org or call 214-395-6757.
19: Tracks that put you on the right track.

वेलकम वेलकम वेलकम दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। स्टूडियो की घड़ी में हो चुके हैं 35 मिनट्स पास्ट 7 और मैं हूँ आपकी अपनी आरजे पूर्वा। एवरी संडे की शाम 6 से 8 रहता है आपका और मेरा साथ, बट आज का ये साथ बोनस होकर 1 घंटे का बढ़ चुका है। तो आज आपका साथ देने वाली हूँ रात के ठीक 9 बजे तक। जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है उन सभी को बता देती हूँ कि ये है आपका अपना शो जिसका नाम है ये शाम मस्तानी। एवरी संडे की शाम हम जुड़ते हैं और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, हमारी शाम मस्तानी, दीवानी, तूफानी, बेगानी, रेनी, फॉगी, गर्मी वाली। और जी हाँ, आज के जैसे कड़ाके की गर्मी वाली कैसी हो, हमें तो अच्छी लगती है, बहुत ही सुरीली और म्यूजिकल गाने ही ऐसे कमाल धमाल के चलते हैं यहाँ पर, कुछ मेरे कुछ आपके पसंद के। 90s का एरा चल रहा है दोस्तों, 90s के गाने आप सभी को सुनवा रही हूँ। इसमें आपके गानों की एडिशन करनी है, गिव मी अ कॉल, 972-235-5555 है स्टूडियो का नंबर।

0: PM to 3 PM. This weekend, let the flavor lounge do the cooking.
1: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे?
2: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
1: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
2: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
1: सच में? सब संभालेंगे?
2: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
0: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
3: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
4: कुछ भी नहीं. Oura Debt Relief will do it for us.
3: क्या मतलब?
4: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
3: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
4: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled and they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
3: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
5: Don't let debt ruin your life. Visit oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
6: अरे तीन पे क्यों अटक गया?
1: क्योंकि साल्स हॉट चिकन भी तीन पे पहुंच गया।
0: प्लेनो रिचर्डसन एंड नाउ एट अ ब्रांड न्यू लोकेशन, साल्स हॉट चिकन कमिंग सून।
7: तुझे देखा तो ये जाना सनम।
8: 90s का रोमांस, 90s की मेलोडीज और वो लेजेंडरी आवाज। DFW गेट रेडी टू रिलीव द मैजिक ऑफ कुमार शानू लाइव अनफॉरगेटेबल 90s सितंबर 11th एट द ब्रांड न्यू रॉबिन्सन फाइन आर्ट्स प्लेनो। गाइए, झूमिए और फिर से जी लीजिए अपने फेवरेट 90s के गाने। लिमिटेड सीट्स, फ्री पार्किंग और मीट एंड ग्रीट ऑप्शंस अवेलेबल। फॉर टिकट्स विजिट eventbrite.com या फिर कॉल करें 214-869-2668 पर। प्रेजेंटेड बाय फोकस एंटरटेनमेंट एंड फॉर्चून ग्रुप।
9: नेशन का फन स्टेशन, फनेशियर रेडियो।

नेशन के फन स्टेशन फनिशा रेडियो पर दोस्तों आप सभी का ब्रेक के बाद स्वागत है। दोस्तों यू आर लिसनिंग टू द फनिशा नेटवर्क ब्रॉडकास्टिंग नॉनस्टॉप बॉलीवुड एंटरटेनमेंट हियर ऑन 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो एंड आल्सो ऑन 104.1 एफएम रेडियो कैरावान, जहां पर मिलती है आपको मोर वैरायटी, मोर चॉइसेस, मोर फन ओनली अंडर वन नेटवर्क व्हिच इज फनिशियास नेटवर्क। और दोस्तों मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी सुरीले सफर की साथी आपकी अपनी अपूर्वा। एवरी संडे की शाम 6 से 8 देती हूं आपका साथ, बट आज का ये साथ बोनस हो चुका है और 1 घंटा हमें एक्स्ट्रा मिल चुका है। स्टूडियो के घड़ी में हो चुके हैं दोस्तों 5 मिनट्स पास्ट 8 और आज का आपका और मेरा साथ रहने वाला है रात के ठीक 9 बजे तक। अभी तक मैं आपको गाने सुनवा रही थी पूरे के पूरे 90s के ऑसम ऑसम गाने, कुछ मेरे कुछ आपके पसंद के। तो चलिए भाई अभी थोड़ा सा गियर शिफ्ट कर लेते हैं, अभी थोड़ा सा 2000s में आते हैं और अच्छे अच्छे गाने वहां से सुनते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेकर चलती हूँ आपको इस वाले गाने की तरफ, टेकन फ्रॉम द मूवी अशोका।

शान और अलका याग्निक की आवाज में सुने थे दोस्तों आप ये गाना टेकन फ्रॉम द मूवी अशोका। शाहरुख खान और करीना कपूर पे पिक्चराइज थी ये मूवी। अगर नहीं देखी होगी तो गिव इट अ वॉच। थोड़ी सी ओल्ड स्टाइल है बट अच्छी है। My Time Equity, which is led by CPA Sudhir Pai, helps individuals and families build smarter financial strategies through portfolio management, real estate opportunities, and alternative investments. Whether you are planning for long-term wealth, retirement, or growing your investments, My Time Equity offers personalized solutions designed around your goals. Visit mytimeequity.com or you can call them. The number to call is 469-702-1272 today.

ओहो, मजा ही आ गया दोस्तों ये गाना सुन के। सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में सुने थे आप ये गाना, टेकन फ्रॉम द मूवी खाकी। और क्या कमाल की दिखी है इसमें ऐश्वर्या, ओ माय गॉड। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो प्लीज प्लीज प्लीज गिव इट अ वॉच। जितना भी आपको ऐश्वर्या पे प्यार आता होगा, इस मूवी को देखने बाद उतनी ही आपको ऐश्वर्या डरावनी और फिर निगेटिव रोल में दिखी है। यहाँ पर इतना अच्छा सा ट्विस्ट आता है इस मूवी में एक पॉइंट पे कि ऐसा लगता है कि भाई साहब ऐश्वर्या कैसे ऐसे कर सकती है अक्षय कुमार जो उनसे बे इंतहा प्यार करते हैं। गिव इट अ वॉच, अगर नहीं देखी है तो देख लीजिए। मूविंग ऑन दोस्तों, आपको बता देती हूँ दैट दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटेक्स, व्हिच इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म इन द यूएस। दे ऑफर इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज विद अनटैप्ड पोटेंशियल फॉर बोथ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस। दे आर ट्रस्टेड, एफिशिएंट एंड गेट यू रेडी फॉर द फ्यूचर। यू कैन कॉल देम, द नंबर टू कॉल इज 4699429888, और यू कैन विजिट देयर वेबसाइट व्हिच इज AGFintechs.com।

भाई दोस्तों, क्या गाना था! इतना अच्छा गाना और उसकी दो लाइनें अगर मैं ना गुनगुनाऊं तो ये तो मेरे उसूलों के खिलाफ है, राइट? तो ये रही दो लाइनें इस गाने की आप सबके लिए।

जी हाँ दोस्तों, तो ये दो लाइनें थी आप सबके लिए, आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। विद दैट लेकर चलती हूँ आपको अगले अमेजिंग गानों की तरफ।

क्या बात है, क्या बात है। दो पावर पॉक पावर पैक लेडीज ने ये गाना गाया है, उषा उतुप जी और रेखा भारद्वाज जी के लिए बहुत बहुत बड़ा वाला शाउट आउट। इतनी अमेजिंग, इतना फोर्सफुली गा देती है कि बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उफ, क्या ही अमेजिंग गाना था। अगले ऐसे ही अमेजिंग गाने की तरफ जाएंगे दोस्तों। उससे पहले बता दूं दैट हाउ मच टाइम डज योर डॉक्टर स्पेंड विथ यू। 5 मिनट्स, 10 मिनट्स एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। एवरी अपॉइंटमेंट इज स्केड्यूल्ड फॉर 30 मिनट्स बिकॉज ट्रूली अंडरस्टैंडिंग योर हेल्थ टेक्स टाइम फॉर यू, फॉर योर फैमिली एंड फॉर द हेल्थ ऑफ आर कम्युनिटी। Passion Health Primary Care is there. 30 minutes is all it takes to complete your annual physical, anxiety care ho ya fir fibro scan ho, for alcohol related liver concerns ho, vitamin B12 deficiency testing ho ya fir more are all available at Passion Health Primary Care. Schedule your appointment today. You can call them. The number to call is 214-666-6259 to book your appointment. Passion Health Primary Care. Your health is our passion.

0: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
1: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
3: Floors clean.
4: Check.
3: Windows clean.
4: Check.
3: Kitchen clean.
4: Check.
3: Air ducts clean.
4: Wait, air ducts भी clean करना होता है?
5: बिल्कुल, जो दिखता है वो तो हम clean कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं दिखता उसका क्या? That's where Duct Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No rotor brush. Plus dryer vent or chimney cleaning. घर हो, restaurants, hotels, offices या फिर any business. Duct Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
6: Dallas, are you ready? Jabu Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 682-551-6500. द जागो टाइम्स कमीशन, जागो भी जगाओ भी। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर पन एशिया।
7: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है,
8: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
7: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
9: तुमसे मिलके दिल का है।
8: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
7: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

मोर म्यूजिक मोर मैजिक और मोर मस्ती के साथ दोस्तों आपको फिर से एक बार वेलकम करती हूँ। स्टूडियो की घड़ी में हो चुके हैं 33 मिनट्स पास्ट 8। बस कुछ चंद मिनटों का सफर बचा है दोस्तों आपका और मेरा, और आज की शाम, आज का हमारा साथ 6 से 8 ना होकर 6 से 9 था। 1 घंटे का बोनस हमें मिल गया था, इससे कई ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। जिन्होंने अभी ट्यून इन किया है उन सभी को बता देती हूँ, आप सुन रहे हैं मुझे यानी कि आपकी होस्ट और आपके सुरीले सफर की साथी आपकी अपनी अपूर्वा को, और ये है आपका अपना शो जिसका नाम है ये शाम मस्तानी। 6 से 8 के बीच में दोस्तों हमने गाने सुने कमाल धमाल के 90s के, और अभी हम गाने सुन रहे हैं भाई 2000s एंड अबाव के। बहुत ही कमाल का शो हो रहा है दोस्तों, बहुत ही मजा आ रहा है। गाने इस प्रकार के चल रहे हैं यहाँ पर, कुछ मेरे कुछ आपके पसंद के, विदाउट एनी फर्दर डिले आपको इस कमाल के गाने की तरफ लेकर चलती हूँ। एंजॉय दिस ट्रैक।

0: क्या बात है भाई, इतना कमाल का और इतना एनर्जी का गाना अगर मेरे सामने बजाए तो मैं तो इतना जोर जोर से नाच रही थी दोस्तों स्टूडियो में कि आपको क्या ही कहूँ। इतना कमाल का गाना अगर होगा तो सभी नाचने लगेंगे। आई मस्ट से आई अग्री करते हैं या नहीं? गाना तो बहुत ही कमाल का था, लेकिन फ्रॉम द मूवी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। अभी बारी है एक अच्छे से गिव अवे की है दोस्तों, गौर से सुनिएगा। फन पिज्जा किचन हैज लॉन्च अ ब्रांड न्यू मैक्सिकन इंस्पायर्ड पिज्जा लाइनअप, एंड दीज आरंट जस्ट पिज्जाज, दे आर अ फुल ऑन फ्लेवर फिएस्टा। फ्रॉम द फ्रेश फिएस्टा वेजी ऑन द फायरी पोलो लोको, द सी फूड पैक्ड सिन्योर कैमरॉन, एंड द लोडेड एवरी बाइट इज बोल्ड एक्साइटिंग and made to impress. Head over to Fun Pizza Kitchen and test these new obsession for yourself. New flavors hai, new obsession hai, and for more details, what you can do is you can visit funpizzakitchen.com. और दोस्तों अभी आपको क्या करना है, आपको मेरे सवाल का सिंपल सिंपल सा इजी पीजी सा जवाब देना है। आपको मुझे ये बताना है कि ये जो अगला गाना मैं प्ले करने वाली हूँ वो कौन से मूवी का है। अगला गाना जो यहाँ पर प्ले होने वाला है वो आपको मुझे बताना है कि कौन से मूवी का है, और सही जवाब देने वाले को मिल सकता है $10 का गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्जा किचन, बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। स्टूडियो का नंबर नोट कर लीजिए 9722355555। रख दीजिए अपने स्पीड डायल पे और कीजिए मुझे फटाफट कॉल। ये अगला गाना कौन से मूवी का है आपको मुझे बताना है। सही जवाब देने वाले को मिल सकता है $10 का गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्जा किचन।
1: तैरते नहीं

शेर खुल गए। क्या बात क्या बात क्या बात। विशाल शेखर का म्यूजिक, बिनी दयाल की आवाज। सुने थे आप ये गाना टेकन फ्रॉम द मूवी फाइटर। अगले गाने पे चलेंगे दोस्तों, बस कुछ चंद मिनटों का सफर बचा है आपका और मेरा। लेट्स मेक द मोस्ट ऑफ इट। आपको बता दूंगी दैट इफ यू आर प्लानिंग अ वेडिंग, ग्रेजुएशन, हाउस वार्मिंग और एनी स्पेशल सेलिब्रेशन, बिफोर यू स्टार्ट स्ट्रेसिंग अबाउट वेन्यूज, डेकोर, केटरिंग एंड ऑल द लिटिल डिटेल्स, हियर इज वन नेम यू शुड नो, वेनेसा इवेंट्स। दे मेक प्लानिंग सिंपल बाय ब्रिंगिंग एवरीथिंग टुगेदर इन वन प्लेस, फ्रॉम वेन्यू सिलेक्शन एंड ब्यूटिफुल डेकोर बाय सिग्नेचर इवेंट्स टू फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी and delicious catering exclusively by the renowned Basera Grand, so you can focus on making memories while they take care of the rest. So call Hari Basera today. The number to call is 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.

ऑल राइट दोस्तों, इसी के साथ स्टूडियो की घड़ी में हो चुके हैं 52 मिनट्स पास्ट 8। यही कहूंगी, वक्त हो गया है मेरे जाने का। बहुत बहुत शुक्रिया आज की शाम साथ निभाने का। दोस्तों, आपके साथ से ये सफर बहुत ही खूबसूरत, सुरीला और सुहाना होता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और ये फन एशिया रेडियो का स्टूडियो मेरी हैप्पी प्लेस है। यहाँ पर आकर मैं जितनी हैप्पी हैप्पी होती हूँ, उतना ही हैप्पी हैप्पी आपको बनाने की मेरी इच्छा आकांक्षा और मनोकामना रहती है। With that, दोस्तों, live fully, love passionately and laugh loudly. लेती हूँ आप सबसे विदा इसी thought के साथ और करती हूँ next Sunday, same time, same show, same channel on 104.9 FM पर मिलने का वादा। This is your host RJ Apurva signing off for tonight. Have a great night ahead, Allison. Have a beautiful Monday morning and the rest of the week ahead. Bye bye and good night.

0: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
1: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
0: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
1: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
0: सच में सब संभालेंगे?
1: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
2: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर। Have you thought about what would happen if you or a business partner passed away unexpectedly? The death of an owner can create serious challenges for a business, from ownership disputes to cash flow concerns and family financial needs. A properly structured buy-sell agreement funded with life insurance may help provide the funds needed to purchase a deceased owner's share of the business and allow for a smoother transition to the surviving owners. Life insurance can be used with different buy-sell structures, including cross-purchase and entity purchase arrangements. Protect your business, your partners, and your family. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603 to learn more about business continuation planning with life insurance. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult your attorney and tax advisor regarding buy-sell agreements. Not legal, tax, or investment advice.
3: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
4: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
5: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
2: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
6: तुमसे मिलके दिल का है।
5: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
2: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

0: Dallas, are you ready? Jabu Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500 The Jago Times Commission Jago bhi jagao bhi Exclusive media partner Panacea
1: Same order again? Same pizza, same taste, same story. Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
2: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है
3: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन
4: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस
5: तुमसे मिलके दिल का है
3: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन
4: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क

0: tracks on your airwaves.
1: Turn it up.
0: Brought to you by Club Phonasia.
2: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये।

0: same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
1: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
2: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
3: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
4: तुमसे मिलके दिल का है।
2: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
3: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

0: एंटरटेनमेंट से करते मैड, डैलस में रेडियो का डैड, फनीशा 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply. Sadia.
3: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
4: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
2: 360 shows True Payment presents Sonu Nigam live in Dallas.
5: तुमसे मिलके दिल का है।
4: Saturday September 26th 8:30 PM onwards at the Credit Union of Texas Event Center, Allen.
2: Tickets available at Ticketmaster. For more info, call 855-360-SHOWS. Exclusive media partner, Fun Asia Network.
6: Hi guys, this is Tiger Shroff. Enjoy Fun Asia Radio.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: confidence. I, Sunhee Simon Santiago, and my co-founder, Audra Langston, have coached debate champions, valedictorians, and Ivy League grads. We've created an online third through sixth grade course that isn't just a public speaking class. It's a guide for building lifelong leaders. For more information, visit nextgenspeakersacademy.com. That's nextgenspeakersacademy.com.
1: Beta, 95% aaye?
2: हाँ मम्मी.
1: गुड. अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए.
3: मेरा?
1: हाँ. प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड.
3: वो
4: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. एजी फिनटेक हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज. विजिट agfintechs.com. कॉल 972-618-8555. एजी फिनटेक लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी. सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
5: Hi, this is Vinay Pathak, and you're listening to me on Fun Asia Radio.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड। डैलस में रेडियो का डैड फोनीशिया 104.9 FM
1: Yeah, it's coming up.

0: तंदूरी फ्लेम, चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: हाय, दिस अक्षय कुमार एंड यू आर लिसनिंग टू फनेशिया रेडियो।
2: मत करना, शादी बिल्कुल मत करना।

0: तुम क्या मैरिनेट हुए बैठे हो यार?
1: पीवीएस मॉल में बबीता आ रही है।
2: कौन बबीता यार?
1: कौन बबीता? बबीता कुमारी जहाँ पना, आपकी बेगम बब, मेरी भाभी, वही बबीता जिसके हाथ पे मेहंदी से लिखा जाना था बउआ सिंह।
2: मोहब्बत देख गुड्डू, तेरे भाई के दफन होने से पहले अपना आखिरी सलाम देने चली आई पूरी की।

0: the heartbeat of Dallas. Fun Issue Radio, 104.9 FM.
1: मुझे नहीं पता हमारे बीच कब क्या गलत हो गया, सब खत्म क्यों और कैसे हो गया।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: अजी सुनते हो?
4: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
5: The OG of Tax Planning, AG FinTax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Fun Asia Radio.
6: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
5: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
7: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
8: तुमसे मिलके दिल का है।
5: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
7: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
9: Hi, this is Priyanka Chopra and you're listening to Fun Asia Radio.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देख कर खुश मत होइए, बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
3: Hi, this is Shraddha Pandit and you're tuned into Fun Asia Radio.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

Storming into a million hearts. 104.9 FM. Number one hit station.

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड, डैलस में रेडियो का डैड, फोनेशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: What would happen to your business if a key owner, partner, or top employee passed away unexpectedly? Would revenue, credit, client relationships, or daily operations be affected? KeyPerson Life Insurance can help provide funds to support the business during a difficult transition. Protect the people who help keep your business running. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Benefits and tax treatment depend on individual circumstances. Consult qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice. Sathiya!
1: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
2: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
3: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
4: तुमसे मिलके दिल का है।
2: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
3: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
5: Hi, this is Priyanka Chopra and you're listening to Fun Asia Radio.

से कोई मतलब ना किसी से कुछ लेना ए ए I'm one in a million पर ज्यादा भी उछलेना ना किसी से कोई मतलब ना किसी से कुछ लेना

0: अरे घूट में सोया गया, अरे घूट में सोया गया, अरे घूट में सोया गया, अरे घूट में सोया गया।
1: हम लाइफ पे हाई बॉय, ये तू रख तेरी राय बॉय, ये

चाहे कुछ भी ना करे बेटे उसमें भी स्वैग है, हर घूट में स्वैग है, हर घूट में स्वैग है।

0: अरे घूटो में सोया गया। अरे घूटो में सोया गया। अरे घूटो में सोया गया। अरे घूटो में सोया गया।
1: अभी भी एक घूंट बाकी है।

0: baby.
1: Variety is the spice of our station. 104.9 FM.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
2: Call the SBA Loan Experts.
1: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
2: Call the SBA Loan Experts.
1: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
2: Call the SBA Loan Experts.
1: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338. दैट्स 817-786-3338.
3: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
4: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
3: क्या मतलब?
4: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
3: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
4: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
3: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
5: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
6: अरे तीन पे क्यों अटक गया?
7: क्योंकि साल्स हॉट चिकन भी तीन पे पहुंच गया.
8: प्लेनो रिचर्डसन एंड नाउ एट अ ब्रांड न्यू लोकेशन. साल्स हॉट चिकन कमिंग सून.
9: व्हेन लाइफ फील्स टू लाउड.

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग।
1: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड। अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फाइनेंशियल रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस।
2: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर। मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली।
3: होचो
4: इट्स होको।
5: अरे बस भी करो यार।
6: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है।
0: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है, एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा।
2: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में, वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस। टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज।
7: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
8: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
9: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
10: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
11: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
10: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
11: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
10: सच में सब संभालेंगे?
11: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
2: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
0: सुनो, कल बहुत काम है, पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली, कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
2: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
0: कहाँ,
12: फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, केटरिंग सर्विसेज, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी, एंड इनसाइड फूडिस्तान एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइव एंड अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
8: फूडिस्तान इन ऑबरी, मेंशन फन एशिया एंड एंजॉय 10% डिस्काउंट।
13: ये तारा वो तारा हर तारा।
2: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
14: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident, and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: श्रावण हमें जोड़ता है भगवान से, रक्षाबंधन हमें जोड़ता है अपनों से, और कुछ रिश्ते एक डोर से शुरू होते हैं और एक अनमोल निशानी के साथ हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। हर रिश्ता अपनी एक कहानी लिखता है और पीएमजे ज्वेल्स उस कहानी को देता है सोने की चमक, हीरों की रोशनी और क्राफ्टमैनशिप जो पीढ़ियों तक साथ रहे।
1: पीएमजे ज्वेल्स नाउ ओपन ऑन 13215 मेन स्ट्रीट फ्रिस्को। Immigration is a serious concern for our community, and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, firm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
2: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
3: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
4: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं।
3: तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
5: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
4: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
6: अरे तीन पे क्यों अटक गया?
7: क्योंकि साल्स हॉट चिकन भी तीन पे पहुंच गया।
1: प्लेनो रिचर्डसन एंड नाउ एट अ ब्रांड न्यू लोकेशन, साल्स हॉट चिकन कमिंग सून।
8: अरे यार, घर मिल गया।
9: घर तो देख रहा हूँ, लेकिन इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग।
1: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट। अजय इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर। वो सिर्फ घर नहीं दिखाते, हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं, बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं, बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं और क्लोजिंग पर कैशबैक भी।
9: सीरियसली, अच्छे सर्विस भी और कैशबैक भी?
1: बिल्कुल। विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग अबाउट हिम।
10: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
11: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
1: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal. Sadia!
12: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
13: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
1: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
14: तुमसे मिलके दिल का है।
13: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
1: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, aur ab ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender and MLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Yaar, modern Manga Sutra dhoonte dhoonte thak gayi hoon.
7: To carrot lane chalo, they now have a store in Frisco and the best collection of modern Manga Sutras.
6: Seriously? Kaisa collection hai?
7: Minimal, diamond, elegant, everyday styles. You will probably spend more time choosing than shopping.
8: Find the Mangalsutra that matches your style at Carrot Lane, home to the largest collection of modern Mangalsutras. Carrot Lane, now open in Frisco next to Tanishq.
9: Dad, property papers kahan hai?
10: Laptop mein.
9: Investment?
10: Google Drive.
9: Insurance? Passwords?
10: Beta, don't worry, mujhe sab pata hai.
9: Dad, वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है।
8: Your family shouldn't have to search for answers when you're not there to give them.
11: Hi, this is Deepthi Verma with NRI Wealth. With proper estate planning, protect what you have built and give your family clarity and control.
8: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess. Leave a plan.
12: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दूंगी।
13: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
8: अब करेगा, because Indian Attire Frisco summer sale is on. Stunning lehengas, elegant sarees, bridal jewelry, men's and kids wear.
13: Wait, इतना सब और price?
8: Up to 25% off on lehengas and bridal collection. Summer sale through the end of August. Only at Indian Attire Frisco. Traditional ho ya fusion, ab har outfit bolega.
14: जिंदगी एक रंगमंच है
15: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल। रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो। दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन। फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग, एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन। कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com।
16: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, ये बॉक्सेस उठा ले रे।
17: अरे बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL Worldwide को बुलाते हैं।
16: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
17: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
16: इंडिया तक।
17: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और Worldwide, कंप्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज।
8: SFL Worldwide, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
18: Floors clean.
19: Check.
18: Windows clean.
19: Check.
18: Kitchen clean.
19: Check.
18: Air ducts clean.
19: Wait, air ducts भी clean करना होता है?
17: बिल्कुल, जो दिखता है वो तो हम clean कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं दिखता उसका क्या? That's where Duct Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No roto brush. Plus dryer vent or chimney cleaning. Ghar ho, restaurants, hotels, offices ya phir any business. Duct Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
8: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
20: Calculating route, rerouting.
8: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले grocery store में जाना है।
20: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
8: क्यों?
20: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के smart लोग जानते हैं। Daily groceries हो या Pooja essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत। Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
8: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो।
17: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
20: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
21: अजी सुन,

0: इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ।
1: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो।
2: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
0: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
3: अजी सुनते हो?
4: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
2: द ओजी ऑफ टैक्स प्लानिंग, एजी फिनटेक्स। सुनेंगे आपके फाइनेंशियल कंसर्न्स, देंगे स्मार्ट सॉल्यूशंस। एवरी फ्राइडे 9:45 AM ओनली ऑन फनएशिया रेडियो।
5: Hi, I am Shahrukh Khan. You are listening to Funasia.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं. Everyone's asking लंच में क्या है.
2: Fikar not. We have the perfect solution.
3: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
4: अरे यार, घर मिल गया.
5: घर तो देख रहा हूँ, लेकिन it's hard to find a realtor who offers great service and also cashback at closing.
3: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु of Beam Real Estate. अजय is an experienced realtor. वो सिर्फ घर नहीं दिखाते, हर प्रॉपर्टी का honest review देते हैं, pros and cons समझाते हैं, best price negotiate करते हैं, builder incentives दिलवाते हैं और closing पर cashback भी.
5: Seriously? अच्छे service भी और cashback भी?
3: बिल्कुल. Visit ajayprabhu.com and see why so many people are raving about him.
6: अरे तीन पे क्यों अटक गया?
7: क्योंकि Sal's Hot Chicken भी तीन पे पहुंच गया.
3: Plano, Richardson and now at a brand new location. Sal's Hot Chicken coming soon.
8: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khawaja, your legal lifeline.
9: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली. मस्ट बी 21 years older to game.
10: More music and more musty coming your way. This is FunAsia Radio 104.9 FM. Hello, namaskar. Thank you very, very much for tuning into my show right now, covering for Shabnam ji right now. And this is Gapshap Gali, which I am continuing to do all the way till 12:30. Your morning drive time ki jo star hai, Shabnam ji, she'll be back in town on Wednesday. And until then, we are going to make sure ki bhai aapko उसी किस्म का एंटरटेनमेंट मिले. वेल, नोबडी कैन कंपेयर टू हर्स, क्योंकि वो जो वर्ल्ड न्यूज लेकर आती ना, दैट इज हर यूएसपी फॉर श्योर. वो तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, इधर उधर की कई सारी बातें हम आपके साथ जरूर शेयर करते चलेंगे व्हेन वी हैव योर कंपनी, इफ यू प्रॉमिस. 9722355555 स्टूडियो का नंबर है. मौसम आज का फिर से एक और दिन बहुत गर्मी का होने वाला है, बट आई कैन टेल यू कि भाई थर्सडे और फ्राइडे ना 90s में होने वाला है टेम्परेचर. मैं तो उसी खुशी में आई कैन टेक टुडेज टेम्परेचर विच इज गोइंग टू रीच आई गेस 108. I'll tell you about that in much detail and much more that's coming up on this show jiska naam hai Gapshap Gali aur mera naam Meetu. Aap logon ke saath 12:30 baje tak.

एंड वंस अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन, कल का दिन बहुत गर्म था यार. मतलब जब बाहर निकली थी तो लग रहा था कि यार कितनी जल्दी अंदर जाऊंगी, बिकॉज इट फेल लाइक आई कैन नॉट ब्रीद आउटसाइड. इट वॉज दैट हॉट. संडे वॉज द हॉटेस्ट डे ऑफ द ईयर सिंस 2023, लेडीज एंड जेंटलमैन. तो कल आपको भी अगर ऐसे ही फील हुआ हो तो यू हैव अ रीजन देयर. टेम्परेचर्स हमारे कुछ 109 डिग्रीज तक पहुंच गए थे एट DFW एयरपोर्ट. और आज का दिन अनदर डेंजरसली हॉट डे दैट इट इज गोइंग टू बी. टेम्परेचर्स कुड रीच 110 डिग्रीज. सो एन एक्सट्रीम हीट वार्निंग विच इज इन इफेक्ट अंटिल 9 PM दैट यू मस्ट बी एब्सोल्यूटली अवेयर ऑफ. और हमारा जो विंड गस्ट रहने वाला है 20 miles पर आर एट टाइम्स दैट इट इज गोइंग टू बी, विच यू नो इम्प्लाइज कि हमारे इंक्रीज्ड फायर डेंजर चांसेस जो हैं वो अक्रॉस द एरिया दैट इट इज गोइंग टू बी. सो वन नीड्स टू बी वेरी वेरी माइंडफुल अबाउट दैट ऑल्सो. एंड वॉट एल्स कैन आई टेल यू? आई कैन टेल यू कि आज बहुत गर्म होने वाला है और कल भी बहुत गर्म होने वाला है. द हॉटेस्ट डेज दिस वीक विल बी टुडे एंड टुमारो. बाय वेंसडे द हीट विल ईज अप जस्ट अ बिट विद हाइज कमिंग बैक डाउन टू द 100 and 102 रेंज. जो एक आध डिग्री भी कम होता है ना वो काफ़ी फर्क पड़ता है जब इतनी गर्मी हो. सो इन एडिशन देर कुड बी अ स्ट्रे शावर और थंडरस्टॉर्म बाय वेंसडे. लेकिन मोस्ट ऑफ द लोकेशंस व्हाट आई कैन सी हियर is going to remain dry all week. थोड़े बहुत ही बहुत meek chances हैं. We'll update you अगर हमें कुछ भी additionally पता चले. All right. Giving the lack of any widespread rain for over month combined with you know dropping relative humidities, one needs to be really really cautious about you know going out and you know doing your business outside. जितना आप घर पे रह के आराम से कर सकते हो you know करो. आप मंडे और ट्यूसडे थोड़ा आराम से टेक इट ईजी एंड स्टे ट्यून्ड. व्हाट आई कैन प्रॉमिस यू हियर इज कि यहाँ का तापमान हमेशा आपको कूल मिलने वाला है. दिस इज फाइनेंशियल रेडियो 104.9 FM. टुडे इज हाई अराउंड 108 डिग्रीज एज आई सेड. लो विल बी अराउंड 83. टुमारोज हाई इज गोइंग टू बी अराउंड 106 विद अ लो ऑफ 83. That's your weather update, ladies and gentlemen, and let's continue with some more amazing music. Ghadi mila lijiye. It is 32 minutes past 8, 24th of August. Thank you for joining me on Morning Drive Time, covering for Shabnam Ji. This is Me Too for all of you till 12:30.

0: गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: Dude, life में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं front page पे रहूँ।
4: Front page का तो पता नहीं, but तेरा page 3 में होना मेरी guarantee है।
3: कैसे?
4: Page 3 eatery?
3: No, not another restaurant again.
4: Dude, it's page 3. Start with the bar, signature cocktails, classic pours, and the food crafted to suit every craving, every appetite.
3: मतलब great food, great drinks, and great company. यानी कि मैं।
2: Page 3 eatery. Eat, sip, gossip, repeat.
5: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
6: लिया।
5: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
6: नहीं आया।
5: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-7772. That's 972-863-7772.
7: Visit www.sanadainc.com today.
8: सुनो सुनो सुनो सारे मैकन्नी वाले सुनो, हाईवे 380 पर खुल गया है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अब एनुअल फिजिकल के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, सेम डे अपॉइंटमेंट के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं, और पूरे परिवार के भरोसेमंद डॉक्टर्स की तलाश भी खत्म। सुनो सुनो सुनो, स्वास्थ्य का नया ठिकाना पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, अब मैकन्नी में हाईवे 380 पर।
7: एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव केयर, सेम डे अपॉइंटमेंट्स, क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट और केयरिंग फिजिशियंस, सब एक ही जगह। कॉल टुडे और टेक्स्ट 214-666-6259.
9: हेलो टेक्सास परिवार, वेयर डू यू गो व्हेन बैंक सेज नो? आर यू सेल्फ एम्प्लॉयड and are you struggling with your qualification? Yes, we have loan options for you. So call KJ Kamna Co at 214-845-4189 kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai. NMLS 926641.
10: आप पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
11: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स, और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंकवेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो, विजिट signaturecuisine.net. सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
12: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसीजन शूटिंग। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। फ्रिस्को प्रिसीजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस। फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव।
13: फ्रिस्को प्रिसीजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को। विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 4693331099.
12: Mention FunAsia and get 50% off on tryout session.
14: Hi, this is Rani Mukherjee. You're listening to FunAsia Radio.
15: Tracks that put you on the right track.
16: ऐसा हुआ है ना आपके साथ कि कुछ एक अच्छा गाना अचानक से रेडियो पे प्ले हो गया और मूड बिल्कुल चंगा हो गया। होपफुली आप लोगों के लिए ऐसा एक गाना आपको मिल जाए, और अगर ना मिले ना, वी आर ए फोन कॉल अवे, यू ऑल नो दैट। 972-235-5555, दैट्स द नंबर इन द स्टूडियो, एंड आई डू वांट यू ऑल टू गिव मी दैट क्विक कॉल कि आपका दिन चंगा हो जाए। वैसे दिन के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि यार सीरियसली, आप जो है रोज एक एडवेंचर पे निकलते हैं, और ये एडवेंचर काफ़ी मोनोटोनस सा हो गया है। हमारी लाइफ अक्सर एक ना सेट पैटर्न पे चल रही होती है, सुबह उठो एंड वही तैयार हो, वही आपने वही सारी चीज़ें करनी है तैयारी के लिए भी, दैट इज़ अ सेट पैटर्न टू इट, कि निकाला, आयन किया एंड देन पहने और चल दिए, ट्रैफिक को फेस करो, फिर काम करो, फिर घर आओ, द मंडेन चोर्स एंड एक्टिविटीज एंड रिपीट। इट फील्स लाइक हम सब एक ना एंडलेस ऑटो पायलट मोड पर जी रहे हैं। लेकिन आज लेट्स चैलेंज दैट रूटीन, आई डेयर यू. आज का हमारा मंत्र है कुछ हटके करेंगे. एंड ऑनेस्टली कुछ हटके करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अचानक से यू नो स्काई डाइविंग के लिए निकल पड़े या ऐसा कुछ मैं सोच रही हूँ आप लोगों से. नहीं, मैं ऐसा कुछ चैलेंज नहीं कर रही हूँ. इट कैन बी समथिंग इनक्रेडिबली सिंपल यार. अगर आप रोज एक ही रास्ते से ऑफिस जाते हो ना, तो थोड़ा सा आज कुछ एक नया राउट पकड़ो और थोड़ा सा एक सीनिक राउट लो. क्या पता कि कुछ अलग ही दिन बीते फिर आज का. अगर आप हमेशा लंच में वही सेम सैलेड या सैंडविच खाते हैं, तो आज कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नया करो यार. कुछ नया ऑर्डर करके अपने आप को ट्रीट करो सीरियसली. या फिर अचानक किसी पुराने दोस्त को यू नो रैंडमली एक कॉल मारो. वो भी खुश, आप भी खुश. एक तीर से दो निशाने इसी को कहते हैं. व्हेन यू ब्रेक द पैटर्न ना इवन जस्ट अ लिटिल बिट, लाइफ सडनली you know feels fresh and exciting. Definitely try करके देखिए. ये हमारा आज का मंत्र है कुछ हटके करते हैं. और इसी के चलते कुछ एक हटके आप लोगों के लिए गाना लगाऊं जो आपको everyday हमारे song list में या playlist में नहीं सुनने को मिलता है. Here we go. This is Meetu with all of you until 12:30. Yes, covering for Shabnam ji. परसों आ जाएगी, no chintas at all. She is doing well, short trip with her girlfriends. And वही energy and वही सारी information, music का भंडार जो वो लेकर आती है.

And ladies and gentlemen, this is Gupshup Gali with me too, and I'm covering for Shabnam ji here, and I'm going to try to make it all worthwhile for all of you. The energy that you need, you will get here, I promise. Ab aisa hai ki you know, energy in terms of driving, keep it in control, kyunki kya hai na ki hum jahan ja rahe hote hame wahan pahunchne ki hamesha jaldi hoti hai, aur is jaldbazi mein hi kai baar you know, accidents happen. So, जल्दबाजी का नाम क्या है? शैतान का काम है. कुछ ऐसा कुछ एक कुछ कहावत है ना. वेल, दैट इज़ वॉट यू नीड टू टेक केयर ऑफ. और मान लीजिए किसी और की गलती के कारण आप एक्सीडेंट में हैं, एंड और मे बी देर इज़ अ स्लिप एंड फॉल केस दैट यू हर्ड, दैट यू हैड एट योर वर्क प्लेस, और समथिंग एल्स दैट नीड्स कॉम्पनसेशन फ्रॉम दी अदर पार्टी. तो ये लीगल बैटल ना कभी कभी बड़ा मुश्किल हो जाता है यार. इंश्योरेंस कंपनीज के साथ वो बिल्कुल लॉगरहेड्स पे रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है. इट्स टाइम कंज्यूमिंग, बैक एंड फॉर दैट हैज़ टू हैपन एंड ऑल ऑफ दैट. इसीलिए कई बार हम छोड़ देते हैं. ना छोड़ें यार, आई एम टेलिंग यू, अटर्नी ओमर ख्वाजा कैन हेल्प यू. 4693005046 इज दैट नंबर. सिंपल लेकिन ए स्ट्रांग स्टेटमेंट दैट दे हैव फॉर यू, एंड दैट इज कि यार बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है. दे विल फाइट फॉर यू एंड यू डोंट हैव टू पे अनलेस यू विन योर केस, एंड दैट इज द प्रॉमिस दैट दे कम विद. सो यस, दे आर हियर फॉर यू. अटर्नी ओमर ख्वाजा, attorneyomar.com is the website for your free consultation. और attorney Omar Khwaja की तरफ से ये traffic update आप लोगों के लिए जो लेकर आना चाहती हूँ. There is a major collision on 35 East at I-20 northbound that I see, and I see that the rightmost shoulder and rightmost lane is closed, and the exit is also closed. So you can think of a detour if you are on that route, or if you have time. The traffic is going to be very, very slow there, so be mindful about that. Iske alawa kuch aur ट्रैफिक अपडेट्स में एक और मेजर कोलिशन जो कि लूप 12 एट ट्रिनिटी रिवर एन फोक नॉर्थ बाउंड पे है. राइट शोल्डर इज क्लोज्ड एंड ऑल्सो द राइट लेन, सो देर इज अ मेजर बैकअप देर एज वेल. And a few minor incidences that also I see. Okay, there is another major collision that I see on US 75 at Bloomdale Road, southbound, and the exit is closed. The right shoulder and the rightmost lane are also closed. And that is the update for all of you that I wanted to make sure that you are aware of the backups on those streets. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. Happy to jump to this next request. Aisha, thank you for making this hatke request right here. Ji haan, aaj ka hamara mantra hai ki kuch hatke karenge yaar.

few lesser heard songs that I'm playing for you right now, right here on Funisha Radio 104.9 FM. ये आपका morning drive time show चलने वाला है 10 बजे तक. And then we're going to continue with गपशप गली और मैं आपके साथ मीठू मेरा नाम. और अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो यार warm welcome to all of you listening to me for the first time. बहुत खुशी हो रही है मुझे आपसे interact करके. 972-235-5555 स्टूडियो का नंबर. You are more than welcome to give me that quick call, ladies and gentlemen. And पता है आपको बहुत सारी बातें जो मेरे दिमाग में हैं जो मैं करना चाहती हूँ और देख रही हूँ यार कितनी फटाफट टाइम निकलता है. तो सीधे गाने पर ही चलूँ क्या अभी? ठीक है चलो, क्योंकि यू नो वी आर गोइंग टू हिट दैट कमर्शियल ब्रेक एट 9. हम पूरे जिसे कहते हैं ना निचोड़ के फ़ायदा उठाना चाहते हैं. एंड लेट्स गेट यू द नेक्स्ट सॉन्ग कुछ हटके.

या 30 सेकेंड्स ऑन द क्लॉक, गाना शुरू ही नहीं हुआ और वक्त ख़त्म हो रहा है, तो क्या करूं? ये ब्रेक जो आने वाला है उसके बाद ये गाना लगाऊं? एंड राइट हियर यू गेट टू लिसन टू ऑल द सॉन्ग्स ऑफ योर चॉइस. नंबर फिर एक बार दोहरा दिया जाए आप लोगों के लिए, 9722355555. कीप लिसनिंग.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सास के फेवरेट्स भी, अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह HEB में। सोना मसूरी राइस, नानक पनीर, पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ, वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं, और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहाँ पसंद है। अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सीरीज, अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं। तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स। HEB, हियर एवरीथिंग इज बेटर।
3: The biggest gift you can give your child is the gift of confidence. I, Sunhee Simon Santiago, and my co-founder, Audra Langston, have coached debate champions, valedictorians, and Ivy League grads. We've created an online 3rd through 6th grade course that isn't just a public speaking class. It's a guide for building lifelong leaders. For more information, visit NextGenSpeakersAcademy.com. That's NextGenSpeakersAcademy.com.
4: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
5: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
4: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
5: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
4: सच में सब संभालेंगे?
5: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
6: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। Vanessa Events, your celebration partner.
7: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
8: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
9: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
10: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
9: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
11: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
12: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
13: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
12: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
13: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
12: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
13: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
12: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
14: अरे तीन पे क्यों अटक गया?
15: क्योंकि साल्स हॉट चिकन भी तीन पे पहुंच गया।
16: प्लेनो रिचर्डसन एंड नाउ एट अ ब्रांड न्यू लोकेशन, साल्स हॉट चिकन, कमिंग सून।
17: तुझे देखा तो ये जाना सनम।
18: 90s का रोमांस, 90s की मेलोडीज और वो लेजेंडरी आवाज। DFW, get ready to relive the magic of Kumar Shanu live, unforgettable 90s. September 11th at the brand new Robinson Fine Arts Plano. Gaiye, jhoomiye aur fir se jee lijiye apne favorite 90s ke gaane. Limited seats, free parking aur meet and greet options available. For tickets, visit eventbrite.com ya fir call kare 214-869-2668 par. Presented by Focus Entertainment and Fortune Group.
19: Tracks that put you on the right track.

थैंक्स टू अमित फॉर दिस अमेजिंग अमेजिंग सॉन्ग. लेडीज एंड जेंटलमैन, एक और रिक्वेस्ट की तरफ जाने वाली हूँ, लेकिन उस रिक्वेस्ट को प्ले करने के पहले ना आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि भाई आप ट्यून्ड हैं फन एशिया रेडियो 104.9 FM, फन एशिया रेडियो. इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन मॉर्निंग ड्राइव टाइम शो पे ये कौन सी आवाज आप सुन रहे हैं? दिस इज मी टू लेडीज एंड जेंटलमैन एंड आई एम कवरिंग फॉर शबनम जी. डोंट वरी, शी विल बी बैक ऑन वेंसडे. लेट हर हैव अ फन टाइम, थोड़ा सा ब्रेक एंड देन बिल्कुल फ्रेश न्यू एनर्जी के साथ शी विल बी बैक ऑन वेंसडे. घड़ी मिला लीजिए, इट्स 8 minutes past 9 बाय स्टूडियो क्लॉक हियर. और ठीक 10:30 बजे हमारे साथ हुसैन पंचवानी साहब फ्रॉम ड्रीम होम मोर्टगेज, ही विल बी ऑन द एयरवेव्स गिविंग यू टिप्स एंड एडवाइसेस. ड्रीम होम मोर्टगेज, यू नो दे हैव बीन हियर सिंस 1998. और मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी बात होती है जब कोई बिजनेस इतना पुराना हो, इट ब्रिंग्स इट्स एक्सपीरियंस and professionalism that is definitely one of the things that has kept them going for so strong for so long. And aapke liye wo personalized solutions ho, chahe wo home ownership ke liye baat ho ya commercial property ki baat ho, ये आपकी मदद करते आए हैं, करते रहेंगे पूरे पैशन के साथ. dreamhomemortgage.com इज दैट वेबसाइट एंड जॉइन मी व्हेन ही इज ऑन द एयरवेव्स एंड यू कैन गेट सम टिप्स सम एडवाइसेस अबाउट योर फर्स्ट होम, अपग्रेडिंग, रीफाइनेंसिंग, कैश आउट, ऑल ऑफ दैट सिंप्लीफाइड फॉर ऑल ऑफ यू एट 10:30 ऑन माय शो टुडे. मंडेज को होता है. ऑलराइट, नाउ दैट बीइंग सेड, बचा है ड्रीम होम मॉर्गेज का वेबसाइट देना, जो इतना आसान है कि भूलना मुश्किल है. dreamhomemortgage.com है वो वेबसाइट और नंबर है 9722455626. कुछ चिक फिले की तरफ से आज जो नया मेन्यू में ऐड होने वाला है, बस वही बताने वाली हूँ. फिलहाल तो एक गाने पर चलें. कामिनी, हियर इज योर रिक्वेस्ट.

ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, क्योंकि ये कई लोगों के लिए ब्रेकफास्ट टाइम होता है, मेरे लिए तो बिल्कुल होता है, क्योंकि मैं ना बिल्कुल एक ब्रेकफास्ट डब्बा पैक करके लाती हूँ अपने साथ. और आजकल नया पता है क्या शुरू किया है मैंने? स्प्राउटेड मूंग. आई एब्सोल्यूटली लव इट. अगर आप भी रेगुलरली खाते हैं तो मिलाइए हाथ इसी बात पे. इट इज़ सो न्यूट्रिशियस. एक तो दिल को तसल्ली होती है कि बहुत अच्छी एक चीज़ से स्टार्ट कर रहे हो आप अपना दिन, तो वो एक टेकन केयर. प्लस इट्स सो टेस्टी. या What I do is I add onion and I add cucumbers and I add a little bit of chili also, green chilies. और फिर अच्छे से नींबू. और मैं एक और चीज़ जो ऐड करती हूँ वो है एप्पल्स. और एनी काइंड ऑफ स्वीट और स्वीट टू अ बिट ऑफ दैट टैंगी टेस्ट दैट ए फ्रूट हैज़. आप ब्लूबेरी ऐड कर दो या स्ट्रॉबेरी ऐड कर दो. ऐड अ लिटिल बिट ऑफ फ्रूट इन योर स्प्राउटेड मूंग और फिर देखिए वो जो खट्टा मीठा एक जो तीखा वो जो एक पूरा कॉम्बिनेशन बनता है ना, इट्स अमेजिंग. टॉकिंग अबाउट विच, यानी कि खाने के बारे में बात कर रहे हैं, तो चिक फिले के बारे में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि चिक फिले इज़ फाइनली ब्रिंगिंग एन एब्सोल्यूट क्लासिक टू देयर मेन्यू. एंड ये आज से ही शुरू होने वाला है. उनका ब्रांड न्यू चिकन एंड वॉफल सैंडविच ऑफिशियली नेशन वाइड लॉन्च किया जा रहा है आज ही. एंड यू कैन एन्जॉय इट ऑल डे. ब्रेकफास्ट आवर्स में आपको वो मॉर्निंग साइज मिलेगा और ये 10:30 बजे तक मिलेगा. एंड यू गेट द लार्जर एंट्री वर्जन आफ्टर दैट द इंटायर डे, द रेस्ट ऑफ द डे. ओके, तो मतलब वो जूसी चिकन और उस पर थोड़ा सा अगर आप बेकन खाते हो तो बेकन भी है. एंड देन स्वीट हनी बटर स्प्रेड सब कुछ पैक्ड इनसाइड टू डिलिशियस मेपल फ्लेवर्ड वॉफल्स. टेल मी इफ यू आर क्रेजी अबाउट वॉफल्स, बिकॉज आई एम. खाती नहीं हूँ बहुत रेगुलरली, लेकिन वंस इन अ वाइल यार मज़ा आएगा. और साइड में जो सिरप मेपल सिरप रहेगा, ऑल ऑफ दैट फॉर ऑल ऑफ यू. और अगर फॉल वाइब्स चाहिए आपको पूरी तरह से चाहिए, तो उनके जो दो कैंप फायर इंस्पायर्ड ट्रीट्स हैं वो भी ज़रूर लीजिएगा. स्मोर्स मिल्क शेक या फिर स्मोर्स फ्रॉस्टेड कॉफ़ी. बिफोर दिस ड्रॉप चिक फिले हैड टेस्टेड चिकन एंड वॉफल सैंडविच इन बाल्टीमोर एंड ऑल्सो सैन एंटोनियो. और ये December 1st लास्ट ईयर और January 24th दिस ईयर के बीच इसे टेस्ट किया गया था उन दो जगहों पर. एंड इंटरनेट वेंट क्रेजी डिमांडिंग अ नेशन वाइड रिलीज. तो फाइनली जनता की सुन ली गई है और आज से ये स्टार्ट हो रहा है. एंड इट इज लॉन्चिंग इट्स न्यू चिकन एंड वॉफल सैंडविच sandwiches nationwide. But याद रहे this is for a limited time only. So अब से लेकर through November 14th that you can take the chance to taste all the goodness of this new item on the menu.

0: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
1: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज. अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड. अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 2148377147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फाइनेंशियल रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस.
2: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर. मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. प्लीज प्ले रिस्पांसिबली.
3: सुनो, कल बहुत काम है. पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने हैं, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली. कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे.
4: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
3: कहाँ?
5: फूडिस्तान इन ऑबरी. फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानीपुरी, केटरिंग सर्विसेज, प्लस lowest price match guarantee. And inside Foodistan, enjoy the premium Indian cuisine at D-Vibe, an upscale restaurant for the perfect family dinner.
6: Foodistan in Aubrey. Mention Fun Asia and enjoy 10% discount.
7: Zindagi ek safar hai suhana, yahan kal kya ho kisne jana.
8: Life ho ya health, kab kya ho jaye pata nahi. 13 saal tak Texas Primary Care Clinic ne jeeta aapka trust. Aur ab wahi trusted care, urgent care services ke saath naye Kaiserway location par. Lunoxy Medical, founded by Dr. Mandeep Acharya. Adults aur bachchon ke liye primary care, urgent care, x-ray, CT scan, heart testing aur med spa. Sab kuch ek hi roof ke niche. Lunoxy Medical Urgent Care. Open 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
9: Yaar, boss ne fir se daat diya. Traffic alag. और ऊपर से ये स्ट्रेस.
10: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
9: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
10: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
9: ये क्या होता है?
10: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
11: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस. फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
12: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 doors डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन. Available. Have you thought about what would happen if you or a business partner passed away unexpectedly? The death of an owner can create serious challenges for a business, from ownership disputes to cash flow concerns and family financial needs. A properly structured buy-sell agreement funded with life insurance may help provide the funds needed to purchase a deceased owner's share of the business and allow for a smoother transition to the surviving owners. Life insurance can be used with different buy-sell structures, including cross-purchase and entity purchase arrangements. Protect your business, your partners, and your family. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603 to learn more about business continuation planning with life insurance. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult your attorney and tax advisor regarding buy-sell agreements. Not legal, tax, or investment advice. Sadia!
13: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
14: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
15: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
16: तुमसे मिलके दिल का है.
14: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 p.m. ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
15: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क.
17: And yes, ladies and gentlemen, Sonu Nigam will be live in concert. And aren't we excited about that? 26th of September at 8:30 p.m. at the Credit Union of Texas Event Center in Allen. Ye repeat karna zaruri tha taki aapke dimag mein tab tak pasted rahe jab tak ye concert ho nahi jaye aur uske pehle jab tak aap apne tickets khareed na le. Ticket Master tickets available hain. Do go on and buy your tickets for Sonu Nigam Revolution, the one and एंड ओनली सोनू निगम लाइव इन कॉन्सर्ट फॉर ऑल ऑफ अस. या इट्स ऑलवेज सच अमेजिंग एक्सपीरियंस टू लिसन टू हिम लाइव. उनकी गायकी के बारे में तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, दैट इज गिवन, है ना. लेकिन साथ में जब वो स्टेज प्रेजेंस है उनका, मजा आ जाता है. दिस इज गपशप गली विथ मी टू ऑल द वे टिल 12:30.

दिल से गाने वाले सोनू निगम इज गोइंग टू बी इन टाउन 26th of September. होपफुली आपने टिकट मास्टर जाके अपने बेस्ट सीट्स जो है अवेलेबल वो आपने खरीद ली, क्योंकि लास्ट में जितना आप वेट करोगे, जितना आप प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, उतने ही बचे खुचे सीट्स मिलने वाले, क्योंकि भाई कॉन्सर्ट हॉल तो पूरा भरने वाला है. ऑडिटोरियम इज गोइंग टू बी फुल. इट इज फॉर यू टू गेट द गुड सीट्स विद द प्राइस दैट यू आर गोइंग टू पे. ऑलराइट, सो यस, गो ऑन टू ticketmaster.com and book your tickets for the man who is just not a singer. He is a complete package that you get. इनके साथ इनकी ना इंटरव्यू सुनेंगे आप तो पता चलता है उनकी एक्सपीरियंस, उनका पैशन, एंड नाउ द काइंड ऑफ वॉइस दैट ही हैज बिकम फॉर सो मेनी आर्टिस्ट इन द म्यूजिक इंडस्ट्री, कंसिडरिंग कि वो जो एक रॉयल्टी का जो बैटल है, रॉयल्टी राइट्स का जो बैटल है. उन्होंने हाल ही में ये कहा कि दो मेजर एक्चुअली प्रोडक्शन कंपनीज, म्यूजिक companies stopped working with him after he took a stand, and that's T Series and Z Music, जिन्होंने उनको एक लेबल दे दिया था एक्टिविस्ट का, और दूर रहते थे उनसे क्योंकि वो डिमांड कर रहे थे अपने लिए और अपने साथियों के लिए इन द म्यूजिक इंडस्ट्री द रॉयल्टी राइट्स. मोर पावर टू हिम एंड पीपल लाइक हिम, everybody in his team. Once again, you are tuned into Gupshup Gali with me too. August 24th ki ye tareek hai, and sports fan around the world are celebrating another true legend. Aaj Kobe Bryant Day hai, universally known as Mamba Day, and this date, August 24, 8/24, represents the two iconic jerseys Kobe wore during his incredible 20-year career with the LA Lakers. उन्होंने पहले 10 सीजन नंबर 8 पहना और आखिरी 10 सीजन्स नंबर 24, सिंबलाइजिंग हिज पर्सनल ग्रोथ और अपनी लाइफ का जो ब्रांड न्यू चैप्टर उन्होंने अपने 10 साल के बाद खोला, वो उसी को रिप्रेजेंट करता हुआ. एंड इज एक्चुअली द ओनली प्लेयर इन NBA हिस्ट्री जिनके दो नंबर्स एक ही टीम ने स्टेपल सेंटर में रिटायर किए हैं. 2015 में, इफ़ यू रिमेंबर, उन्होंने अपना फेमस टाइमलेस लव लेटर डियर बास्केटबॉल लिखा था बिफोर अनाउंसिंग हिज रिटायरमेंट, और ट्रैजिकली जस्ट 4 years लेटर इन 2020 वी लॉस्ट हिम एट एज 41. लेकिन उनका सबसे बड़ा गिफ्ट पता है हमारे लिए क्या है? That Mamba mentality, एक ऐसी philosophy जो सिखाती है relentlessness, एक hard work और हर रोज अपना best version बनने की वो जो एक जिद थी, वो that's Mamba mentality. So today let's channel that fierce Mamba energy in whatever we do. Remembering Kobe Bryant Day on Mamba Day today. Is this

कोबी ब्रायंट की एक बहुत ही पावरफुल फिलॉसफी, विच इज माम्बा मेंटालिटी. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू. द नूरन सिस्टर्स वॉइस दैट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू राइट हियर ऑन फाइनेंशियल रेडियो 104.9 FM. चाहे आप ऑफिस का कोई डिफिकल्ट प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हों, अपनी फिटनेस जर्नी पे फोकस कर रहे हों, या सिंपली ट्राइंग टू बी अ बेटर फ्रेंड और अ पेरेंट और अ फैमिली मेम्बर, इट मीन्स putting in the hard work and trusting the process. हर दिन पिछले दिन से थोड़ा बेहतर हो, बस उसी की एक जिद.

0: यार मॉडर्न मंगलसूत्र ढूंढते ढूंढते थक गई हूँ।
1: तो कैरेट लेन चलो, दे नाउ हैव अ स्टोर इन फ्रिस्को एंड द बेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस।
0: सीरियसली, कैसा कलेक्शन है?
1: मिनिमल, डायमंड, एलिगेंट, एवरीडे स्टाइल्स। यू विल प्रोबेबली स्पेंड मोर टाइम चूजिंग देन शॉपिंग।
2: फाइंड द मंगलसूत्र दैट मैचेस योर स्टाइल एट कैरेट लेन, होम टू द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस। कैरेट लेन, नाउ ओपन इन फ्रिस्को नेक्स्ट टू तनिष्क।
3: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
4: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
5: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
6: अरे तीन पे क्यों अटक गया?
7: क्योंकि साल्स हॉट चिकन भी तीन पे पहुंच गया।
8: प्लेनो रिचर्डसन एंड नाउ एट अ ब्रांड न्यू लोकेशन। साल्स हॉट चिकन कमिंग सून।
9: तारा वो तारा हर तारा।
10: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर टू डेकेड्स। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
11: होचो
12: होको
11: होचो
12: होको
11: होचो
12: इट्स होको।
0: अरे बस भी करो यार।
12: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है।
0: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है? एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूड़ी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा।
13: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में। वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस। टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज।
0: बेटा, 95% आए?
14: हाँ मम्मी।
0: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
15: मेरा?
0: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
15: वो
13: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। AG Fintax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
16: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
17: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
18: When life feels too loud, it's time to listen within. Join Miracle Rhythms, a 4-day meditation, bodywork and movement retreat by Osho Universal at Osho Kevalya Dham in Denison.
19: My name is Ritika Anand, Sanyas Nema Prem Jaya. I am coming to Dallas on the 27th, 28th and 29th of August.
18: Experience meditation, breathwork, intuitive movement, music and inner healing. Limited to just 25 participants. Book now at oshouniversal.org or call 214-395-6757.
20: Dallas ki dhadkan 104.9 FM Phoenicia Radio.
21: एक
11: एक बहुत ही स्पेशल जगह का नाम बताना चाहती हूँ आप लोगों को, एंड इट इज टू डू विथ मेकिंग मेमोरीज एंड मेकिंग योर सेलिब्रेशन स्पार्कल अ लिटिल बिट मोर, एक्चुअली अ होल लॉट मोर, लेडीज एंड जेंटलमैन. मोस्ट लिटरली इट इज PMJ ज्वेल्स दैट आई'd लव टू टॉक अबाउट. दिस इज गपशप गली विथ मी टू ऑल द वे टिल 12:30 कवरिंग फॉर शबनम जी. वेंसडे को शी विल बी बैक, नो वरीज. गर्ल ट्रिप पे गई हैं और मस्ती कर रही हैं, उनको मस्ती करने देते हैं और फिर आके उनसे थोड़ी खबर लेंगे कि क्या किया, कितनी मस्ती की उन्होंने. एंड दीज शॉर्ट वेकेशंस एक्चुअली रीजुविनेट यू टू द कोर, एंड आई एम श्योर वही कुछ एडिशनल एनर्जी वो जो लेकर आने वाली हैं वेंसडे को, यू विल बी डिलाइटेड अबाउट दैट. एंड नाउ व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट इज दो स्पेशल ओकेजन्स दैट यू हैव इन योर लाइफ, उनको थोड़ा और डिलाइटफुल और स्पार्कलिंग बनाने के लिए PMJ ज्वेलर्स जो कि है फ्रिस्को में और 60 ईयर्स का जो ज्वेलरी एक्सपीरियंस लेकर आते हैं, दैट एक्सलेंस एंड टाइमलेस इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप दैट दे ब्रिंग फॉर यू इज precious, ladies and gentlemen. Explore stunning gold, diamond and bridal collections for every celebration and milestone. And proudly they are the duo that bring it for you. It's Mahesh Babu and Sitara Ghattamaneni, and that is what I'd like to say. And jab bhi kabhi aise galat aap naam bol do to ek bar aur bolne ki banti hai, because they are behind this brand and I need for all of you to know them well. Mahesh Babu and Sitara Ghattamaneni, aur ye PMJ jewels jo hain ye generation se generations ko देती है, ये है वो प्रेशियस ज्वेलरी उनके हर एक स्पेशल मोमेंट को थोड़ा और स्पेशल बनाने के लिए. PMJ ज्वेल्स फ्रिस्को ऑन मेन स्ट्रीट, एंड यू कैन डिस्कवर ज्वेलरी दैट टेल्स योर स्टोरी. Our story right here is to do with the music, ladies and gentlemen, taking you to the 90s in this segment between now through 10. कोई गाना अगर ऐसा सुनना हो ना तो कॉल करिएगा. हाँ, 9722355555 नंबर इन द स्टूडियो.

ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, आने वाले दिनों में कुछ ट्रैवल प्लान्स हैं क्या आपके? क्योंकि मेरे कुछ हैं ट्रैवल प्लान्स. तो क्या है ना कि मैंने ये नई चीज़ पढ़ी और मुझे लगा कि क्वाइट इंटरेस्टिंग यार. हम सब जानते हैं कि लॉन्ग एयरपोर्ट लेओवर्स यूजुअली मीन एंडलेस फोन स्क्रोलिंग, या फिर इंटरनेशनल अगर जर्नी हो आपकी या ट्रैवल हो तो ड्यूटी फ्री विंडो शॉपिंग, वो भी मज़ा आता है काफ़ी करने में, या फिर बस बोर्डिंग गेट के पास आप बैठ कर अपनी फ्लाइट का वेट करते हो, चाय कॉफ़ी लेते हो और बस सिप करते रहते हो एंड वक्त काटते रहते हो, राइट? बट इंडिया के एयरपोर्ट्स आजकल एक नया और बहुत ही फैंटास्टिक ट्रेंड सेट कर रहे हैं और इसका नाम है फ्लाइब्रेरी. यस, फ्लाइंग एंड लाइब्रेरी को मिला के फ्लाइब्रेरी, समथिंग दैट US कैन ऑल्सो एक्चुअली आई फील स्टार्ट. इट विल बी सो मीनिंगफुल रियली. नाउ इमेजिन अ कम्प्लीटली फ्री एयरपोर्ट लाइब्रेरी जहाँ आप बिना किसी मेंबरशिप कार्ड या बिना किसी रजिस्ट्रेशन के शेल्फ से बुक्स आप पिक कर सकते हो. द होल इनिशिएटिव मैजिकली टर्न्स योर बोरिंग वेटिंग टाइम इनटू क्वालिटी रीडिंग टाइम. मानते ही है कि नहीं कि रीडिंग अगर जिनको शौक है उनके लिए भी अच्छा, और जो कल्टिवेट करना चाहते हैं लेकिन टाइम नहीं मिल रहा होता है, दिस इज अ गुड बहाना टू गेट इन टू दैट जोन अगेन. स्टार्टेड अर्ली लास्ट ईयर एट भुवनेश्वर एयरपोर्ट, अब ये जो अमेजिंग कॉन्सेप्ट 61 सिटीज के एयरपोर्ट्स तक एक्सपैंड हो चुकी हैं, स्पैनिंग मेजर यू नो टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज, दैट इज बैक इन इंडिया. एंड द रूल्स आर वेरी रिफ्रेशिंगली सिंपल. आप फ्लाइट बोर्ड करते हो और एक अपना बुक उठाते हो फ्लाइब्रेरी से, मजे में आप बुक पढ़ो ड्यूरिंग योर वेट टाइम एट द एयरपोर्ट बिफोर यू बोर्ड योर फ्लाइट, या फिर आप जर्नी के दौरान यानी कि आप फ्लाइट पर ये बुक लेकर जाओ अपने साथ और फिर बस ड्रॉप इट ऑफ एट द पार्टिसिपेटिंग लाइब्रेरी डेस्टिनेशन एयरपोर्ट एंड यू आर गुड. और ये पूरा सिस्टम कम्युनिटी ट्रस्ट और पब्लिक डोनेशंस पर चलता है. तो एयरपोर्ट्स आर ऑल अबाउट यू नो द रशिंग एंड कॉन्स्टेंट अनाउंसमेंट, बट दिस इनिशिएटिव इनकरेजेस पैसेंजर्स टू रियली स्लो डाउन अ बिट एंड डिसकनेक्ट फ्रॉम द एंडलेस स्क्रोलिंग द स्क्रीन्स टू रीकनेक्ट विद रीडिंग बुक्स. क्या मज़ेदार बात है ना. आई होप यहाँ पर भी ये जल्द ही शुरू हो. दैट इज़ वॉट आई होप. यू आर लिसनिंग टू गपशप गली विद मी टू.

Listen, I'm inching towards another SP Balasubramaniam request here. This is Sujata, one who wanted to listen to this next track. और इसके साथ साथ एक giveaway भी अनाउंस करना चाहती हूँ. और इस giveaway के लिए आपको थोड़ी सी जो है मेहनत करनी पड़ेगी. पहले तो स्टूडियो का नंबर याद होना चाहिए. मैं तो कहती हूँ हमेशा कि भाई सेव कर लो ताकि याद रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़े. हम बड़े स्पॉइल्ड हो गए हैं आजकल, हमें कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती. फ़ोन इतना हैंडी होता है, सब कुछ उसी पे होता है. यहाँ तक कि यू नो समथिंग लाइक दिस कि भाई फ़ोन नंबर से लेकर जो भी हमारे एजेंडाज होते हैं ऑफ द डे वी जॉट इट डाउन, है ना. तो यस, व्हाट यू नीड टू टेल मी राइट हियर राइट नाउ इज द एड्रेस, द फिजिकल एड्रेस फॉर चंडीगढ़ बाइट्स इन एलन. एज सिंपल एज दैट यार. ज़्यादा नहीं मेहनत करवाती हूँ मैं, थोड़ी सी मेहनत करवाती हूँ, क्योंकि ये तो भाई आपको पता होना चाहिए कि भाई एड्रेस क्या है. क्योंकि अगर आपको अपना गिव अवे पिकअप करना है तो एड्रेस तो पता होना चाहिए, राइट. तो $10 ऑफ योर डाइन इन बिल ऑफ $50 और मोर दैट यू कैन गेट राइट नाउ राइट हियर. एंड आई कैन अश्योर यू द फूड इज अमेजिंग, आई लव इट. मेरे घर के बहुत पास है और मैं बहुत इंजॉय करती हूँ. यहाँ की थाली भी ना बहुत अच्छी लगती है मुझे, बहुत पसंद आती है. मंडे टू फ्राइडे एक्साइटिंग न्यू डिशेज रोटेटिंग डेली फॉर लंच ओनली लेडीज एंड जेंटलमैन. आज देखिए मैंने आपको एक डेस्टिनेशन दे दिया है कि जाइएगा जरूर टू चंडीगढ़ बाइट्स इन एलन. और आपको मुझे अब भी इसी वक्त कॉल करना है इन ऑर्डर टू विन ए गिव अवे फ्रॉम देयर. $10 ऑफ ऑन योर डाइन इन बिल ऑफ $50, नॉट अ बैड डील एट ऑल. कॉल कीजिए और विन कीजिए फ्रॉम चंडीगढ़ बाइट्स.

0: Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: हीरे मोती मैं ना चाहूं।
3: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
4: Immigration is a serious concern for our community, and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, perm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
5: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
6: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
7: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
8: वेट, इतना सब और प्राइस?
7: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
9: मैं।

घड़ी में अभी बजे हैं 10:10, मिला लीजिए घड़ी हमारे घड़ी के साथ और ताल ताल के साथ, क्योंकि हमने तो भाई शुरुआत कर दी थी शो की बहुत पहले। जी हाँ, 8 बजे आई हूँ मैं आज और आई एम कवरिंग फॉर शबनम जी टुडे एंड टुमारो। एंड हमारा जो ये 10 से 12:30 का सिलसिला है वो तो कंटिन्यूड रहेगा ही, और बातें भी हमारी कंटिन्यूड रहेंगी राइट हियर। और आज का दिन 24th of August, लेडीज एंड जेंटलमैन, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट टू मेक इट द बेस्ट पॉसिबल डे फॉर ऑल ऑफ यू। इन टर्म्स ऑफ वेदर, गर्मी बहुत तेज है, जस्ट लाइक येस्टरडे इट इज गोइंग टू बी हॉट हॉट हॉट, लेकिन जो वाइब हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, इट विल कूल डाउन द टेम्परेचर अराउंड यू इन योर कार, एट योर होम, जहां से भी आप हमें सुन रहे हो। दिस इज

बस यही वाइब लेते हुए चलते हैं. और दिस इज गपशप गली विथ मी टू. आई वांट टू मेक श्योर कि आप सबको इल्म है अबाउट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. सिर्फ जानिए नहीं, उन्हें पहचानिए. मैं तो कहती हूँ कॉल करिए और समझिए कि व्हाट दे कैन ऑफर यू इन टर्म्स ऑफ द सर्विसेज दैट दे प्रोवाइड एट देयर्स. एनुअल फिजिकल से लेकर एंजाइटी केयर, फाइब्रो स्कैन फॉर अल्कोहल रिलेटेड लिवर कंसर्न्स, विटामिन B12 डेफिशिएंसी टेस्टिंग, बहुत कुछ है. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपकी जब कुछ हेल्थ क्राइसिस, भगवान ना करे हो, लेकिन कुछ इमीडिएट आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, तो आपको वो ज़रूर मिल सकता है एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. प्लस यू नो द अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू सीक फ्रॉम योर डॉक्टर, यू गेट इट हियर. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इज़ वॉट यू नीड टू रिमेंबर. वंस अगेन दैट नंबर इज 214-666-6259. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, योर हेल्थ इज़ देयर पैशन.

0: श्रावण हमें जोड़ता है भगवान से, रक्षाबंधन हमें जोड़ता है अपनों से, और कुछ रिश्ते एक डोर से शुरू होते हैं और एक अनमोल निशानी के साथ हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। हर रिश्ता अपनी एक कहानी लिखता है और PMJ ज्वेल्स उस कहानी को देता है सोने की चमक, हीरों की रोशनी और क्राफ्टमैनशिप जो पीढ़ियों तक साथ रहे।
1: PMJ ज्वेल्स नाउ ओपन ऑन 13215 मेन स्ट्रीट फ्रिस्को।
2: भूख लगी
3: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
4: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 Eatery। ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
5: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी।
6: डैड, प्रॉपर्टी पेपर्स कहाँ हैं?
7: लैपटॉप में।
6: इन्वेस्टमेंट?
7: गूगल ड्राइव।
6: इंश्योरेंस? पासवर्ड्स?
7: बेटा डोंट वरी, मुझे सब पता है।
6: डैड, वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है।
8: योर फैमिली शुडंट हैव टू सर्च फॉर आंसर्स व्हेन यू आर नॉट देयर टू गिव देम।
9: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। विद प्रॉपर एस्टेट प्लानिंग, प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव बिल्ट एंड गिव योर फैमिली क्लैरिटी एंड कंट्रोल।
8: कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799, और विजिट nriwealth.com फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन। NRI वेल्थ, डोंट लीव अ मेस, लीव अ प्लान।
10: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
11: हेलो, एक्सीडेंट क्लेम? ओके, नेम ऑफ द लॉयर? उमर ख्वाजा।
12: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
13: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
14: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
15: हे, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
16: लिया।
15: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
16: नहीं आया।
15: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-772, दैट्स 972-863-772।
11: विजिट www.sanadainc.com टुडे।
17: Hey everybody, this is Asim and you're listening to the rocking music of my film only on Fun Asia Radio.
18: Tracks that put you on the right track.

0: आधी रात को लड़का लड़की दोनों साथ में
1: नया जमाना
0: बिल्कुल
1: शुक्र मनाओ दूर दूर खड़े हैं
0: हाँ
1: हाथ पकड़ा तो
0: दुनिया ही थम जाएगी
2: ओए क्या कहा पकड़ लिया हाथ मेरे हाथ पकड़ने से तुम्हारी दुनिया थम गई क्या
1: उनसे पूछिए ना
2: राम जी हाथ पकड़ने से दुनिया रुक गई नहीं रुकी अब आप जा सकते हैं
0: बोलता है नहीं रुकी चलो
2: चलिए चलते हैं राम जी

ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, सुबह 8 बजे से मैंने अपना शो शुरू किया हुआ है, कवरिंग फॉर शबनम जी फ्रॉम 8 to 10। और अब अपना रेगुलर जो शो शुरू किया है, इसमें थोड़ी ही देर में हमारे साथ मिस्टर हुसैन पंजवानी इज गोइंग टू ज्वाइन अस टू शेयर हिज टिप्स एंड एडवाइजेस फ्रॉम ड्रीम होम मॉर्गेज। लेडीज एंड जेंटलमैन, सो लिसन अप गुड एंड स्टे ट्यून, दैट्स वॉट आईड लाइक फॉर ऑल ऑफ यू टू डू राइट हियर ऑन फाइनेंशियल रेडियो 104.9 FM। दिस इज गपशप गली विथ Me too.

And the lesser heard songs that I play in this segment, ladies and gentlemen, it always is a pleasure to play them. क्योंकि क्या होता है ना कि हम जो पॉपुलर गाने होते हैं वो तो हमेशा सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, क्योंकि वो हमें पसंद है और हमें पसंद है इसीलिए तो पॉपुलर हुए हैं, है कि नहीं. लेकिन कुछ ऐसे गाने हैं जो कि यू नो मूवी नहीं चली या लेसर नोन फिल्म से रही हो और इसीलिए गाने कहीं दब के खो गए हों. बस ऐसे कुछ गाने इस सेगमेंट में मैं लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए. एक बहुत प्यार सा स्वीट सा जूनिता गांधी की आवाज में है. दैट इज वॉट आईड लव टू ब्रिंग फॉर ऑल ऑफ यू राइट नाउ राइट हियर ऑन फाइनेंशियल रेडियो 104.9 एफएम. लेकिन साथ में कुछ जरूरी और बातें जो चलती रहनी चाहिए हमारी, दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट आईड लाइक टू शेयर विद ऑल ऑफ यू. फॉर बिजनेस ओनर्स स्पेशली टेक्सिस में, अगर आप यू नो एनर्जी सेव करना चाहते हैं, दैट विल बी अ वेरी स्मार्ट चॉइस फॉर All commercial energy solution that you are seeking, Tara Commercial Energy should be your pathway. Zarur yaad rakhiyega. Proudly serving Texas business since 2002 with competitive rates, reliable service and customized energy plans. To aur kya hi chahiye kisi business owner ko in Texas, right? To सीधे कनेक्ट करें उनके साथ, फाइंड आउट योर ऑप्शंस, सारा कुछ जानकारी लें एंड आजमा के देखें. 8444282808 इज दैट नंबर. taraenergy.com इज द वेबसाइट. लेट्स डाइव इन. इन दिस इनटू दिस मेलोडियस वेरी अपबीट सॉन्ग.

ये कुछ नई आदतें इन द फॉर्म ऑफ म्यूजिक दैट आई वांट यू टू इम्प्रूव ऑन. क्योंकि क्या है ना कि कुछ जो हमारे पसंदीदा गाने हैं वो तो हम बार बार रिपीट पे सुनते रहते हैं. एंड दिस इज़ वॉट आई रियली वुड लाइक फॉर ऑल ऑफ यू टू डू, यू नो, कि अगर आप जो कुछ हटके गाना आपके दिमाग में है ज़रूर आपके आपके प्लेलिस्ट में जो है वो ज़रूर मेरे साथ शेयर करें. राइट हियर ऑन फनेशियल रेडियो 104.9 FM.

0: कुछ ऐसे ही गाने हम आप लोगों के लिए प्ले करते रहेंगे, कुछ नए कुछ पुराने, कुछ हटके एंड कुछ इन बिटवीन सॉन्ग्स दैट यू आर गोइंग टू लिसन टू राइट हियर ऑन फनीशर रेडियो.
1: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
2: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
3: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
4: कौन सा?
3: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
4: अरे सारे तो सेम है.
3: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला.
4: ओ हाँ, ये तो अलग है.
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
6: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
5: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
6: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
5: सच में सब संभाल लेंगे?
6: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
2: कॉल हरि बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
7: Hello, Weekend Lunch Emergency Helpline. How may I help you?
8: Hello, मेरे relatives आ रहे हैं. Everyone's asking lunch में क्या है?
7: Fikar not. We have the perfect solution.
2: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
9: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
10: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
11: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
12: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
11: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
13: Hey maps, take me to my desi grocery store.
14: Calculating route, rerouting, rerouting.
13: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है.
14: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
13: क्यों?
14: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के स्मार्ट लोग जानते हैं. डेली ग्रोसरीज हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत. Find everything desi at India Bazaar in Fort Worth.
13: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो.
15: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ. स्विच द रूट.
14: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड.
16: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन.
17: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है. एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे.
18: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख.
2: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट. आज बुखार, आज डॉक्टर. आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर. आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर. प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी.
15: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259.
19: अरे तीन पे क्यों अटक गया?
3: क्योंकि साल्स हॉट चिकन भी तीन पे पहुंच गया.
2: प्लेनो रिचर्डसन एंड नाउ एट अ ब्रांड न्यू लोकेशन. साल्स हॉट चिकन कमिंग सून.
6: वीकेंड का प्लान.
19: टर्न अभी तक नहीं मना। बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चौकटाउ कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चौकटाउ कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। Must be 21 years or older to game.

कुछ आवाजें ऐसी होती है ना जिन पे जिंदगी बीत सकती है, और उनमें से एक आवाज मेरे लिए मोहित चौहान की है. यू आर लिसनिंग टू गपशप गली विथ मी टू एंड दिस इज फनीशा रेडियो 104.9 FM, रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर.

0: बिल्कुल दिल से सुनते रहें फनीश रेडियो 104.9 एफएम. एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं. बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग द ब्रेक दैट यू गोइंग टू गेट. मिलते हैं ऑन द अदर साइड.
1: दिस इज द फन एशिया नेटवर्क. यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 एफएम केजीएमपी 104.9 एफएम HD1 पायलट पॉइंट टेक्सास. साइमलकास्टिंग ऑन KTCG 104.1 एफएम HD2 सैंगर टेक्सास. पावर्ड बाय फन एशिया फिल्म्स एंड फन पिज़्ज़ा किचन.
2: ऑफिशियल टैक्स एंड फाइनेंस पार्टनर AG FinTax.
1: ऑफिशियल इंजरी लॉ पार्टनर द लॉ ऑफिसेस ऑफ ओमर ख्वाजा
2: इन एसोसिएशन विद पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर.
3: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
4: Same order again? Same pizza, same taste, same story. Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
5: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है. चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग. फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी. फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस. फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव.
6: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को. विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 469-333-1099.
1: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
7: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, ये बॉक्सेस उठा ले रे.
8: अरे बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL वर्ल्ड वाइड को बुलाते हैं.
7: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
8: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
7: इंडिया तक.
8: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और वर्ल्ड वाइड कम्प्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज.
9: SFL वर्ल्ड वाइड, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
10: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना.
9: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं. 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़ावे लोकेशन पर. लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज week 8 a.m. to 8 p.m. walk in anytime. 9191 Kaiser Way, suite 205, Frisco.
11: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
12: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
9: 360 shows True Payment presents Sonu Nigam live in Dallas.
13: तुमसे मिलके दिल का है.
12: Saturday, September 26th, 8:30 p.m. onwards at the Credit Union of Texas Event Center, Allen.
9: Tickets available at Ticketmaster. For more info, call 855-360-SHOWS. Exclusive media partner, Fun Asia Network.

और जरूरी है मेरा आप लोगों के साथ शेयर करना अबाउट दिस वन प्लेस दैट कैन टेक सुप्रीम गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, बी इट योर एनुअल फिजिकल, एंजाइटी केयर, फाइब्रो स्कैन फॉर अल्कोहल रिलेटेड लिवर कंसर्न्स या वाइटामिन B12 डेफिशिएंसी टेस्टिंग, कुछ भी चाहिए हो पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के साथ जरूर जुड़े। और जुड़ने का एक और रीजन मैं आपको बताती हूँ, आपको सेम डे अपॉइंटमेंट मिलता है, अनलाइक मेनी प्लेसेस जहाँ पे आपको आपकी तबीयत के लिए वेट कराया जाता है फॉर एनी बॉडी टू यू नो चेक यू एंड गेट यू एग्जाम एंड ऑल ऑफ दैट हैज़ टू वेट एंड दैट इज सो डिसअपॉइंटिंग व्हेन इट कम्स टू हेल्थ। अगर हेल्थ की बात हो तो आपको इमीडिएट हेल्प मिलना चाहिए और इसीलिए पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के पास आपको सेम डे अपॉइंटमेंट मिल सकती है। और जितना टाइम आप अपने डॉक्टर के साथ बिताना चाहते हो इन टर्म्स ऑफ टेलिंग योर एलमेंट, योर प्रॉब्लम, योर हेल्थ इश्यूज, वॉट एवर, दे विल गिव यू द डिजर्विंग टाइम फॉर योर अपॉइंटमेंट एंड दैट्स पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। तो अब बाकी जो बचता है मेरा ये बताना कि भाई नंबर क्या है। अगर ये सवाल आपका भी है तो सवाल का जवाब ये रहा 214-666-6259। यस, बुक योर अपॉइंटमेंट्स एज सून एज पॉसिबल क्योंकि पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, योर हेल्थ इज देयर पैशन। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन, दिस इज गपशप गली विथ मी टू।

यू आर लिसनिंग टू फाइनेंशियल रेडियो 104.9 एफएम. कुछ कपल ऑफ कॉल्स और मिली है मुझे अबाउट अ बिट ऑफ अ ग्लिच दैट यू आर हियरिंग ऑन द रेडियो. आई'ड लाइक टू फाइंड आउट फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि आपको अलग अलग कोने से, क्योंकि आप लोग सुन रहे होते हो तो आप लोग हमारे बेस्ट फीडबैक गिवर्स हो सकते हो, इसीलिए आई'ड लाइक टू नो कि आप हमें सुन पा रहे हैं और क्लियरली सुन पा रहे हैं कि नहीं. दैट इज़ यू नो दिस वन रिक्वेस्ट आई'ड लाइक टू मेक कि कॉल कीजिएगा इफ़ यू आर नॉट एबल टू हियर अस वेल. कुछ ग्लिच आ रहा है या बिल्कुल भी नहीं सुन पा रहे हैं, इन एनी विच केस प्लीज़ गिव मी ए कॉल राइट हियर. 972-235-5555 नंबर इन द स्टूडियो. दिस इज गपशप गली विद मी टू दैट आई एम गोइंग टू कंटिन्यू राइट हियर ऑन फाइनेंशियल रेडियो 104.9 FM. अगर म्यूज़िक साफ़ है, मेरी आवाज़ नहीं आ रही है, या मेरी आवाज़ आ रही है लेकिन म्यूज़िक साफ़ नहीं है, इन एनी विच केस गिव मी अ कॉल.

नहीं, ये तो बात सही है कि दिल जला के मुस्कुराने की जो आदत है ये बड़ी पुरानी है भाइयों और बहनों में, है ना, सिबलिंग्स में। और ऐसे में मैं ये याद नहीं दिलाऊं आपको तो सही नहीं रहेगा कि भाई चौकटाव कैसीनो एंड रिजॉर्ट इन ड्यूरेंट एंड ऑल्सो फनेशिया टुगेदर वी आर ब्रिंगिंग दिस रक्षाबंधन सेलिब्रेशन। ऐसी कुछ चटपटी कहानियां जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो, व्हाट्सएप कीजिए @214-837-7147। वी आर आस्किंग फॉर 1 मिनट वॉइस नोट। ऑलराइट, यू कैन सेंड इट ऑन दैट व्हाट्सएप नंबर, या अगर आप अभी इस वक्त पार्टिसिपेट करना चाहें तो वो भी एक आपके लिए ऑप्शन है। एंड समथिंग दैट आई वॉन्ट एवरीबडी टू बी टॉकिंग अबाउट, क्योंकि इतने सारे किस्से कहानियां होती हैं हमारे पास, उन किस्से कहानियों को आप 1 मिनट में उतार पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन चूज दैट वन स्टोरी दैट यू वुड लव टू शेयर टू विन सम एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस एंटरटेनमेंट एंड रिजॉर्ट स्टेज। लेडीज एंड जेंटलमैन, ग्रैंड प्राइज पता है क्या है? पता है क्या है? अगर आपको पता चलेगा तो आप तुरंत ही मुझे 1 मिनट नहीं 10 मिनट के अलग अलग वॉइस नोट्स भेज दोगे। भाई सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटाव कैसीनो एंड रिजॉर्ट इन ड्यूरैंड, दैट इज योर चांस एंड फॉर योर ब्रदर और सिस्टर दैट यू कैन गो विथ एंड कम्प्लीटली हैव अ बॉल। क्या लगता है, अगर रीयूनियन होता है तो आप यू नो प्यार मोहब्बत से रहोगे कि आपको लगता है कि झगड़ा हो जाएगा? हाँ उस झगड़े का भी अपना एक मजा होगा। आई कैन अश्योर यू दैट भाई बहनों के झगड़े ना बड़े बड़े स्वीट, बड़े क्यूट होते हैं। भले कितने भी लेवल का झगड़ा हो जाए, दैट इज वन रिलेशनशिप दैट यू कैन नॉट एवर एवर डिजॉल्व एंड मूव ऑन। वो एक रिश्ते पे आप वापस जाते हो क्योंकि उनके साथ ही आप बड़े हुए होते हो। तो कितनी सारी जो बॉन्डिंग्स हमारी अलग अलग लेवल पे है, वो सीक्रेट रखने वाली बॉन्डिंग, वो मस्ती करने वाली बॉन्डिंग, वो लड़ाई वाली बॉन्डिंग, वो नॉटीनेस एक साथ करने वाली बॉन्डिंग, वो अलग अलग हमारे बॉन्डिंग्स हैं उनके साथ, है ना। चौकटाव कैसीनो एंड रिसोर्ट इन ड्यूरेंट, दे आर ऑल कीन टू मेक योर मेमोरीज टुगेदर इवन मोर मीनिंगफुल। तो बी पार्ट ऑफ दिस वन एंड गिव मी अ कॉल इफ यू आर इंटरेस्टेड टू शेयर योर 1 मिनट स्टोरी ऑन द एयरवेव्स ऑफ Funisha Radio 104.9 FM. This is Gapshap Gali with the Me Too. I am all set to play this next request right here. मुझे कहा गया कि भाई बाहर बादल हैं और वो कुछ 4-5 घंटे दूर रहती हैं from Dallas, and she said कि वहाँ तो अच्छी बारिश हो रही है यार, तो बारिश का गाना हो जाए for the people who have overcast and for the people who are enjoying the rain.

कुछ मीठे ताज़े गाने मैं आप लोगों के लिए सुनवा रही हूँ. एंड व्हेन आई से ताज़ा, दैट्स जस्ट बिकॉज यू नो एवरी टाइम यू लिसन टू इट मुझे लगता है कि आप कुछ अलग अंदाज में सुनते हो, क्योंकि आपका दिन अलग होता है, यू नो मिजाज अलग होता है, मूड अलग होता है. तो विद दैट द एक्सपीरियंस ऑफ द सेम सॉन्ग दैट प्रॉबेबली यू हैव बीन लिसनिंग फॉर एन इटर्निटी, वो एक्सपीरियंस भी अलग एक उसका वाइब लेकर आता है. दिस इज गपशप गली विथ मी टू.

0: भीगने का तो मन यार मेरा भी है यार, इट इज सो सो सो वेरी हॉट की मतलब बहुत मुश्किल है. बारिश ना होने का एक जो ये वजह है, आई होप इट रेन्स सून, बट दूर दूर तक मुझे कुछ ऐसे आसार लग नहीं रहे. तो यार प्लीज एंड्योर द हीट एंड द फॉल इज राउंड द कॉर्नर. दैट इज द ओनली गुड थिंग दैट आई कैन टेल यू. एंड ऑल्सो द सेकेंड गुड थिंग आई कैन टेल यू इज वेंसडे से थोड़ा ईज आउट होने वाला है टेम्परेचर एंड अदर अपडेट्स कमिंग अप फॉर यू इन द नेक्स्ट segment. All I ask of you is keep listening to Phanisha Radio 104.9 FM, क्योंकि ये वो destination है जहाँ पे आपको बहुत सारी खबरें एक ही जगह पे मिल जाती हैं, about your local businesses, about you know desi news and the music of course being the ultimate destination this is.
1: Hello, accident claim? Okay, name of the lawyer? उमर ख्वाजा.
2: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
3: अरे तीन पे क्यों अटक गया?
4: क्योंकि साल्स हॉट चिकन भी तीन पे पहुंच गया.
5: प्लेनो रिचर्डसन एंड नाउ एट अ ब्रांड न्यू लोकेशन. साल्स हॉट चिकन कमिंग सून.
6: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान. myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस. और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स. 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा. विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338 4697343338. myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
7: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था.
8: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया. सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स. और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंकवेट सर्विसेज भी. लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो. विजिट signaturecuisine.net. सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर.
9: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया.
10: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
9: नहीं.
10: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
9: नहीं.
10: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
9: वो भी नहीं.
10: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त.
11: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए. बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो. फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी.
12: AG Fintax led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
13: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
14: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just

लिसन, मौसम भी अपने सारे दायरे पार कर चुका है यार. संडे वॉज द हॉटेस्ट डे ऑफ द ईयर सिंस 2023. कैन यू इमेजिन? सच में वो जो 108, 109 कुछ ऐसा दिख रहा था ना, जैसे जैसे बाहर का तापमान बढ़ रहा था, मेरे दिमाग का भी तापमान बढ़ता जा रहा था यार, कि बाहर जाके जो काम करना था वो कैसे करूँगी. लेकिन फाइनली येस, दिस इज डैलस दैट यू आर लिविंग इन, टेक्सस दैट यू आर लिविंग इन. कहाँ बच के जा सकते हो यार, विद टेम्परेचर्स रीचिंग 109 degrees ऑलमोस्ट एट DFW एयरपोर्ट येस्टरडे. इट वॉज द हॉटेस्ट डे ऑफ द ईयर सिंस 2023. और मंडे जो हमारा आज का दिन शुरू हुआ है, ये भी डेंजरसली हॉट है. टेम्परेचर्स कुड रीच 110 degrees. सो एन एक्सट्रीम हीट वार्निंग इज इन इफेक्ट फॉर ऑल ऑफ अस अंटिल 9 PM. सो बी वेरी माइंडफुल अबाउट डूइंग एनीथिंग आउटसाइड टुडे. थोड़ा सा मतलब पानी वानी, वो सारी जो चीज़ें होती हैं ना, जो मैं अभी यहाँ पे रिपीट नहीं करने वाली हूँ, आपको पता है, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. इतना कह सकती हूँ कि भाई विंडी भी थोड़ा बहुत होने वाला है, इंक्रीजेस द फायर डेंजर अक्रॉस द एरिया. सो बी वेरी माइंडफुल अबाउट दैट, लेडीज एंड जेंटलमैन. और क्या बता सकती हूँ, और ये बता सकती हूँ कि वेंसडे से थोड़ा बहुत ईज अप होने वाला है, जस्ट बिट विथ हाईज कमिंग बैक डाउन टू द 100 to 102 रेंज. सो दैट इज़ अ गुड न्यूज़. इफ़ इट इज़ अ गुड न्यूज़ यू कंसिडर, देन ये आप लोगों के लिए था. और बाकी येस, आज का हाई जो बता चुकी हूँ मैं आप लोगों को, लो विल बी अराउंड 83. हाई टुमारो विल बी अराउंड 106 विद अ लो ऑफ 83. नाउ दैट गिवन, Keep your cool right here on Funisha Radio 104.9 FM. The best of the music that we will be playing for all of you to give you the vibe of fall coming up.

पीए सुधीर पाए के बारे में कौन कौन जानते हैं? अगर आप फनीशर रेडियो रेगुलरली सुनते हैं, आप जानते हैं कि हम इनके बारे में रोज बात करते हैं, और ये इसीलिए क्योंकि वी बिलीव इन देयर सर्विसेज. यू नो, दे हैव दोज smarter financial strategies for all of you that they manage through portfolio management, real estate opportunities and alternative investments. So basically saying ki agar aap kuch long term wealth ya retirement ka kuch planning karna chahte ho ya you want to grow your investments, to my time equity is the answer for all of you. Aapke liye personalized solution lekar aate hain jo aap hi ke goal ke ird gird ye aapke liye design karte hain. mytimeequity.com is the website aur number hai 469-702-1272. That is the number that you must save on your phone. mytimeequity.com. क्या आपने हमारा नंबर सेव कर लिया है? 9722355555. अगर कर लिया है तो फिर आपने बहुत कमाल की चीज की है, क्योंकि इट इज always a handy number to get into the discussions we start, the music that you want to listen to, and tell us, give us your feedback on your radio listening experience with Fun Asia. Ye hai Gapshap Gali with Neetu.

जी हाँ, यू आर ट्यून्ड इनटू गपशप गली विथ मी टू। आज की तारीख क्या है? आज है 24th of August। और एज वी गो ऑन विद द डे, स्पोर्ट्स फैन अराउंड द वर्ल्ड, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं एक ट्रू लेजेंड को। आज कोबी ब्रायंट डे है। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर ऑफ इट, बट जस्ट नो दैट यूनिवर्सली दिस डे इज नोन एज मम्बा डे, एंड आई एम श्योर ऑल स्पोर्ट्स फैन आर वेल अवेयर ऑफ दिस डेट। August 24, 8/24, विच रिप्रेजेंट्स द टू iconic jerseys Kobe wore during his incredible 20-year career with the LA Lakers. उन्होंने अपने पहले 10 सीजन नंबर 8 पहना और आखिरी 10 सीजन उन्होंने नंबर 24 पहना, और ये दोनों ही एरा इनके लिए बड़े मीनिंगफुल पर्सनल ग्रोथ का एक जो दोनों ही एरा इनके लिए थे। और यस, ही इज एक्चुअली द ओनली प्लेयर इन NBA हिस्ट्री जिनके दो नंबर्स एक ही टीम ने स्टेपल सेंटर में रिटायर किए गए हैं। 2015 में उन्होंने अपना एक फेमस टाइमलेस लव लेटर, विच आई वुड वांट यू ऑल टू चेक आउट, डियर बास्केटबॉल जो लिखा है, इट आल्सो सॉर्ट ऑफ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट देन। और ट्रेजिकली जस्ट 4 years लेटर इन 2020 वी लॉस्ट हिम एट द एज ऑफ 41। ही वॉज रियली यंग, एंड ही एंड हिज डॉटर इन दैट हेलीकॉप्टर क्रैश वी ऑल आर अवेयर ऑफ, अलॉन्ग विद 7 अदर पैसेंजर्स इन द हेलीकॉप्टर क्रैश दैट वी लॉस्ट। लेकिन उनका सबसे बड़ा गिफ्ट हम सब के लिए पता है क्या है? येस, मेमोरेबल मैचेस दैट वन कैन गो एंड चेक आउट। लेकिन उसके अलावा उनकी फिलॉसफी, द मम्बा मेंटालिटी, एक ऐसी फिलॉसफी जो सिखाती है रिलेंटलेस हार्ड वर्क और हर रोज अपना बेस्ट वर्जन बनने की वो जो जिद, वो सिखाती है मम्बा मेंटालिटी। सो यस, लेट्स चैनल दैट फियर्स मम्बा एनर्जी इन व्हाटएवर वी डू टुडे एंड इन कमिंग डेज। व्हाट से?

I just absolutely love this song. You are listening to गपशप गली with me too. हमारी गपशप के बीच ये सारे अच्छे अच्छे गाने मैं लगाती रहती हूँ और यही कोशिश रहती है कि यू enjoy द songs दैट आई ब्रिंग फॉर यू. एंड इफ नॉट देन एक दिल से दरख्वास्त है कि आप अपना अपने गाने मुझ तक ज़रूर पहुँचाएँ. या देर शुड बी नो हेजिटेशन अबाउट कॉलिंग अस राइट हियर ऑन फनेशा रेडियो 104.9 FM. चाहे वो फीडबैक के लिए हो, चाहे ये बताने के लिए कि यार ये गाना बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है. मुझे एक बार याद है कि देयर वाज अ सॉन्ग दैट समबडी हैड रिक्वेस्टेड एंड इट वाज फ्रॉम द फिल्म मैं मेरी पत्नी और वो. एंड इट वाज द सॉन्ग डूबा. आई थिंक दैट वाज द डूब जाना है. यस दैट वाज द सॉन्ग. नाउ आई रिमेंबर. चलाती हूँ मैं आप लोगों के लिए. और मैंने ना बड़े प्यार से लगाया क्योंकि मुझे भी वो गाना बहुत पसंद है. तो आई जस्ट प्लेड दैट सॉन्ग एंड सून आफ्टर आई गेट अ कॉल कि क्या बेहुदा गाना लगाया है. आई डिडंट थिंक सो. लेकिन कितनी अजीब सी बात होती है कि किसी के लिए कोई गाना इतना पसंदीदा होता है एंड सम फॉर समबडी एल्स दैट इज द सॉन्ग दे प्रॉबेबली डोंट लाइक. वेल यू डिसाइड फॉर योर सेल्फ वट डू यू थिंक अबाउट दिस वन राइट हियर ऑन गपशप गली विथ मी टू.

And the song, which was a fun, actually a nice melody from the film Drishyam, जो कि first in the franchise थी, that Ajay Devgan film, इसी का आज नया poster जो release हुआ है, Drishyam, the third in the franchise that you're going to watch, and it is titled Drishyam 3, नहीं, actually it is called Drishyam The Conclusion, hinting that the crime thriller franchise could bring the story of Vijay Salgaonkar, that is our Ajay Devgan, and his family to its final chapter. So this will be quite fantastic to watch the thriller that it is. We have been following the family through the first and the second part, and the final one coming up for all of us, and it will release on 2nd of October. That is what I can see. Aur ye interesting hoga dekhna ki ye kahani, is kahani ka end kya hota hai, जहाँ पर अजय देवगन का एक टैग लाइन है इस फिल्म के लिए कि मेरा सच मेरा सही सिर्फ मेरी फैमिली है. यस, विल फाइंड आउट व्हाट दिस फैमिली डज आफ्टर ऑल इन द लास्ट वन. ओके, ये तो हो गया आने वाली एक फिल्म की बात, लेकिन इस हफ्ते क्या रिलीज होने वाला है, लेट्स टेल यू दैट. नेटफ्लिक्स पे ना अगस्त 28 यानी कि सैटरडे को ना, 28 इज सैटरडे ना, लेट मी कन्फर्म दैट. ओके, इट्स फ्राइडे लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड आई हाउ कैन आई मिस दैट, क्योंकि फ्राइडेज आर द डेज फॉर द बिग रिलीजेस. तो चुंबक एक कॉमेडी ड्रामा है जिसका मैंने ट्रेलर देखा, एंड आई ऑलमोस्ट थॉट कि रिलीज हो चुकी है क्योंकि मैं देखना चाहती थी नीना गुप्ता को, बट देन आई फाउंड आउट कि नहीं हुई है, इस फ्राइडे को होने वाली है. सो यू कैन गियर अप फॉर दैट, इट लुक्स फन एक्चुअली. सो नीना गुप्ता किसी में भी हो, मैं तो जरूर देखूंगी. एंड देन देर इज ऑफकोर्स अल्फा, आलिया भट्ट और शार्वरी का जो ये जो जो फिल्म आई थी थिएटर्स में, अब नेटफ्लिक्स पे आने वाली है इस फ्राइडे को, एंड ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन इज पेंडिंग, बट टेंटेटिवली दे हैव बुक्ड इट फॉर द 28th. द स्ट्रीमिंग विल माइट स्टार्ट ऑन नेटफ्लिक्स. फिर एक और आने वाली है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, बबीता सिंह रिपोर्टिंग. नाउ दिस इज गोइंग टू बी ए डिफरेंट काइंड ऑफ अ फिल्म. निमिषा सजायन इज प्लेइंग अ कॉप जिनके फ्रेंड का मर्डर होता है, एंड शी इज इन्वेस्टिगेटिंग दैट. यू माइट रिमेम्बर हर फ्रॉम डब्बा कातिल, लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट शबाना आजमी सीरीज. आई एब्सोल्युटली लव्ड इट, एंड उसमें उन्होंने बड़ा कमाल का काम किया था. सो येस, दैट्स द लेडी आई एम टॉकिंग अबाउट, बबीता सिंह रिपोर्टिंग, विच इज टू रिलीज ऑन August 28th. लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर लिसनिंग टू गपशप गली विथ मी टू, एवरीथिंग दैट इज ताजा एंड न्यू, दैट इज वॉट वी ब्रिंग फॉर यू इन दिस सेगमेंट.

बहुत जरूरी है टू गेट इन टच विद द राइट प्रोफेशनल्स, और इसीलिए सारे इंडिविजुअल स्टार्टअप या एस्टैब्लिश बिजनेस ओनर्स के लिए ये खास इन्फॉर्मेशन जो एजी फिनटैक्स की तरफ से, दिस पार्ट ऑफ माय शो इज ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटैक्स, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स एंड अकाउंटिंग फर्म्स इन द US, और ये आपके सारे इनोवेटिव फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लेकर आते हैं आपके लिए फॉर योर गोल्स, योर नीड्स, और बुक कीपिंग से लेकर पेरोल अकाउंटिंग तक, बैंक एंड क्रेडिट कार्ड रिकॉन्सिलिएशंस टू प्रोएक्टिव टैक्स प्लानिंग, टैक्स कंप्लायंस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज, दे हैव इट ऑल फॉर ऑल ऑफ यू टू कीप योर फाइनेंसेस एब्सोल्युटली वेल ऑर्गेनाइज्ड, कंप्लायंट एंड फ्यूचर रेडी. तो देरी किस बात की, इस टीम के साथ अनिल ग्रांधी, मिस्टर अनिल ग्रांधी एंड हिज टीम, दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू एंड बिल्ड ए स्ट्रॉन्गर फाइनेंशियल फ्यूचर फॉर यू. तो जैसे कि मैंने कहा ना, कुछ चीज़ें ना प्रोफेशनल्स के साथ ही करनी चाहिए फॉर बेटर रिजल्ट, एंड फॉर दैट स्टुपेंडस रिजल्ट दैट यू आर लुकिंग फॉर, गेट इन टच विद देम 4699429888, विजिट agfintax.com. दिस इज कपशप गली विथ मी टू.

यू आर लिसनिंग टू फनीजर रेडियो 104.9 FM और ये वो वक्त होता है कि पेट में चूहे नहीं मेरे तो हाथी दौड़ रहे होते हैं। तो ऐसे में खाने की बात मुझे याद आती है और खाने से अगर मैं बात करूं, खाने के बारे में अगर बात करूं, तो होको से बेहतर क्या ही ऑप्शन होगा आप लोगों के लिए। जिन्होंने इंडिया में ट्राई किया है वो जानते हैं हाउ पॉपुलर देयर वेरियस थिंग्स आर। मतलब खास मेंशन करना चाहूंगी चना पूरी और आइकॉनिक उनकी जो सैंडविचेस हैं वहाँ पर, और फिर जो करीज हैं, और फिर फेमस होको कोल्ड कोको जो कि अभी ना अमृत लगने वाला है आप लोगों को। दैट इज़ ट्रू, क्योंकि यार इतनी गर्मी है और इसमें अगर आप होको कोल्ड कोको अगर आप पीते हो तो मज़ा आ जाएगा। नहीं, और इसीलिए चाहते हैं कि यू मेक योर क्विक ट्रिप टू यू नो होको इंस्टेड ऑफ गोइंग टू इंडिया टू ट्राई देयर फूड। हाउ सिंपल इट इज़ फॉर ऑल ऑफ अस कि जब इंडिया जाएंगे तब खाएंगे, उससे अच्छा तो फ्रिस्को में खा लो ना यार। फ्रिस्को में आपके लिए 2693 Preston Road, Suite 1000, and it is for all of you to experience that authentic flavors that they have made it, you know, one of India's most loved food brands that they have turned into. So yes, Hoko is for all of us to enjoy in Frisco. This is Gapshap Gali with Me Too, that I am going to jump straight into this next melody for all of you right here on Fun Asia Radio 104.9.

ऑल राइट, खाने पीने की बात होनी ही चाहिए क्योंकि वक्त ही कुछ ऐसा है. इट इज 24 मिनट्स पास्ट 12 बाय द स्टूडियो क्लॉक. और इसीलिए जरूरी है कि भाई मैं आप लोगों को बताऊं अबाउट दिस गिव अवे कि आप जानते हैं कि फन पिज्जा किचन, जहां पे वो इटालियन स्पेशलिटी जो है वो आपको देसी ट्विस्ट में मिलता है, मतलब वो तंदूरी पिज्जा एंड वॉट नॉट दैट यू गेट. नाउ हियर इज द थिंग, टू विन द गिव अवे फ्रॉम फन पिज्जा किचन, $10 का जो गिफ्ट कार्ड है, आपको बताना पड़ेगा कि हमने हाल ही में कुछ अनाउंस करना शुरू किया और एक और क्विजीन से इंस्पायर होके, वो इटालियन ट्विस्ट के साथ साथ एक और क्विजीन से इंस्पायर होके हमने पिज्जा लाइनअप किए हैं आप लोगों के लिए. आपको बताना पड़ेगा वो कौन से क्विजीन की बात हो रही है यहाँ पर. अगर आपने बता दिया तो आप जीत लोगे. तो मैं लगाने वाली हूँ ये गाना और ये गाना सुनो आप. और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके लिए funpizzakitchen.com पे सारी इन्फो तो है, लेकिन अगर आपके पास बिल्कुल रेडी इन्फो है तो यू कैन विन दैट $10 गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्जा किचन बाय जस्ट आंसरिंग दिस क्वेश्चन. सी, देसी ट्विस्ट है लेकिन एक और क्विजीन को शामिल किया गया है एज एन इंस्पिरेशन टू दैट इटालियन पिज्जास दैट वी लव. तो वो क्या क्विजीन है, बस इतना सा है सब सवाल. आपको हमें इसका जवाब देना है. इट्स एज सिंपल एज दैट. इफ यू आर रेडी, आई एम सो रेडी टू टेक यू टू द नेक्स्ट गाना राइट हियर एंड 9722355555 हमारे स्टूडियो का नंबर है. गिव मी अ कॉल टू विन द $10 गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फ्रिस्को फन पिज्जा किचन.

0: आज की मेरी ये मुलाकात यहीं तक, लेकिन जाने से पहले याद दिलाना चाहती हूँ कि कोई भी एक्सीडेंट में आप अगर इन्वॉल्व्ड हैं और आपको लगता है कि आपको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, यू मस्ट रिमेम्बर अटर्नी ओमर ख्वाजा एंड हिज टीम कैन हेल्प यू विद द लीगल बैटल विद योर इंश्योरेंस कंपनी. सो येस, गेट इन टच विद देम 4693005046 इज दैट नंबर. attorneyomar.com इज दैट वेबसाइट फॉर योर फ्री कंसल्टेशन एंड यू डोंट have to pay until you win the case. That's the biggest promise they bring. Unhi ki taraf se traffic update, ek major collision loop 12 at Trinity River and Fork northbound mein, right shoulder and right lane are closed. So be mindful about that when you take that route. That's all the time I have. This is me.
1: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
2: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
3: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
4: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
5: 2026 mein aapki राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
6: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
7: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
8: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
7: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
9: Dude, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
10: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
9: कैसे?
10: पेज 3 ईटरी?
9: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
10: डूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
9: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
11: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट।
12: साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
13: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
12: नहीं।
13: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
12: नहीं।
13: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
12: वो भी नहीं।
13: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
14: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy.
15: AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
16: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
17: इस रक्षाबंधन Choctaw Casino and Resort Durand के साथ celebrate कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी and a lifetime of unforgettable memories. अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 minute voice note में भेजिए and win exciting daily prizes including dining experiences, entertainment, resort stays and the grand prize, an unforgettable sibling reunion weekend at Choctaw Casino and Resort Durant. Apni story WhatsApp kijiye 214-837-7147 par ya contest details ke liye visit kijiye Funisha Radio ke social media pages.
18: Choctaw Casino and Resort Durant, where unforgettable memories are made together. Must be 21 or older to participate. Terms and conditions apply. Please play responsibly.
19: Thank you, Funisha Radio.

0: हेलो नमस्ते गुड आफ्टरनून डालस, आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को। जी हाँ, देखिए जगह मिली, टाइम मिला और मैं पहुंच गई स्टूडियो आपको एंटरटेन करने। बाय द वे, कैसा जा रहा है आपका मंडे? मेरा मंडे बहुत ही फास्ट और भगदड़ वाला और यू नो ऐसे जल्दी जल्दी काम करो आज का दिन, सुबह स्कूल भेजो, खाना बनाओ, टिफिन पैक करो और खुद स्टूडियो आओ, ऐसा वाला चल रहा है। एंड आई एम प्रीटी श्योर आपका भी ऐसे होगा। मंडे यार, मंडे ना, मुझे मतलब क्या बोलूँ, मेरी बेटी भी आजकल मंडे को ऐसे नहीं जाना स्कूल। आपके यहाँ भी ऐसे होता होगा ना? तो भाई चलिए शो को शुरू करते हैं, गपचप शुरू करेंगे, बातें शुरू करेंगे, किसी न किसी विषय पर चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि आयुषी स्टूडियो में हो और चर्चा ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। फिलहाल आज के शो की शुरुआत करते हैं इस बहुत ही प्यारे, खूबसूरत एंड वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग से।
1: इश्क की धूल रोज जलाए उठता धुआं तो कैसे छुपाए।
2: सुधी ये शहर ला गमक मुंगो वरला अपने अपनी मुंडी करते हैं। यानि उठ रुको

0: कैसा है तू?
1: तू सेटल हो गया?
2: मॉम का है?
0: काम कैसा चल रहा है?
2: मॉम ठीक है या कुछ हुआ है?
0: मॉम ठीक है तेरी?
1: घर पे?
2: तो फोन क्यों किया?
0: फोन क्यों किया मतलब? ये पूछने के लिए तू ठीक है या नहीं?
2: नहीं भी होता तो क्या कर लेते आप?
3: बड़ा बदतमीज है तू। तेरा हाल पूछने के लिए फोन कर रहा हूँ
1: और तू अपने बाप से टेढ़े मुंह बात कर रहे हैं।
3: ऐसा क्या बिगाड़ा है मैंने तेरा? क्रिश
1: क्रिश,

टू स्टेट्स का ये गाना आप लोगों के लिए था. और अभी थोड़ी देर पहले मीठू आपसे मीठी मीठी बातें करके गई हैं शो में, और अब आपको मेरी बकबक सुननी पड़ेगी. जी हाँ, उनकी आवाज़ इतनी मीठी सुरीली है ना, मैं तो बस खो जाती हूँ. जब आ रही थी गाड़ी में तो उनकी आवाज़ सुनते हुए आ रही थी, मज़ा आया था. बहुत दिनों बाद मैंने मीठू की आवाज़ सुनी. अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा होता नहीं है ना, जब वो शो कर रही होती है मोस्टली तो हम गाड़ी में होते नहीं है, पर आज थे और कोशिश करते हैं जब भी हो तो उनकी आवाज़ सुने. तो मीठू, पहले तो सबसे पहले आपको थैंक यू इतना प्यारा शो करने के लिए. अब अपने शो को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ी चर्चा करते हैं. यार, चर्चा किस विषय पर की जाए? तो मेरे मन में 2-3 दिन से एक ख्याल आ रहा था, उसी ख्याल को आप तक पहुंचाते हैं. तो भाई, हम ये सोच रहे थे अभी कि हम लोग जो हम NRIs हैं, जो यहाँ पर आए हैं एज इमिग्रेंट्स, हम लोग यहाँ पे कुछ लोग 2, 4, 10 साल से हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे 40-45 साल से हैं. इस बारे में हम बहुत सोच रहे हैं और सबसे बात भी कर रहे हैं, तो इसलिए हम सोचे यहाँ पे यही बात करते हैं. तो जो लोग 10 साल से ज़्यादा, मतलब 20 साल से ज़्यादा पहले से यहाँ पर हैं, उनके लिए ज़िंदगी कितनी अलग होगी. हमारे लिए तो आज इतने रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं, खाना पीना इतना ईजिली अवेलेबल है हमारे लिए, बट उन इमिग्रेंट्स के बारे में सोचिए जो आज से 40 साल पहले आए होंगे. डैलस ही अलग होगा, कुछ भी नहीं होगा. अनजान देश, अनजान खान पान, सब कुछ खुद से एक्सप्लोर करना, घर पे बात करने के लिए भी कॉलिंग कार्ड्स लेके बात करना, वो वाला दौर. और आज का दौर जहाँ पर ऐसे फ़ोन उठाया, मम्मी को वीडियो कॉल लगाया, सुबह शाम मम्मी क्या बना रही है सब पता है, घर में क्या घचड़ मचड़ हो रही है सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे है. तो करते हैं इस पे चर्चा. मुझे पता है कई ऐसे मेरे प्यारे दोस्त, मेरे लिसनर्स होंगे जो इससे रिलेट कर पाएंगे. तो स्टूडियो का नंबर है 972-235-5555. किस्से कहानियों का समय शुरू हो गया है. फिलहाल ये प्यारा सा गाना आपके लिए.

बर्फी का ये प्यारा सा गाना जो है मेरा फेवरेट। चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उसके पहले आपको ये जानकारी दे दें, और जानकारी कुछ ऐसी है कि अगर आप किसी कार या ट्रक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो जाते हैं, या फिर दिस इज स्लिप और फॉल इंसिडेंट, देन अटर्नी उमर ख्वाजा विल फाइट योर केस एंड हेल्प यू गेट द कॉम्पेंसेशन दैट यू डिजर्व। डीलिंग विद इंश्योरेंस कंपनीज कैन बी स्ट्रेसफुल and you need an attorney that will make sure you are compensated. You don't pay until you win. For a free consultation, call 469-300-5046 or visit attorneyomar.com. तो चलिए अगले गाने की तरफ आपको लेकर के चलते हैं, और आज हम बात कर रहे हैं हमारे उन फ्रेंड्स की, उन इमिग्रेंट फ्रेंड्स की, उन लोगों की जो कि आज से 30-40 साल पहले अमेरिका में पहली बार आए होंगे, और जब वो आए होंगे तो कुछ भी ऐसा अपना सा नहीं होगा। आज की डेट में जब हम किसी भी स्टोर में जाते हैं, स्पेशली इंडियन स्टोर्स में जाते हैं, या फिर इनफैक्ट यहाँ के जो आसपास के कोई भी स्टोर है उसमें जाते हैं, तो ऐसे कुछ बड़ा अलग सा नहीं लगता है। इनफैक्ट जितने भी अमेरिकन स्टोर्स हैं वहाँ पर इंडियंस खाने की आयल अलग से है, सब कुछ मिल रहा है, बड़ी आसानी से मिल रहा है। कुछ भी खाना है, पानी पूरी खाना है, ढोकला खाना है, इडली खाना है, समोसा खाना है, चाट खाना है, सब कुछ अवेलेबल है। घर की याद आती है तो फ़ोन फटाक से कर लेते हैं। उनकी ज़िंदगी जो इतने साल पहले आए थे, 40 साल पहले, 30 साल पहले, इनफैक्ट जो 20 साल पहले भी आए होंगे, इतना आसान नहीं होगा। मुझे याद है 90s में मेरे कज़न थे जो यहीं ह्यूस्टन टेक्सस में आए थे, एंड या कॉल करने के लिए उसमें वीडियो कॉल नहीं था, दे यूज़ टू कॉल अस, रात को फ़ोन आता, मतलब हमारे सवेरे उनके रात को फ़ोन आता था। वो जो कॉलिंग कार्ड्स के टाइम भी होते थे जब सबसे चीप रेट लगेंगे, और वो पूरे कॉलिंग कार्ड्स ले करके आधे आधे घंटे बात होती थी, तो वैसे कॉल किया करते थे। इंटरनेट जब आया तो थोड़ा सुकून हुआ कि इंटरनेट के कारण हम लोग ईमेल्स लिख के और चैट करके बात कर पाते थे। तो भाई ऐसा भी दौर रहा होगा जहाँ पर चिट्ठियाँ लिखी जाती होंगी, जहाँ पर कॉल्स करने के लिए सोचना पड़ता होगा, अपने लोगों से बात करने के लिए सोचना पड़ता होगा, लेकिन लोग यहाँ पर अपनी बेहतर ज़िंदगी के लिए आए थे, तो बस यहाँ पर उन्होंने अपनी दुनिया खुद ही बना ली। एक छोटा सा विदेश में भी अपना देश बना लिया, और उस देश में रह रहे हैं, और आज भी उस उनके उस एफर्ट्स को यहाँ पे हम लोग जी रहे हैं, है ना।

0: मैं वापस आऊंगा। दीपाली सहाय की आवाज़, इस लड़की की आवाज़ से प्यार हो गया इस गाने के बाद। इतना खूबसूरत गाती है ये, और मेरे शहर की है तो मैं तो बार बार इसका नाम लूंगी, दीपाली सहाय। 2004, आई थिंक 19 ईयर्स पहले ये इंडियन आइडल में आई थी और तब से स्ट्रगल कर रही थी। और पहला गाना मिला भी तो किसके साथ बॉलीवुड में, AR रहमान। और ये आवाज़ लाखों करोड़ों लोगों के दिल को छू रही है। मतलब मेरी पड़ोसी थी यार, क्या बताऊँ, मेरे बगल वाली गली में इंस्पिरेशन है लड़की हम सबके लिए। छोटे शहरों वाली लड़कियों के भी ख्वाब पूरे होते हैं। जी हाँ, पटना की दीपाली सहाय की आवाज़ में था ये गाना। चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं। और देखिए, लंच टाइम हो रहा है तो मुझे तो बहुत तगड़ी भूख लग रही है। ऊपर से आज हमारा है फास्ट, लेकिन हम तो नहीं खा पाएंगे। तो आप लोगों को बता देते हैं कहाँ जाना है और क्या खाना है। तो चले जाइए सीधे Page 3 Eatery, बिकॉज इनके पास है सिजलिंग कबाब्स, फ्लेवरफुल चाट्स और फ्यूजन बाइट्स से लेकर के रिफ्रेशिंग मॉकटेल्स। इफ़ यू स्टिल हैवंट एक्सपीरियंस Page 3, आज टाइम है, हब 121 में जाइए। एंड अगर आपने नहीं खाया, यू आर सीरियसली मिसिंग आउट ऑन समथिंग, तो यहाँ पर आपको इंडियन स्ट्रीट फूड का बोल्ड फ्लेवर्स मिलेगा और एक मॉडर्न फ्लेयर अलग अलग तरह के खाने का मिलेगा। सो यू हैव टू गो दिस टू दिस प्लेस। एंड वेदर इट्स ब्रंच, लंच, डिनर, डेट नाइट और अ फूडी मीटअप, Page 3 ब्रिंग्स द परफेक्ट मिक्स ऑफ फ्लेवर्स, एनर्जी एंड वाइब्रेंट वाइब्स। यू कैन विजिट Page 3 Eatery एट हब 121 एंड यू कैन एक्सप्लोर मोर एट Page 3 Eatery.com। तो अगर आप आस पास हैं और लंच के लिए सोच रहे हैं तो सोचिए मत, गाड़ी घुमाइए और पहुंच जाइए। फिलहाल आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को फन एशिया 104.9 FM पर, और स्टूडियो का नंबर है 9722355555। मैं गानों की फरमाइश ले रही हूँ, तो आप जो भी गाने चाहते हैं मैं कोशिश करूंगी इनको प्ले करने के लिए, तो प्लीज़ कॉल करिएगा स्टूडियो में। और आज हमारे चर्चा का जो विषय है वो है पुराने NRIs, पुराने इमिग्रेंट्स वर्सेस नए इमिग्रेंट्स। यू नो, ये जो आए थे हमारे से बहुत पहले लोग, जिन्होंने एक छोटी सी दुनिया यहाँ बसाई और उस दुनिया को हम लोग इन्जॉय कर रहे हैं, और हम जो नए वाले लोग हैं वो छोटी छोटी बातों को क्रिप करते थे, हमको यहाँ पे हेल्प नहीं मिल रही, कोई काम करने वाला नहीं मिल रहा, घर जाना मुश्किल हो गया है। लेकिन सोचो सोचो, अगर 40 साल पहले आए होते तो क्या करते, जो आराम से जो खाना पीना चल रहा है ना भाई साहब, नहीं चल रहा होता। कल हम 2-3 दिन से यही सोच रहे हैं, क्योंकि हम ऐसे ही घर में पूजा कर रहे थे और पूजा करते करते ये ख्याल आया, मतलब भगवान जी ये थॉट डाले मेरे दिमाग में। चलिए, वक्त हो रहा है ब्रेक का, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, फिर और करेंगे चर्चा।
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
4: कौन सा?
3: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
4: अरे सारे तो सेम है।
3: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
4: ओ हाँ, ये तो अलग है।
5: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
6: Hey, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
7: लिया।
6: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
7: नहीं आया।
6: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-772. That's 972-863-772.
8: Visit www.sanadainc.com today.
9: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार,
3: खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
5: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
7: रेस्टोरेंट चूज करना हो गूगल रिव्यूज, होटल बुक करना हो गूगल रिव्यूज, लेकिन बच्चों के डॉक्टर की जब बात आए तो एक ही रिव्यू सबसे इम्पोर्टेंट होता है, माँ का रिव्यू।
5: इसलिए डॉक्टर फरहाद हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ DFW चाइल्ड मॉम अप्रूव्ड पीडियाट्रिशियन फॉर 4 कंसेक्यूटिव इयर्स 2023 थ्रू 2026। मीट डॉक्टर निशात फरहाद एट पैशन हेल्थ पीडियाट्रिक्स, सर्विंग फैमिलीज एट फ्रिस्को एंड ऑब्री, स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ ऑगस्ट। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, बिकॉज एवरी हेल्दी स्माइल बिगिंस विद ट्रस्टेड केयर। कॉल 214-666-6259 एंड शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट्स टुडे।
8: हेलो, एक्सीडेंट क्लेम? ओके, नेम ऑफ द लॉयर?
9: उमर ख्वाजा।
10: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
11: अरे तीन पे क्यों अटक गया?
12: क्योंकि साल्स हॉट चिकन भी तीन पे पहुंच गया।
5: प्लेनो रिचर्डसन एंड नाउ एट अ ब्रांड न्यू लोकेशन साल्स हॉट चिकन कमिंग सून।
13: डैड, प्रॉपर्टी पेपर्स कहाँ हैं?
14: लैपटॉप में।
13: इन्वेस्टमेंट?
14: गूगल ड्राइव।
13: इंश्योरेंस? पासवर्ड्स?
14: बेटा डोंट वरी, मुझे सब पता है।
13: डैड, वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है।
5: योर फैमिली शुडंट हैव टू सर्च फॉर आंसर्स व्हेन यू आर नॉट देयर टू गिव देम।
15: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। विद प्रॉपर एस्टेट प्लानिंग, प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव बिल्ट एंड गिव योर फैमिली क्लैरिटी एंड कंट्रोल।
5: कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 और विजिट nriwealth.com फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन। NRI वेल्थ, डोंट लीव अ मेस, लीव अ प्लान।
16: गिव योर चिल्ड्रन द गिफ्ट ऑफ स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration of Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
0: वेलकम बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को आज फन एशिया 104.9 FM पे। तो भैया हमारी चर्चा चल रही है और ब्रेक पे जाने के पहले मैंने बोलता भाई मैं कॉल कर रही हूँ, मैं फरमाइशें दे रही हूँ, प्लीज़ कॉल करिए, तो बस कॉल जाना शुरू हो गई। आपके जैसे प्यारे लिसनर्स हो तो क्या ही बात है। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आपको अगले गाने की तरफ लेकर के चलते हैं और ये फरमाइश आई है मरियम और सोहेल की तरफ से, ब्यूटिफुल सॉन्ग, वन ऑफ माई फेवरेट्स टू।

0: हाँ डैड।
1: राहुल कैसा है बेटा?
0: एवरीथिंग फाइन डैड। इनफैक्ट बहुत खुश हूँ मैं। आफ्टर लॉन्ग टाइम।
1: हे आर यू इन लव?
2: तू ही मुझको बता दे।
0: हाउ डू यू नो?

0: How do you know?
1: You're a bob, Saleh. When the son is in love, the father just knows.
2: अपने तो दिल का पता दे जाऊं मैं
3: So this part of our show is proudly brought to you by AG Fintechs, one of the fastest growing tax and accounting firms in United States. Whether you're an individual, a startup, or an established business, AG Fintechs offers innovative financial solutions tailored to your needs. From bookkeeping, payroll accounting, and bank and credit card reconciliation to proactive tax planning, tax compliance, financial reporting, and business advisory services. They help keep your finances organized, compliant, and future-ready. Trusted, efficient, and committed to your success. AG Fintechs is your partner in building a stronger financial future. You can call on 469-942-9888. I repeat, it's 469-942-9888. Or you can visit AG Fintechs today. तो चलिए आगे बढ़ाते हैं अपने शो को और आपको एक बार इमेजिन करवाते हैं वो अमेरिका जो 1991 या 92 में था 1991 या 1992 में जहाँ पे कोई व्हाट्सएप नहीं था, कोई फेस टाइम नहीं था, कोई गूगल मैप नहीं था, कोई अमेज़ॉन नहीं था और इंडिया फ़ोन करना मतलब बड़ा ही एक्सपेंसिव इंटरनेशनल कॉल करना हुआ करता था और घर परिवार वाले इंतज़ार करते थे, घड़ी का कांटा मिलाते थे और देखते थे कि कब फ़ोन आएगा और रोज़ रोज़ भी बात नहीं होती थी यार, वीकेंड पे कॉल हुआ करते थे। तो आज ऐसी ही कुछ किस्से कहानियों की बातें कर रहे हैं हम जो हम अपने कॉलेज से भी सुनना चाहेंगे कि कैसा था अमेरिका आज से 30-35 साल पहले जब इतनी सुविधाएं नहीं थी कि ग्रॉसरी स्टोर बस हर कोने पर एक इंडियन ग्रॉसरी स्टोर मिल जाए और उसमें सब कुछ मिल जाए, लिटरली सब कुछ। मैं जब इंडिया जाती हूँ तो अपने घर पे बताती हूँ, अपने पेरेंट्स को बताती हूँ कि भाई हम लोगों को तो यहाँ पे चार चीज़ें खरीदने के लिए चार डिफरेंट स्टोर्स में जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ अमेरिका में तो ये हाल है जहाँ हम रहते हैं टेक्सास में, प्लेनो, फ्रिस्को, मैकिनी में, कि एक स्टोर में जाओ एंड यू विल गेट एवरीथिंग। अगर आप फास्टिंग कर रहे हो तो फास्ट का खाना, पूजा का सामान, आपके स्वीट डिश मिल जाएगा, आपको सारे इंडियन ग्रॉसरीज मिल जाएंगे, स्नैक्स मिल जाएंगे। क्या ऐसा है, आप सोचिए कि ऐसा क्या है जो आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे। यू गेट एवरीथिंग इन वन प्लेस एंड ऐसा पहले नहीं था, इसी बात पे हम आज बात कर रहे हैं। फिलहाल ये खूबसूरत सा गाना आपके लिए, थोड़ा टाइम देते हैं आपको सोचने के लिए कि अगर ऐसा जो अभी कंडीशन है यहाँ का नहीं होता तो कैसा लगता।

मुसाफिर कैफे का ये बहुत ही प्यारा सा गाना, एंड रिसेंटली ये मेरा फेवरेट हो चुका है. चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं. एंड यस, एज यूजुअल कॉल्स आर फ्लडिंग इन एंड मिक्स रिव्यूज मिल रहे हैं मुझे. बताऊंगी बताऊंगी, लेकिन पहले एक सवाल पूछती हूँ. हाउ मच टाइम डज योर डॉक्टर स्पेंड विथ यू? जब आप जाते हैं दिखाने के लिए, चेकअप के लिए, तो डॉक्टर कितना समय बताते हैं आपके साथ? 5 मिनट बताते होंगे, 10 मिनट बताते होंगे, लेकिन पैशनल हेल्थ प्राइमरी केयर पे एवरी अपॉइंटमेंट दैट इज स्केड्यूल्ड इज फॉर 30 मिनट्स, बिकॉज ट्रूली अंडरस्टैंडिंग योर हेल्थ टेक्स टाइम. बिकॉज इट पैशनल हेल्थ यू आर नॉट जस्ट अ पेशेंट, योर फैमिली, फॉर यू, फॉर योर फैमिली एंड फॉर द हेल्थ ऑफ आर कम्युनिटी, पैशनल हेल्थ प्राइमरी केयर 30 मिनट्स इज ऑल इट टेक्स टू कम्प्लीट योर एनुअल फिजिकल. उसमें एंग्जाइटी केयर है, फाइब्रो स्कैन फॉर अल्कोहल रिलेटेड लिवर कंसर्न्स, वाइटमिन B12 डिफिशेंसी टेस्टिंग एंड मोर, ऑल आर अवेलेबल एट पैशन हेल्थ. सो भाई स्केड्यूल योर अपॉइंटमेंट टुडे. अगर आपको दिखाना है तो आप कॉल कर सकते हैं 214-666-6259. आई रिपीट, इट्स 214-666-6259 एंड यू कैन बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, योर हेल्थ इज आवर पैशन. सो लेट्स कंटिन्यू आवर शो एंड योर गपशप विद आयुषी. और आप सुन रहे हैं मुझे 104.9 FM फन एशिया पर. और अभी हम चर्चा कर रहे थे पुराने NRIs, पुराने इमिग्रेंट्स जो अमेरिका आए. NRI नहीं बोलते हैं वो, घर वाले हमें NRI बोलते हैं इसलिए. तो हमारे पुराने इमिग्रेंट्स जो पहले आए थे, आज से 30-35 साल 40 साल पहले आए थे, और इसमें भी मुझे बड़े मिक्स रिव्यू मिल रहे हैं. तो मेरे पास पहला कॉल आया तृप्ति जी का. 1982 में पधारी थी वो अमेरिका. जी हाँ, 1982, सोच रहे हो आप, मेरी तो पैदाइश भी नहीं हुई थी तब. एंड शी वॉज जस्ट 17 ईयर्स ओल्ड एंड शी जस्ट टोल्ड अस कि भाई ये जो आजकल के बच्चे ना छोटी छोटी चीज़ पे नखरे दिखाते हैं, हमें हेल्प नहीं मिल रही, हमें ये नहीं हो रहा, तुम्हें बहुत कुछ मिल रहा है यहाँ पे बहुत कुछ मिल रहा है जो समय नहीं था, चाहे वो खाने की चीज़ें हो या घर फ़ोन करना हो. एंड शी जस्ट टोल्ड मी कि उस समय जो कॉलिंग का, हम लोग जब कॉल करते थे घर पे, तो $3.20 पर मिनट कॉल के चार्जेस लगते थे जब उनको घर पे बात करनी होती थी. सोचो $3.20 एक मिनट का, मतलब हर पल सोच सोच के जल्दी जल्दी सारी खबर पहुंचानी होती होगी अपने घर पे. कितना महंगा हुआ था कॉल करना. और खाने पीने की चीज़ें तो हैं ही, वो तो आजकल हम वी कैन सी दैट कितना इजीली अवेलेबल हो गया है सब कुछ. वहीं सोफिया जी का कॉल आया जिनका कहना था मैं यहाँ पे 30 साल से हूँ, मुझे कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं लग रहे. बस बात इतनी है कि उस समय 4 मसाले मिलते थे, अभी 10 ब्रांड के 10 मसाले मिलते हैं, तो फ़र्क ज़्यादा कुछ नहीं आया है. तो भाई देखिए, सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे हम पहली बार घर छोड़ के गए थे तो घर से सब कुछ भर के लेके जाते थे ना, उस समय अगर कोई यहाँ आता होगा तो उस समय उनको इंडियन कपड़े, इंडियन चीज़ों से ज़्यादा उनको वो चीज़ें पैक करने का मन करता होगा जो मिलना मुश्किल होगा, जैसे माँ के हाथ का अचार होता होगा, जैसे खाने के मसाले, जो बेसिक मतलब जो एक ज़िंदगी के लिए बेयर मिनिमम चीज़ें हैं एक नए जगह पर शुरू करने के लिए, वो सब अपने साथ बक्से में भर के लेके आए होंगे, बहुत सारी यादों के साथ, बहुत सारा घर का सामान लेकर के आए होंगे. तो यही फ़र्क है आज के और तब के इमिग्रेंट्स की लाइफ में.

प्लानिंग अ वेडिंग, ग्रेजुएशन, हाउस वार्मिंग और एनी स्पेशल सेलिब्रेशन? तो भैया इससे पहले कि आप स्ट्रेस करें कि वेन्यू कहाँ होगा, डेकोर कहाँ से होगी, केटरिंग कौन करेगा और हर वो छोटी छोटी बारीक सी जो डिटेलिंग होती है ना, उसकी चिंता करने के बजाय आपको एक नाम के बारे में जानना है, वेनिसा इवेंट्स। यस, दे मेक प्लानिंग सिंपल बाय ब्रिंगिंग एवरीथिंग टुगेदर इन वन प्लेस। वेन्यू सेलेक्शन हो, ब्यूटिफुल डेकोर हो जो कि सिग्नेचर इवेंट्स करता है, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, डिलिशियस केटरिंग एक्सक्लूसिवली बाय रिनोन बसेरा ग्रैंड। तो अब आप फोकस कर सकते हैं सिर्फ मेमोरीज बनाने पे व्हाइल दे टेक केयर ऑफ रेस्ट। सो कॉल हरी बसेरा टुडे एट 469-442-8770। वेनिसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर। चलिए अगले गाने की तरफ जल्दी से लेकर के चलते हैं, फिर हमारी चर्चा चलती रहेगी। एनआरआई इमिग्रेंट्स, एनआरआई क्यों बोल रही हूँ यार मैं, इमिग्रेंट पहले वाले या अभी वाले? अभी वालों की तो बहुत सारी चीज़ें पता है कि मैं खुद अभी वाली हूँ, पर जो पहले आए थे उनकी कहानियाँ सुनने में बड़ा मज़ा आता है, मुझे तो बहुत मज़ा आता है। क्योंकि हम लोग तो आकर के आजकल फ़ोन उठा के वीडियोस बनाने लगते हैं, इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, एक पर्सनल ब्रांड बना रहे हैं, लग्जरी चेज कर रहे हैं, पर उस समय जो लोग आए थे ना, तो बस वो लोग एक ही ख्याल से आए थे, जस्ट लेट मी बिल्ड अ बेटर लाइफ फॉर माई फैमिली एंड फॉर माई सेल्फ। बस इस ख्याल से अपना देश छोड़ के इस देश में एक बेहतर ज़िंदगी के लिए आए थे।

0: Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
1: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। This summer enjoy 20% off on all appetizers, tandoori items and mocktails only at Tandoori Flame. Chicken tandoori, malai chicken tikka, paneer tikka, momo ya soya champ. अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. Dine in only at Tandoori Flame Garland, where every bite is a celebration.
2: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
3: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
4: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
5: इतना सब और प्राइस?
4: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
6: मैं हीरो।
7: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
8: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
7: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
8: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
7: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
8: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
7: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
9: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
10: Calculating route, rerouting.
9: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले grocery store में जाना है।
10: Location upgraded, now heading to India Bazaar Fort Worth.
9: क्यों?
10: क्योंकि Fort Worth, Keller, Haslett और Hurst के smart लोग जानते हैं। Daily groceries हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत। Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
9: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो।
11: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
10: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
12: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, ये बॉक्सेस उठा ले रे।
11: अरे बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL वर्ल्डवाइड को बुलाते हैं।
12: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
11: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
12: इंडिया तक।
11: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और वर्ल्ड वाइड, कम्प्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज।
4: SFL वर्ल्डवाइड, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
13: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just

0: Cameron. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
1: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
2: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
3: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
4: तुमसे मिलके दिल का है।
2: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
3: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
5: डालस की धड़कन 104.9 FM फन एशिया रेडियो।
6: वेलकम बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। आप सुन रहे हैं अपने होस्ट आयुषी को और हमारे यहाँ पे चल रही है चर्चा। जी हाँ, आयुषी जब भी आती है तो किसी न किसी विषय पर चर्चा चलवा ही देती है और आप भी मेरे साथ उस चर्चा में लग ही जाते हैं। तो आज चर्चा चल रही है कुछ ऐसे विषय पर कि जो लोग पहले यहाँ पर आए थे अमेरिका में, भारत से या भारत के आसपास जितने भी देश हैं, जो भी इमिग्रेंट्स हैं उनकी बात चल रही है। जो इमिग्रेंट्स आज से 30, 35, 40 साल पहले आए थे और जो अभी आ रहे हैं कुछ 5, 10 साल पहले हमारे जैसे वाले, उनकी ज़िंदगी में क्या ऐसा है जो डिफरेंट था। बहुत कुछ डिफरेंट है और बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, बहुत सारे आपके रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। अभी जैसे एक मैम का कॉल आया था, उन्होंने मुझे बताया कि सोचो कि तुम्हारे फ़ोन से हम गूगल मैप्स डिलीट कर दें, क्या करोगी तुम? सोचिए क्या करिएगा आप अगर गूगल मैप्स डिलीट कर दिया जाए। कहीं भी आना जाना कितना कठिन हो जाएगा। जो आजकल हम गाड़ियां उठा के लंबे लंबे ट्रिप्स पे निकल जाते हैं, लोग उस समय हाथों में मैप लेके निकला करते थे और हाथों पे उस मैप पे रास्ते देख करके, नक्शा देख करके। आजकल एक टर्न मिस हो जाता है ना तो लड़ाई हो जाती है गाड़ी में पति पत्नी की, क्या है ठीक से नहीं बताती हूँ, ये वाला कट मिस हो गया। जबकि गूगल मैप चल रहा है फिर भी उस समय कागज़ के मैप को खोल के रास्तों को देखना कितना मुश्किल होता होगा।

0: Welcome to the URA Debt Relief segment. Today we have pleasure of having URA Debt Relief Organization representative, Mr. Aman. He's going to tell us about URA Debt Relief Program. Hi, Mr. Aman. Thanks for joining us on Fanesha 104.9 FM.
1: फाइनेंशियल सुनने वाले सभी लिसनर्स को अमन और उरा की तरफ से एक बार फिर से नमस्कार। सो दोस्तों, ये महीना तो बाय बाय कहने जा रहा है। बहुत सारे दोस्तों ने इस महीने हमें कॉल किया और काफी पैसे बचाए भी, लेकिन कुछ दोस्तों ने फिर से वही गलती की जो पिछले महीने या उससे पिछले महीने या पिछले साल से करते आ रहे हैं, यानी कि क्रेडिट कार्ड की मिनिमम पेमेंट भरी। अगर वो भी पैसा बचाना चाहते हैं, जल्दी से डेट फ्री होना चाहते हैं, तो अभी भी कॉल कर सकते हैं। जो मिनिमम पेमेंट अगर आने वाले हफ्ते में ड्यू है या अगले महीने वो जो मिनिमम पेमेंट करेंगे, उससे पहले अगर आप पूरा को कॉल कर लें तो आपका आधे से ज्यादा कर्जा माफ करवाया जा सकता है। सो सिंपल, आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड का डेट है, कोई भी बिजनेस के क्रेडिट कार्ड का डेट है, स्टोर का क्रेडिट कार्ड का डेट है, उसको अगर आप आधे से ज्यादा माफ करवाना चाहते हैं तो URA को कॉल कीजिए। ना सिर्फ क्रेडिट कार्ड बल्कि आपके पर्सनल लोन्स हैं या फिर आप गाड़ी की जो किस्तें भर भर के तंग आ चुके हैं, वो गाड़ी की किस्तें जो गाड़ी रिपोजेस हो गई है या टोटल हो गई है, इंश्योरेंस क्लेम पूरा नहीं दिया गया, उसको भी आप नेगोशिएट करके आधे से ज्यादा माफ करवा सकते हैं। सिंपल कीजिए कि मिनिमम पेमेंट करने से पहले URA को कॉल कीजिए। हमारा टोल फ्री नंबर है 1-888-888-9914, 1-888-888-9914, या फिर आप अपने दोस्त अमन यानी मुझसे भी बात कर सकते हैं। कॉल मी डायरेक्टली 9167763555, 9167763555, अगेन 9167763555, और हमारी वेबसाइट है www.ura.org। लेकिन मिनिमम पेमेंट से पहले कॉल करेंगे तो पैसा भी बचाएंगे और जल्दी से डेट फ्री भी हो जाएंगे और क्रेडिट भी बूस्ट अप हो जाएगा।
0: ओके, थैंक यू अमन, थैंक यू फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन।
1: थैंक यू।
0: तो ये थे अमन फ्रॉम URA डेट रिलीफ, एंड अगर आप इन्हें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो प्लीज कॉल कर लीजिए। The phone number is 1-888-888-9914, www.ora.org। तो चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारे गाने लाइन अप करके रखे हैं आपकी फरमाइश पर, और जल्द ही हमारा अगला सेगमेंट आने वाला है, मतलब जहां पर हम आपको देंगे कुछ गिव अवेज। तो तैयार रहिए उसके लिए। फिलहाल इस खूबसूरत से गाने को एंजॉय करिए।

Diamonds aren't just forever, they are even more irresistible during the Tanishq Festival of Diamonds. So now you can enjoy up to 25% off on diamond value and making charges, plus 0% deduction on the extra on exchange of gold above 18 carats. So celebrate the season with timeless sparkle at Tanishq. Terms and conditions apply. To jaiye, visit kariye Tanishq Frisco mein. चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं. बहुत सारे गाने लाइनअप हो गए हैं आपकी फरमाइश पे. बहुत बहुत धन्यवाद इतना कॉल करने के लिए, बिकॉज आई ऑलवेज से आपके कॉल्स ही हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं हमारे शो को अच्छे से करने के लिए. और आज काफ़ी देर तक हमने इस बात पे चर्चा की. NRI इमिग्रेंट्स शो पहले आए थे, यू नो, काफ़ी पहले, 30-35 साल पहले, और अभी वाले वालों में तो आई नो हमारे भी स्ट्रगल्स हैं, हमारे स्ट्रगल्स में भी थोड़े अलग होंगे, बट हमें हमेशा चिंता सताते रहती है बहुत सारे चीज़ों को लेकर के, जॉब को लेकर के, इमिग्रेशन के इतने सारे वीज़ा इश्यूज हैं, ये है वो है, सब कुछ दिमाग में चलता रहता है. बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है इतने साल यहाँ पे रहने के बाद तो फिलहाल ज़िंदगी काफ़ी आसान हो गई. काफ़ी चीज़ें हमें बहुत आराम से यहाँ पे मिल जाती हैं, शायद जिसके लिए पहले वाले लोगों ने बहुत इंतज़ार किया, बहुत वेट किया, या फिर ऐसा कहें हमारे लिए वो चीज़ों को यहाँ पे बिल्ड किया एक अच्छी ज़िंदगी, यू नो, उन्होंने वो एक अच्छी ज़िंदगी के लिए आए थे और उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी लाइफ बताई. हम लोग भी उसी चीज़ के लिए यहाँ पर आए हैं. बट येस, द टाइम्स वर डिफरेंट, सो स्ट्रगल्स वर डिफरेंट, एंड परेशानियाँ अलग होंगी शायद.

राखी आ रही है, रक्षाबंधन का त्योहार याद है ना आपको, तो रक्षाबंधन पे फनेशिया और चौकटाओ कैसिनो एंड रिजॉर्ट एंड्योरेंट वांट्स टू हियर योर अनफॉरगेटेबल मेमोरी विद योर ब्रदर और सिस्टर। और हम सबके पास होती है ना कहानियाँ, कुछ बदमाशियाँ वाली, कुछ चढ़ाने वाली, कुछ नटखट वाली, वो सारी कहानियों की बात कर रहे हैं हम। तो बस आपको करना कुछ नहीं है, एक मिनट का वॉइस नोट भेजना है उस कहानी के साथ और उस मेमोरी के साथ 2148377147 पे, एंड यू कुड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रियूनियन वीकेंड एट चौकटाओ कैसिनो एंड रिजॉर्ट एंड्योरेंट। फॉर कंप्लीट कॉन्टेस्ट डिटेल्स आप जाइए फनेशिया के सोशल मीडिया पेज पे, सब कुछ वहां मिल जाएगा आपको। एंड चौकटाओ कैसिनो एंड रिजॉर्ट ड्यूरेंट वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर। भाई लेकिन आपकी उम्र 21 साल मतलब 21 ईयर्स से ज्यादा होनी चाहिए पार्टिसिपेट करने के लिए। टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। और मेरी बात याद है आपको, मैंने कहा था कुछ दिन पहले, अगर आपने मुझे नहीं सुना था तब, तो अब सुन लीजिए कि भाई इस रक्षाबंधन ना सिर्फ राखी मत भेजिए, राखी के साथ एक हैंड रिटन नोट भेजिए, यादगार बनाइए राखी, वो समय याद करिए जब हम राखी भेजते थे तो चिट्ठियाँ लिखते थे और उन चिट्ठियों में हाल चाल पूछते थे। एक बार पुराना तरीका अपना के देखिए, यही तो नया कर सकते हैं ना हम। अब नया करने का मतलब ये है कि पुराने तरीकों को अपनी लाइफ में रीइंट्रोड्यूस करो कुछ नया नाम दे करके। तो भैया हैंड रिटन नोट, चिट्ठी मत कहिए, हैंड रिटन नोट भेजिए अपने भाई बहन को अपनी राखियों के साथ।

ब्यूटिफुल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी रक्षाबंधन। और अगले गाने की तरफ जल्दी से लेकर के चलते हैं आपको, क्योंकि ब्रेक आने वाला है। मैं नहीं चाहती हूँ कि गाना अधूरा रह जाए, और हमारी कॉलर ने कहा है वो गाड़ी से उतरने वाली हैं।

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: हीरे मोती मैं ना चाहूं।
3: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग।
4: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
5: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
6: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
7: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
6: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
8: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
6: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स, और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंकवेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो, विजिट signaturecuisine.net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
9: अजी सुनते हो?
10: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
11: The OG of tax planning, AG FinTax। सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions। Every Friday 9:45 AM, only on Fun Asia Radio।
3: We need to talk।
12: अब क्या हुआ?
3: Nothing, it's not you।
12: Oh no।
3: It's the distance।
12: Distance? We live 10 minutes apart।
3: अरे it's actually not you। It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken।
0: Irving, that long distance relationship is officially over। Sal's Hot Chicken is now in Irving। Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer। Sal's Hot Chicken, Irving। Same obsession, less distance।
13: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
14: कुछ भी नहीं, Oura Debt Relief will do it for us.
13: क्या मतलब?
14: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
13: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
14: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
13: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
15: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
16: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन्स आस्किंग लंच में क्या है?
17: फिकर नॉट, वी हैव द परफेक्ट सॉल्यूशन।
0: द फ्लेवर लाउंज इन फ्रिस्को ब्रिंग्स यू इट्स ऑल न्यू वीकेंड लंच बुफे, फ्रॉम फ्लेवरफुल इंडियन फेवरेट्स टू लाइव काउंटर्स एंड शेफ स्पेशल, 25 प्लस डिशेस, वेलकम ड्रिंक, चाट, एपेटाइजर्स, मेन कोर्स एंड डिजर्ट, सैटरडे टू संडे 12 PM to 3 PM। This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking. Who are the employees your company simply cannot afford to lose? And are you doing enough to reward and retain them? An executive bonus plan using life insurance can be a flexible way to offer select key employees valuable protection today and potential future benefits later. To learn whether this strategy may fit your business, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult qualified legal and tax professionals before implementing any business insurance strategy. Not legal, tax, investment or financial advice.
18: Hi guys, this is Tiger Shroff. Enjoy Fun Asia Radio.
19: Zindagi ke kai rang. Fun Asia Radio ke sang.
20: Wonderful. वेलकम बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. और आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को, और यहाँ आयुषी की चर्चा चल रही है. जी हाँ, चर्चा कई विषयों पे करी हमने आपको. हमने बताया इमिग्रेंट्स की कहानियाँ पुरानी और नई, साथ में हमने रक्षाबंधन के बारे में बताया कि भाई हैंड रिटन नोट भेजिए, और ऐसी ही कुछ बातों पर चर्चा कर रहे हैं, आपकी फरमाइशें ले रहे हैं. और देखते देखते पता नहीं 2 घंटे कहाँ चले गए, समय बस ख़त्म होने आया है. लेकिन अभी हमारे शो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बचा है, गिव अवे का. जी हाँ, तो बस इस प्यारे से गाने के बाद गिव अवे सेगमेंट के लिए तैयार रहिए. पहले आपको ये सुंदर सा गाना सुनाते हैं, क्योंकि हमारी कॉलर ने फरमाइश जो की है.

तो बस अब वक्त आ गया है हमारे गिव अवेज का, और आपके पास मौका है डोसा और फिल्टर कॉफी जीतने का। जी हाँ, यू कैन विन डोसा एंड फिल्टर कॉफी एट सैन एडलीज वेजिटेरियन रेस्टोरेंट।

तो बस अब वक्त आ गया है हमारे गिव अवेज का, और आपके पास मौका है डोसा और फिल्टर कॉफी जीतने का। जी हाँ, यू कैन विन डोसा एंड फिल्टर कॉफी एट सैन एडलीज वेजिटेरियन रेस्टोरेंट एंड इंडियन फूड। 100% प्योर वेजिटेरियन है और फ्रेश और ऑथेंटिक फ्लेवर्स मिलेंगे आपको यहाँ पे। यूल गेट क्रिस्पी डोसा, फ्लफी इडलीज, कम्फर्टिंग साउथ इंडियन फेवरेट्स, और साथ में शहर की सबसे बेस्ट फिल्टर कॉफी। फैमिली डिनर्स टू केटरिंग सर्विसेज विद जैन फ्रेंडली फ्रेंडली ऑप्शन इज वेल। तो आपको जाना है सैन इडली वेज रेस्टोरेंट इसके लिए। ये लोकेटेड है हाईवे 121 और कस्टर जंक्शन पे। फिलहाल डोसा जीतने के लिए और फिल्टर कॉफी जीतने के लिए आपको फोन उठाना है और स्टूडियो के नंबर पे कॉल करना है सवाल सुनने के बाद। तो पहले मत कर देना भाई। तो स्टूडियो का नंबर है 9722355555। फोन उठाइए, कॉल करिए। सवाल बड़ा ही सिंपल सा है। गाना प्ले कर रही हूँ, मूवी का नाम बताना है आपको।

तो भाई एक बार जोरदार तालियां हो जाएं हमारे विनर्स के लिए, वरुण अग्रवाल एंड सौरभ शुक्ला। तो भाई आप जा सकते हैं सैन इडली रेस्टोरेंट, जहां पर आपको मिलेगा एक डोसा ऑफ योर चॉइस प्लस वन फिल्टर कॉफी। इट्स लोकेटेड एट हाईवे 121 एंड कस्टर्ड जंक्शन। चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं, वक्त बहुत कम बचा है मेरे पास, बस 15 मिनट और हैं आपकी फरमाइशें पूरी करने के लिए। और मेरे पास अभी भी हैं ऐसे कुछ गाने जो आपकी फरमाइशों से लाइंड अप हैं। उसके पहले आपको ये बता दूं दैट यू हैव टू बी रेडी फॉर दिस अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक, द वन एंड ओनली सोनू निगम लाइव इन कॉन्सर्ट। जी हाँ, एक्सपीरियंस रेवोल्यूशन सैटरडे सेप्टेम्बर 26th एट 8:30 PM एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर इन एलन। योर फेवरेट सॉन्ग्स, दैट आइकॉनिक वॉइस, ऑल लाइव। टिकट अवेलेबल एट टिकट मास्टर। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 855-360-SHOWS। रेवोल्यूशन सोनू निगम लाइव, एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फाइनेंशियल नेटवर्क। तो बस जाना मत भूलिए, सोनू निगम आ रहे हैं, सारे सोनू निगम के फैंस के लिए है ये। शो को आगे बढ़ाते हैं, अगली फरमाइश, जिन्होंने गिव अवे तो नहीं जीता पर ये गाना जरूर प्ले करेंगे हम आपके लिए।

तो बस अब वक्त हो रहा है आप लोगों से विदा लेने का. जी हाँ, बहुत लाइक अब बहुत समय हो गया है. 2 घंटे बीत गए, कैसे पता नहीं लगा. आज जाने का टाइम हो रहा है, कल फिर मिलेंगे. जी हाँ, अगले हफ्ते के 4 दिन मैं आने वाली हूँ, मतलब आज को लेकर के थर्सडे तक. आपकी होस्ट आयुषी आपको एंटरटेन करेगी, अलग अलग विषयों पर चर्चा होगी, बातें होंगी, किससे कहानियाँ सुनेंगे हम आपसे, जहाँ आप मेरी हर टॉपिक पे मतलब मेरा साथ दे ही देते हैं और मेरा शो अच्छा हो ही जाता है. आपके साथ से ही हमारा शो चलता है. मैं हमेशा कहती हूँ इस बात को कि आपके कॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. प्लीज़ कॉल करते रहा करिए, हमारे जितने भी रेडियो होस्ट हैं उनको मोटिवेट करते रहा करिए. आप कॉल करते हैं, हम लोगों को यहाँ बहुत मज़ा आता है. तो चलिए, वक्त ले आज के लिए विदा ले रही हूँ. अब मेरे बाद यहाँ पर होंगी किरण जी, और बहुत ही प्यारा और खूबसूरत शो लेकर के आते हैं. उनके साथ आप इंजॉय करिए फनीशिया 104.9 FM को. आज के लिए मैं विदा ले रही हूँ, कल फिर मिलेंगे और देखते हैं किस बात पे चर्चा होती है. साइनिंग ऑफ फॉर द डे, योर होस्ट आयुषी, एंड विल सी यू टुमारो. ये रहा एक प्यारा सा गाना शहनवाज की फरमाइश पे. जाते जाते ना, मेरी फेवरेट एक्टर, मेरी फेवरेट एक्ट्रेस और वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स शहनवाज की फरमाइश पे.

0: यार मॉडर्न मंगलसूत्र ढूंढते ढूंढते थक गई हूँ।
1: तो कैरेट लेन चलो, दे नाउ हैव अ स्टोर इन फ्रिस्को एंड द बेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस।
0: सीरियसली, कैसा कलेक्शन है?
1: मिनिमल, डायमंड, एलिगेंट, एवरीडे स्टाइल्स। यू विल प्रोबेबली स्पेंड मोर टाइम चूजिंग देन शॉपिंग।
2: फाइंड द मंगलसूत्र दैट मैचेस योर स्टाइल एट कैरेट लेन, होम टू द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस। कैरेट लेन, नाउ ओपन इन फ्रिस्को नेक्स्ट टू तनिष्क।
3: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
4: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
3: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
4: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
3: सच में सब संभालेंगे?
4: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
2: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। Vanessa Events, your celebration partner.
5: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य। एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज week 8 a.m. to 8 p.m. walk in anytime, 9191 Kaiser Way, suite 205, Frisco.
6: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
2: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
7: Yaar, boss ne fir se daat diya. Traffic alag. और ऊपर से ये स्ट्रेस।
8: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
7: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
8: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
7: ये क्या होता?
8: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
9: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस। फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
2: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन।
10: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer?
11: उमर ख्वाजा।
12: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
13: भूख लगी
14: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
15: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 Eatery। ऑनेस्टली, ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
2: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू पेज 3, हब 121 मैकिनी।
16: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.

0: Spreading love and understanding with best music. 104.9 FM.
1: से देसी जुड़ जाओ अपनी धरती से देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फनेशिया 104.9 FM।

A very, very good afternoon to the listeners of 104.9 FM Fun Asia Radio. सुन रहे हैं आप, मैं हूं किरण आपके साथ. Thank you so much for connecting with us this afternoon. और जी, ये afternoon drive time आपके लिए आता है 2:30 से 5 बजे तक, Monday through Friday, पांचों दिन हफ्ते के. मैं रहती हूं आपके साथ और 972-235-5555 के थ्रू आप ही रहते हैं मेरे साथ. Mondays आर वेरी स्पेशल बिकॉज मंडे इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू यू, माई वेरी स्पेशल ऑडियंस. आप सब मुझे सुनते हैं, अपनी फरमाइशें कर सकते हैं मंडे के दिन, क्योंकि मंडेज को लेकर आती हूं आपके लिए फिल्मी फरमाइश, पसंद के, आपकी पसंद के गाने आपके मनपसंद रेडियो स्टेशन पे आपकी मनपसंद आरजे के साथ. यही है मंडे का फंडा. सो थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग एंड कीप दोस कॉल्स कमिंग. आई एम प्लेइंग योर फेवरेट सॉन्ग्स. 90s से आगे की रिक्वेस्ट कीजिए, दैट्स माय रिक्वेस्ट.

मुसाफिर कैफे से लिया गया है ये गाना, विक्रांत मेसी, वेदिका महिमा, और ये नई मूवी है जी। काफ़ी स्पेकुलेशंस हैं इसके बारे में, सो लेट्स सी के हाउ डज इट अट्रैक्ट द ऑडियंस। अच्छा, अब आगे बढ़ रही हैं, मेरे पास रिक्वेस्ट लाइन अप होनी शुरू हो गई हैं। थैंक यू शिवानी, सरेना और भी जो लोग कॉल करके अपनी अपनी रिक्वेस्ट बता चुके हैं। वन बाय वन जैसे जैसे आपकी रिक्वेस्ट आती जाएंगी उसी सीक्वेंस में उसे प्ले करेंगे आपके लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताऊं कि माई टाइम इक्विटी, जो कि सीपीए सुधीर पाए लीड करते हैं इस कंपनी को, दे हेल्प इंडिविजुअल्स एज वेल एज फैमिलीज बिल्ड स्मार्टर फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज। किसके थ्रू जी? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटीज, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, मतलब चाहे आप लॉन्ग टर्म वेल्थ एक्यूमुलेट करना चाहते हो, या आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हो, या फिर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो करने की प्लानिंग करना चाहते हो, जो भी आपके गोल्स हैं, माई टाइम इक्विटी आपके लिए पर्सनलाइज सॉल्यूशंस बनाएगी बेस्ड ऑन योर गोल्स। सो गिव देम अ कॉल अगर आपका कोई भी सवाल है। देयर इज नो हार्म इन कॉलिंग एंड डिस्कसिंग योर गोल्स विद देम एंड सी व्हाट दे हैव टू ऑफर। 4697021272 is that number, या फिर आप उनकी वेबसाइट विजिट कीजिए विच इज mytimeequity.com। एंड दिस वन इज गोइंग आउट टू शिवानी।

यंगिस्तान फिल्म से सुन रहे थे आप ये गाना। 2014 की ये फिल्म जिसमें हमें नजर आए जैकी और साथ ही साथ नेहा शर्मा और फारूक शेख। और जी अराउंड बहुत ज़्यादा कोई सुपरहिट तो ये मूवी नहीं हुई थी, लेकिन इसके चंद एक गाने बहुत पसंद किए गए जिनमें से एक था ये अरिजीत सिंह की आवाज़ में। अच्छा, आपकी फरमाइशों का सिलसिला इसी तरह जारी है। अगली फरमाइश निधि की रिक्वेस्ट पे प्ले कर रही हूँ। निधि, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग रिकमेंडेशन। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बताती चलूँ कि अगर अनफॉर्चुनेटली आप किसी कार या फिर किसी ट्रक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं या फिर देर इज़ अ स्लिप और अ फॉल इंसिडेंट, तो हम सब जानते हैं कि ऐसी सिचुएशन एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल हो सकती है। पेपर वर्क के साथ डील करना, लीगैलिटीज़ के साथ डील करना, इंश्योरेंस कंपनीज के साथ डील करना, साथ ही साथ अपनी सेहत का ख्याल रखना, अगर आपका कुछ भी कोई यू नो फिजिकल वेलबींग एज वेल एज इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो उस सब के जगल करने में इंसान हो जाता है एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल। तो आपको सिर्फ अपनी वेलबींग का ख्याल रखना है एंड लेट अटर्नी उमर ख्वाजा एंड हिज टीम टेक केयर ऑफ द रेस्ट। जी हाँ, दे विल नॉट ओनली फाइट योर केस फॉर यू बल्कि दे विल हेल्प यू गेट द बेस्ट कॉम्पनसेशन दैट यू डिजर्व। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग अंटिल यू विन द केस। तो आपके लिए है ये एक कंप्लीटली विन विन सिचुएशन। अटर्नी उमर ख्वाजा और उनकी टीम को कॉल कीजिए फॉर अ फ्री कंसल्टेशन। लेट देम गाइड यू टू फॉर द नेक्स्ट स्टेप्स। दैट नंबर इज 4693005046 4693005046, या फिर उनकी वेबसाइट विच इज अटर्नी उमर attorneyomar.com. And with this, we are moving on to this next number. Nidhi, beautiful request. Here is for you.

That was taken from Kala movie. और आप जो अगला गाना आपके लिए लगा रहे हैं, that is taken from the movie दावा, जिसमें हमें नजर आए अक्षय कुमार और रवीना टंडन. सुनैना की रिक्वेस्ट पे दिस नेक्स्ट नंबर, बहुत ही प्यारा गाना सुनैना आपने मुझे याद दिलाया है. मेरा ख्याल है काफी अरसे से मेरी प्लेलिस्ट पे ये नहीं था, बट थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग.

0: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
3: ओ हाँ, ये तो अलग है।
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: एक और लड्डू ले लो।
6: थोड़ी और बिरयानी।
5: अरे अमेरिका जाके थोड़ी मिलेगा।
7: अब सिर्फ सूटकेसेस ही नहीं, वेट, कोलेस्ट्रॉल और शुगर भी एक्स्ट्रा बैगेज बनके साथ आ गए।
8: इंडिया ट्रिप के बाद या कभी भी अपनी हेल्थ को गेस वर्क पर मत छोड़िए। स्केड्यूल योर एनुअल हेल्थ चेकअप एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अलोंग विद ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल एंड वेट चेक्स, दे आल्सो ऑफर डिप्रेशन एंड एंग्जायटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ असेसमेंट, फाइब्रोस्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग एंड मेनी अदर प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग्स। कॉल और टेक्स्ट 214-666-6259। पैशन Health Primary Care.
9: Hocho.
10: Hoko.
9: Ocho.
10: Hoko.
9: Ocho.
10: It's Hoko.
11: अरे बस भी करो यार।
10: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है।
11: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है? एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा।
4: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में। वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस। टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज।

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: जिंदगी एक रंगमंच है
2: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल। रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो। दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन। फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन। कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com।
3: वी नीड टू टॉक।
4: अब क्या हुआ?
3: Nothing. It's not you.
4: Oh no.
3: It's the distance.
4: Distance? We live 10 minutes apart.
3: Are it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
0: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
5: The biggest gift you can give your child is the gift of confidence. I, Sunhee Simon Santiago, and my co-founder, Audra Langston, have coached debate champions, valedictorians, and Ivy League grads. We've created an online 3rd through 6th grade course that isn't just a public speaking class. It's a guide for building lifelong leaders. For more information, visit NextGenSpeakersAcademy.com. That's NextGenSpeakersAcademy.com.
6: सुनो, कल बहुत काम है। पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली। कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
7: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
6: कहाँ?
8: फूडिस्तान इन ऑबरी। फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, केटरिंग सर्विसेज, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइव एंड अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
0: फूडिस्तान इन ऑबरी। मेंशन फन एशिया एंड एंजॉय 10% डिस्काउंट।
9: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 ईयर्स
10: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फोनेशिया 104.9 FM।

You're tuned into 104.9 FM Financial Radio. मैं हूँ किरण आपके साथ. This is your afternoon drive time with सुनहरी किरण. और हर रोज लेके आती हूँ एक नया फ्लेवर. आज का फ्लेवर होता है आपकी पसंद, यानी कि फिल्मी फरमाइश. पसंद आपकी आपके मन पसंद रेडियो स्टेशन पे आपकी मन पसंद आरजे के साथ. फरमाइशों का सिलसिला जारी है. चित्रा जी की रिक्वेस्ट पे प्ले कर रही थी आपके लिए ये खूबसूरत गाना. और एक अगला गाना जो कि एक बहुत ही प्यारा गाना है, अरुण की रिक्वेस्ट पे प्ले कर रही हूँ. वेरी इंटरेस्टिंग सॉन्ग. लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि पिछले 13 साल से टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक इज प्राउडली सर्विंग द कम्युनिटी. और नाउ दे आर ग्रोइंग विद अ ब्रांड न्यू नेम एंड अ सेकंड फ्रिस्को लोकेशन. जी हां, दे आर इंट्रोड्यूसिंग लिनोक्सी मेडिकल, LUNOXY. लिनोक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. यहां मिलेगा आपको प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, इन हाउस लैब टेस्टिंग, एक्सरेज, सीटी स्कैन डायग्नोस्टिक्स, सीटी स्कैन, कार्डियक डायग्नोस्टिक और साथ ही साथ हिमालयन मेड स्पा सर्विसेज भी. सब कुछ आपको अंडर वन रूफ. तो अब आपको ये नहीं सोचना कि उफ मुझे ब्लड टेस्ट कराने कहीं और जाना है या मुझे एक्सरे कराने किसी और बिल्डिंग में जाना पड़ेगा. सीटी स्कैन अब कहाँ होगा, किधर अपॉइंटमेंट मिलेगी. Everything under one roof. This is Lunoxy Medical. And Sony pe suhaga ye ki they are open 7 days a week for you. 8 a.m. in the morning till 8 p.m. in the evening. They are open. Walk-in is welcome. You don't have to need or get any appointment. So this is how Lunoxy Medical is always, always serving community.

जी हाँ, एक्शन रीप्ले 2010 की एक्चुअली ये मूवी. दिस वाज अ काइंड ऑफ अ साई फाई रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसे विपुल शाह ने डायरेक्ट किया था. अक्षय कुमार और ऐश्वर्या राय हमें इसमें लीड रोल्स में नजर आए थे. अच्छा, ऐश्वर्या राय की जो एक इंटरेस्टिंग इस फिल्म की मैं आपको बात बताऊं कि ऐश्वर्या राय की स्ट्राइकिंग लुक और स्टाइलिंग की गई थी टू कॉपी काइंड ऑफ आप कह लीजिए बियॉन्से से इंस्पायर करके फॉर द पॉपुलर सॉन्ग जोर का झटका जो अभी मैंने प्ले किया आपके लिए. बियॉन्से की तरह की लुक अगर आप ऐश्वर्या को दी गई थी. सो नेक्स्ट टाइम जब आप इस गाने की वीडियो देखिएगा तो इस पे गौर कीजिएगा. एक बड़ा ही मजे का इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको फिल्म एक्शन रिप्ले के इस गाने का मैं बता रही थी. अच्छा, ये तो हुई कि शादी मत करिए या जोर का झटका धीरे से लगा. लगना तो सभी को है और ना हो, कहते हैं ना शादी का लड्डू, जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए. तो फिर खा के पछता लीजिए, क्या जरूरत है ना खाने की. अच्छा, बहरहाल इसी से तजाद आप कह लीजिए जो कॉन्ट्रास्ट होता है गानों का, यही यहाँ पे हर गाने की अपनी पहचान होती है. और सुनहरी किरण पे मैं आपके लिए कोशिश करती हूँ इस तरह के कॉन्ट्रास्ट भी देखें. आपके एक तरफ शादी बिल्कुल मत कीजिए या जोर का झटका, और एक तरफ तेरी मेरी, मेरी तेरी प्रेम कहानी है अनजानी अजीब सी. वो गाना अब आपके लिए प्ले कर रही हूँ. एंड दिस इज टेकन फ्रॉम द मूवी बॉडीगार्ड.

बॉडीगार्ड फिल्म से सुन रहे थे आप ये गाना। और मैं आपको बॉडीगार्ड फिल्म की एक बड़ी मज़े की बात बताती हूँ जी। 2011 में ये मूवी रिलीज़ हुई थी और इट वाज़ अ ब्लॉकबस्टर मूवी, जो कि कहते हैं कि ट्रिब्यूट दिया गया था सलमान खान की रियल लाइफ सिक्योरिटी की जो कंपनी है और शेरा जो उनके रियल लाइफ बॉडीगार्ड हैं उनको अनक्रेडिटेड उनको एक ट्रिब्यूट दिया गया था। और सलमान खान को जब बड़ी बड़ी प्रमोशनल ऑफर्स मिली इस मूवी में, चूंकि उन्होंने बॉडीगार्ड का रोल अदा किया था, तो मेजर सिक्योरिटी एजेंसीज ने सलमान को अप्रोच किया कि वो चाहते थे कि सलमान उनकी लोगो वाली शर्ट्स पहने इस मूवी में, क्योंकि वो बॉडीगार्ड का रोल प्ले कर रहे थे और उस बहाने उनकी प्रमोशन हो जाती। लेकिन सलमान ने इन तमाम ऑफर्स को रिजेक्ट कर दिया एंड ही वोर दोज ब्लैक शर्ट्स जिन पे लिखा हुआ था टाइगर सिक्योरिटी सर्विसेज, जो कि रियल लाइफ सिक्योरिटी एजेंसी है जो कि उनके पर्सनल बॉडीगार्ड शेरा रन करते हैं फॉर द पास्ट 25 ईयर्स। सो दिस वॉज एन इनडायरेक्ट वे ऑफ हिम प्रमोटिंग हिज पर्सनल बॉडीगार्ड सिक्योरिटी एजेंसी फ्री ऑफ कॉस्ट। दैट इज व्हाट यू कॉल द पावर ऑफ द ब्यूटी, आप कह लीजिए, ऑफ सलमान खान।

एंड दिस नेक्स्ट वन इज फॉर ऑल द टेक्सस बिजनेस ओनर्स. आप सबके लिए बड़ा स्पेशल मैसेज है जी. अगर आप स्मार्टर कमर्शियल एनर्जी सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं तो फिर तारा कमर्शियल एनर्जी इज हु यू नीड टू ट्रस्ट. दे आर प्राउडली सर्विंग टेक्सस बिजनेसेस सिंस 2002. कंपेरेटिव रेट्स हैं, रिलायबल सर्विस है, और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी आपकी नीड्स हैं, उसके इर्द गिर्द एनर्जी प्लान्स को कस्टमाइज किया जाता है. सो इट फिट्स एग्जैक्टली व्हाट यू वांट्स. सो कोई भी आपका सवाल है, तारा कमर्शियल एनर्जी को कॉन्टैक्ट कीजिए. देयर नंबर इज 844-428-2808. उनका नंबर, या फिर आप उनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, विच इज taraenergy.com. Once again, the website is tara, TARA energy.com.

0: भगवान से, रक्षाबंधन हमें जोड़ता है अपनों से, और कुछ रिश्ते एक डोर से शुरू होते हैं और एक अनमोल निशानी के साथ हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। हर रिश्ता अपनी एक कहानी लिखता है और PMJ ज्वेल्स उस कहानी को देता है सोने की चमक, हीरों की रोशनी और क्राफ्टमैनशिप जो पीढ़ियों तक साथ रहे।
1: PMJ ज्वेल्स नाउ ओपन ऑन 13215 मेन स्ट्रीट फ्रिस्को।
2: फ्लोर्स क्लीन
3: चेक,
2: विंडोज क्लीन
3: चेक,
2: किचन क्लीन
3: चेक,
2: एयर डक्ट्स क्लीन।
3: वेट, एयर डक्ट्स भी क्लीन करना होता है?
4: बिल्कुल, जो दिखता है वो तो हम क्लीन कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं दिखता उसका क्या? That's where Duck Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No roto brush, plus dryer vent or chimney cleaning. Ghar ho, restaurants, hotels, offices, ya phir any business. Duck Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
5: बेटा, 95% आए?
6: हाँ मम्मी।
5: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
7: मेरा?
5: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
7: वो
8: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। AG Fintechs helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintechs.com. Call 972-618-8555. AG Fintechs, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
9: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
10: हेलो, वीकेंड लंच एमरजेंसी हेल्पलाइन, हाउ मे आई हेल्प यू?
11: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन इज आस्किंग लंच में क्या है?
10: फिकर नॉट, वी हैव द परफेक्ट सॉल्यूशन।
1: द फ्लेवर लाउंज इन फ्रिस्को ब्रिंग्स यू इट्स ऑल न्यू वीकेंड लंच बुफे, फ्रॉम फ्लेवरफुल इंडियन फेवरेट्स टू लाइव काउंटर्स एंड शेफ स्पेशल, 25 प्लस डिशेस, वेलकम ड्रिंक, चाट, एपेटाइजर्स, मेन कोर्स एंड डिजर्ट, सैटरडे टू संडे 12 PM टू 3 PM। दिस वीकेंड लेट द फ्लेवर लाउंज डू द कुकिंग।
12: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
13: कुछ भी नहीं. Oura Debt Relief will do it for us.
12: क्या मतलब?
13: Oura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
12: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
13: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
12: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
14: Don't let debt ruin your life. Visit oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
15: ये तारा वो तारा हर तारा।
8: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
16: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
17: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
18: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
8: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
16: वेट, इतना सब और प्राइस?
8: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन, समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
19: मैं हीरो।
5: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंड ट्रैक बन जाती है।
19: दीवारा तेरा।
6: वही आवाज आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
7: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
19: तुमसे मिलके दिल का है।
6: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
7: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
20: डालस की धड़कन 104.9 FM फनेजिया रेडियो।

0: You're tuned into 104.9 FM Fun Asia Radio. Thank you so much for connecting with me this afternoon. Afternoon drive time with Sunehri Kiran Lekar. Main Kiran aapke saath Monday through Friday 2:30 PM till 5 PM. Aur ab lekar aayi hoon aapke liye ek giveaway. This is your conversation corner with Sunehri Kiran, brought to you by Mirage Lounge. Sabse pehle to aapko ye bataun ji ki if you're looking for an interesting, zabardast, favorite hangout spot, then Mirage Lounge is the place for you. Premium hookers, delicious bites, handcrafted cocktails, live music hota hai, exciting DJ nights hoti hain, aur yahi nahi, balki ladies night aur special college nights bhi arrange karte hain Mirage Lounge wale. Sab kuch under one roof. This is Mirage Lounge for you. So, aap is Mirage Lounge ka hissa ban sakte hain. Happy hour Monday through Friday chalta hai, 11 AM, Monday to through Thursday. चलता है 11 AM till 6 PM. तो मतलब हैप्पी आवर की बजाय हैप्पी दिन ही चलता रहता है. मंडे, वेंसडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे 11 AM till 6 PM, जिसमें हुक्कर्स होते हैं 24.99 से स्टार्ट और शॉट्स होते हैं 4.99. सो जरूर आइए, एंजॉय कीजिए मिराज लाउंज को. और मिराज लाउंज आपको मौका दे रहे हैं ये $20 जीतने का ऑफ योर मिनिमम डाइन इन बिल ऑफ 50 और मोर. तो जाइएगा आप मिराज लाउंज में, $50 का आपका बिल बनेगा. इफ यू आर द विनर यू कैन गेट $20 ऑफ, विच इज अ ग्रेट गिव अवे ब्रॉट यू बाय मिराज लाउंज. और जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि मैं दो विनर्स सेलेक्ट करने वाली हूँ इस गिव अवे के लिए. तो देखिए, हम आपकी पसंद के गाने चल रहे हैं, आपके मनपसंद रेडियो स्टेशन पे चल रहे हैं, आपकी मनपसंद आई होप आरजे के साथ चल रहे हैं. तो आप मुझे बताइए कॉल करके कि कौन सी ऐसी फिल्म है जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है. अच्छा, 2000 से आगे की बताइएगा, क्योंकि जब भी मैं 90s की फिल्मों का तस्करा करती हूँ तो मुझे चंद एक ही नाम आते हैं, जैसे कि दिलवाले दुल्हनिया एंड कुछ कुछ होता है एंड हम आपके हैं कौन. वो सारी मेरी भी फेवरेट है, लेकिन लेट्स मूव टू 2000 ऑनवर्ड्स. 2000 से आगे की कौन सी ऐसी फिल्म है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, बताइए. अगर उस फिल्म का कोई गाना गुनगुनाना चाहते हैं तो एक लाइन की मैं डेफिनेटली आपको टाइम दूंगी. मुझे अपना फेवरेट मूवी का नाम बताइए और बताइए कि कौन सी मूवी वो क्यों आपको पसंद है, या उसकी स्टोरी को शेयर कर लीजिए. एनीथिंग, दिस इज कॉन्वर्सेशन कॉर्नर, सो आई एम गोइंग टू लेट यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू शेयर. फन एशिया रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर. अपना नाम बताइए.
1: माय नेम इज अतिक जैन.
0: सर, मुझे आपका नाम दोबारा से क्लियरली बता दीजिए, आवाज नहीं आई मुझे.
1: अतिक जैन. अतिक जैन.
0: अच्छा, ऑलराइट, अतिक जैन जी, बताइए क्या मूवी आपके जहन में चल रही.
1: मुझे धोनी, MS धोनी की जो बायोपिक मूवी है वो बड़ी अच्छी लगती है.
0: ओह वाओ, आई लव दैट मूवी टू. आई थिंक सुशांत सिंह वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग इन दैट.
1: या, एंड स्पेशली द सॉन्ग आई वुड वांट टू रिक्वेस्ट इज कौन तुझे, विद दिशा पाटनी आल्सो इन इट.
0: जी जी, क्या आप एक लाइन गुनगुनाना चाहेंगे उस गाने की? नो नो प्रेशर, इफ यू वांट.
1: Sorry about that.
0: No problem. I know. बहुत सारे लोग बिल्कुल नहीं गुनगुनाना चाहते. But thank you. You reminded us of a beautiful song and a beautiful movie. Thank you, Atik. सुनते रहिए. If you are the winner, I will request you to give me a call back. Okay? Thank you.
1: Sure.
0: Fun Asia Radio. You are live on air. कौन बात कर रही हैं?
2: हाय, मैं सईदा बोल रही हूँ.
0: जी सईदा जी, बताइए.
2: जी जी, मुझे धुरंधर फिल्म बहुत अच्छी लगी.
0: धुरंधर, ठीक है. और कोई धुरंधर का खास गाना?
2: हवा हवा. हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे.
0: बिल्कुल सही है, बिल्कुल. ये गाना तो मेरा ख्याल है धुरंधर के आने से कोई 50 साल पहले से फेवरेट है लोगों का.
2: हाँ, लेकिन इसमें बहुत आके जबरदस्त हो गया.
0: बिल्कुल सही, जबरदस्त. थैंक यू सईदा जी, सुनते रहिए फन एशिया रेडियो. यू आर लाइव ऑन एयर. व्हाट इज योर नेम?
3: हेलो, माय नेम इज ऑरी. And so my favorite song is Dhurandhar.
0: Dhurandhar, okay. And what song do you like in Dhurandhar?
3: Naal Nachna.
0: Naal Nachna. All right. Thank you, Ari, for your call. Keep listening. Fun Asia Radio, you are live on air. Apna naam bataiye.
4: Hi.
0: Hi.
4: Mera naam Archana hai.
0: Ji, Archana.
4: Archita. Sorry, Archita.
0: Archita. Archita. I'm sorry. Ji, Archita, bataiye.
4: मुझे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये मूवी बहुत पसंद है. और उसका स्पेसिफिकली गाना है परिंदे उड़े परिंदे. मैं गाना नहीं गा सकती, सॉरी. बट मुझे वो मुझे मूवी बहुत पसंद है. और कभी भी, मतलब ऐसे भी अगर मूवी अगर शॉर्ट्स अभी कहीं भी आ रहा होगा तो आई गेट ग्लूड. मुझे बहुत पसंद है उसका हर एक बिट एंड कॉर्नर, लाइक हर एक पार्ट. मुझे वो तीन दोस्तों के लिए बहुत पसंद है.
0: जबरदस्त. अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे एक लाइन में कोई ऐसा लेसन बताइए जो आपने इस मूवी से सीखा, तो क्या सीखा आपने?
4: अरे बाबरे, देखो काम तो रहता ही रहता है, काम तो चलता ही रहता है, बट समटाइम्स हैविंग अ फैमिली लाइक अ फ्रेंड, लाइक जैसे हम लोग यहाँ पे है यूएस में है, हमारी फैमिली तो वहाँ है, बट समटाइम्स फ्रेंड्स बिकम फैमिलीज एंड दे टीच यू अ बिगर लेसन, सो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव फ्रेंड्स अवे फ्रॉम होम.
0: That is such a beautiful takeaway from the film. Archita, please sunte rahiye. If you are the winner, I will ask you to give me a call back for your information. Thank you so much.
4: Sure.
0: All right, Ji, this was such a beautiful conversation corner with you guys. Apni pasand ki movies aapne mujhe batayi, apni pasand ka gana bataya. Ek do calls mein aur lungi and then we will have to wrap the segment up. Fun Asia Radio, you are live on air. Apna naam bataiye.
5: Hey, mera naam Shreera. I like this movie, Pinjar.
0: Pinjar. Urmila Matondkar and Manoj Bajpayee, right?
5: Exactly, right.
0: I love that movie. आपने कौन सी movie याद दिला दी है? उस movie को देख के तो मुझे लगता है आँखों से आंसू ही नहीं रुकते. All right. तो कोई खास movie का कोई गाना या कोई बात आप share करना चाहते हैं?
5: वैसे तो movie के सारे गाने अच्छे थे, but उसमें एक छोटा सा short song था. वो लोग रियाज कर रहे होते हैं, सीता को देखे है सारा गांव, वो मुझे बेस्ट लगता है.
0: ठीक है जी, श्री राम, थैंक यू सो मच. प्लीज सुनते रहिए, आई विल अनाउंस द विनर इन अ बिट. फन एशिया रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर. व्हाट इज योर नेम?
6: मेरा नाम राज.
0: जी राज, बताइए. नाम आपका कई बार सुना है मैंने, वैसे मेरे राहुल कहते हैं, मैं राज भी बहुत बार सुना है. बताइए.
6: मेरा फेवरेट मूवी आफ्टर 2000 ये जवानी है दीवानी.
0: ये जवानी है दीवानी. एंड व्हाई डू यू लाइक द मूवी?
6: आई मीन इट फील्स लाइक ए एक्चुअल बॉलीवुड मूवी आफ्टर सो लॉन्ग इन 2000s. इट हैज इमोशन, इट हैज, इट्स अ वेरी नीट मूवी, इट हैज फ्रेंडशिप, लव, एवरीथिंग.
0: परफेक्ट. और ये जवानी है दीवानी का आपका पसंदीदा गाना कौन सा है?
6: बलम पिचकारी.
0: इट इज. थैंक यू सो मच राज, सुनते रहिए. आई एम गोइंग टू अनाउंस द विनर इन अ बिट. ऑलराइट जी, दैट वाज ऑल द टाइम आई हैड फॉर दिस गिव अवे. एक लास्ट हमारी, अच्छा कॉलर बंद हो गए, तो मुझे 2 सेकंड का टाइम दीजिए, मैं गाना प्ले करती हूँ और फिर विनर 2 सेलेक्ट करके और वापस आती हूँ और लेती हूँ आप सबको, अनाउंस करती हूँ आज के हमारे लकी विनर. दिस इज 104.9 FM फन एशिया रेडियो.

जी हाँ, विनर सेलेक्ट हो चुके हैं जी. मैथ के फॉर्मूले ने अपना जवाब दे दिया. एज आई ऑलवेज से, आई डोंट पिक द विनर, योर लक डिसाइड्स योर विन. और आज सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर पार्टिसिपेटिंग एंड टेलिंग मी दीज ब्यूटिफुल मूवीज एंड योर फेवरेट सॉन्ग्स एंड वाई यू लाइक द मूवी. एंड आज की जो हमारी लकी विनर हैं वो हैं अर्चिता, एंड द सेकेंड लकी विनर इज नाजलीन. सो अर्चिता, अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज गिव मी अ कॉल बैक सो दैट आई कैन टेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन एज वेल एज नाजलीन. आई डू हैव योर personal information. So congratulations to both of you. This is Mirage Lounge $20 off with a minimum dine-in bill of $50 or more. They are located on McKinney Ranch Parkway. So do visit or Mirage Lounge aap vaise bhi zarur jaiye aur enjoy kijiye unka delicious food and the great ambience that they have. Aur saath hi saath aap sab participate karte hain. Iske liye main tahe dil se aap sab ki bahut zyada mashkoor hoon. Thank you so much.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
7: Hey! तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
8: लिया।
7: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
8: नहीं आया।
7: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे? इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू. होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर. नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास. कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-772. That's 972-863-772.
9: Visit www.sanadainc.com today.
10: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.
11: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khwaja, the official injury partner of Fun Asia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khwaja, your legal lifeline.
12: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, ये बॉक्सेस उठा ले रे.
13: अरे बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL Worldwide को बुलाते हैं.
12: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
13: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
12: इंडिया तक.
13: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और वर्ल्ड वाइड, कम्प्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज.
14: SFL Worldwide, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
15: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
16: Calculating route, rerouting, rerouting.
15: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है.
16: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
15: क्यों?
16: क्योंकि Fort Worth, Keller, Haslett और Hearst के स्मार्ट लोग जानते हैं. डेली ग्रोसरीज हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत. Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
15: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो.
13: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ. स्विच द रूट.
16: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड.
17: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान. myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस. और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स. 15,000+ गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा. विजिट myfamilyhomeloan.com. homeloan.com or call 469-734-3338. 469-734-3338. MyFamilyHomeLoan.com is powered by Loan Factory. NMLS 2025289. Licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
8: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
9: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
18: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं।
9: तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
19: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
18: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
20: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चौक टावर कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चौक टावर कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 ईयर्स ओल्ड टू गेम।
21: कितने आदमी थे?
22: सरकार पूरा का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है।

कुमार शानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में सुन रहे थे आप ये गाना ऑन योर आफ्टरनून राइट टाइम विद सुनहरी किरण. मैं हूं किरण आपके साथ मंडे थ्रू थर्सडे 2:30 PM टिल 5 PM. और इस गाने से मुझे याद आया कि आपको बड़ा इम्पोर्टेंट मैंने अपडेट देना है कुमार शानू के ही हवाले से. जी हाँ, अनफॉरगेटेबल 90s. गेट रेडी हो जाइए डैलस फॉर अ नाइट फिल्ड विद टाइम

इम्पॉर्टेंट मैंने अपडेट देना है कुमार शानू के ही हवाले से। जी हाँ, अनफॉरगेटेबल 90s, गेट रेडी, रेडी हो जाइए डैलस फॉर अ नाइट फिल्ड विद टाइमलेस मेलोडीज, अनफॉरगेटेबल रोमांस, जो कि कुमार शानू की आवाज का खासा था, और प्योर 90s का नॉस्टैल्जिया, द वॉइस बिहाइंड सम ऑफ बॉलीवुड्स मोस्ट आइकॉनिक सॉन्ग्स, आ रही है डैलस यानी कि प्लेनों में लाइव। आइए और एक्सपीरियंस कीजिए कुमार शानू को लाइव इन कॉन्सर्ट, आपके लिए 90s का वो खूबसूरत म्यूजिक जो कि हमारी, मेरी और आपकी 90s की, वो जब मैं आपके लिए वो 90s का बॉलीवुड करती हूँ तो हम कितने सारे कुमार शानू के भी गाने प्ले करते हैं, वही मेमोरीज हैं। वन ऑफ दोज ब्यूटिफुल सिंगर्स जो 90s के लीडिंग सिंगर्स समझे जाते थे, सेप्टेम्बर 11th को आ रहे हैं एट द ब्रांड न्यू रॉबिन्सन फाइन आर्ट्स इन प्लेनो। आइए और साथ मिलके उनके साथ आवाज मिलाइए, गाने गाइए, एक्सपीरियंस कीजिए द मैजिक ऑफ दैट एरा जो आज भी हमारे दिलों पे राज करता है। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं जी, फ्री पार्किंग है, एक्सक्लूसिव मीट एंड ग्रीट ऑप्शंस भी आपके लिए प्रोवाइड की जाएंगी, तो अपने टिकट्स आज ही बुक कीजिए eventbrite.com पे जाके। और अगर आपको कोई सवाल करना है, कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नंबर नोट कीजिए 214-869-2668। एक बार फिर नंबर नोट कर लीजिए 214-869-2668। दिस इज द नंबर वेयर यू कैन कॉल एंड आस्क ऑल योर क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस अनफॉरगेटेबल 90s कॉन्सर्ट विद कुमार शानू, प्रेजेंटेड बाय फोकस एंटरटेनमेंट एंड फॉर्चून ग्रुप। अच्छा, ये मेरा आपसे जो है अभी से हम इसको कमिट कर लेते हैं, मंडे है, थर्सडेज को मैं लेके आती हूँ आपके लिए वो 90s का बॉलीवुड। इस हफ्ते वो 90s के बॉलीवुड में प्ले करूंगी आपके लिए कुमार शानू की कुछ बेहतरीन मेलेडीज जो कि हमारे दिलों पे करती हैं आज तक राज। सो दैट प्रॉमिस इज फॉर दिस कमिंग थर्सडे।

विद अस. तो उस के लिए अभी हमें 15 मिनट और इंतजार करना है. फिलहाल मैं आपको जल्दी से दे दूं वेदर की अपडेट कि आज मंडे अगस्त 24th 4:15 PM इन द स्टूडियो. वेदर में कुछ बताने वाला नहीं, परेशान होने वाला है बिकॉज इट इज एक्सट्रीमली हॉट एंड एक्सट्रीमली डेंजरस. इस वक्त सिटी ऑफ मेकिनी में है जी 107 degrees. However, it feels like 110. Din raha sunny, hot. Highs of course 107. Heat index values up to 110. Jabki sham rahegi mostly clear. A 20% chance of showers and thunderstorm after midnight, which I hope it happens because 20% is too less a chance. Aur aage badhte hue aapko bataye, pollen count is 8.9, which is medium high again. So pollen bhi hame pareshan kar raha hai. Agar aapko pollen se elm hai, grass hai, to agar pollen se pareshani hai, to take your remedies because 8.9 is a high number. UV index is 10 to 11, which is extremely high. सनराइज आज का हुआ 6:55 6:55 AM पे, जबकि आज का सनसेट होगा 8:01 PM.

और इसी के साथ आपको ये बताती चलूं जी कि 4:30 से 5 बजे तक हमारे साथ कनेक्टेड होंगे अटर्नी संजय माथुर फ्रॉम दी माथुर लॉ ऑफिसेज, हु इज गोइंग टू टेक योर क्वेश्चंस लाइव. तो 4:30 बजे से के ऑनवर्ड्स अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं अटर्नी संजय माथुर से रिगार्डिंग इमिग्रेशन, क्रिमिनल लॉ, DWI, फैमिली, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, प्लीज गिव अस अ कॉल इन द स्टूडियो. ही विल बी हेयर

And if your child is in third through fifth grade, then Next Gen Speakers Academy can help them build the communication and leadership skills that they will use for a lifetime. Created by experienced coaches, Simon Santiago and Audra Langston, who have mentored debate champions and valedictorians as well as Ivy League graduates, ye online plan khas design kiya gaya hai, online program to help young minds grow into confident leaders. अगर आप मजीद इसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो nextgenspeakersacademy.com पे लॉग ऑन कीजिए. दैट इज nextgen speakersacademy.com. और यू कैन ऑल्सो गिव दम अ कॉल. दे आर जस्ट अ फोन कॉल अवे. 214-724-2867. 214-724-2867 उनका नंबर है. एंड गिव योर चाइल्ड द कॉन्फिडेंस टू लीड टुमारो स्टार्टिंग टुडे विद नेक्स्ट जेन स्पीकर्स Academy. और इसी के साथ इट इज टाइम टू गिव यू द करेंसी अपडेट. यूएस डॉलर कहाँ स्टैंड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू अदर करेंसीज इन द वर्ल्ड. तो सबसे पहले तो आपको बताऊं जी कि यूरो किस भाव पे ट्रेड कर रहा है आज. सो यूरो इज ट्रेडिंग एट 0.85, ब्रिटिश पाउंड 0.73, इंडियन रुपी 95.72 पे स्टैंड कर रहा है, कनेडियन डॉलर 1.38, जबकि पाकिस्तानी रुपी 277.61 Pakistani rupees are trading for $1. Nepali's rupee 153.23 pe stand kar raha hai, jabki Bangladeshi taka 122.80 Bangladeshi takas are trading for $1.

और जी आ रहा है रक्षाबंधन, और इस रक्षाबंधन फाइनेंशियल रेडियो और चौकटा कैसीनो एंड रिजॉर्ट आपके लिए लेकर आए हैं एक्साइटिंग डेली प्राइजेस एज वेल एज द ग्रैंड प्राइज। डेली प्राइजेस में है जी डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टे, और ग्रैंड प्राइज आप जीत सकते हैं। इट्स एन अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रियूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिजॉर्ट इन ड्यूरेंट। सो आपको क्या करना है, एक मिनट की अपनी वॉइस नोट रिकॉर्ड करना है, और यू हैव टू share a story, most unforgettable memory of you and your sibling. Aur WhatsApp karna hai us message ko is number pe 214-837-7147. 214-837-7147 is that number jahan aapko apna ye voice note ek minute ka WhatsApp karna hai, aur aap enter ho jayenge jeetne ke liye ye exciting daily prizes as well as the grand prize. Complete details contest ki Phanasia Radio ke social media pages pe maujood hain. So agar aapne ab tak hame follow karna shuru nahi kiya to now is the time to go start following and start keeping updated with everything that is happening for you. Choctaw Casino and Resort is located in Durant. This is where you make unforgettable memories. You have to be 21 years of older to participate. Terms and conditions apply. And while you are there, please play responsibly.

0: All right, and with that, we are heading on to a short break. Let me give you a quick gold price update. Gold price per ounce right now is $4,651.78, whereas gold price per gram right now is $149.56. Kal ki nisbat, 1 gram sone ki keemat mein $1.16 ka izafa hua, jabki 1 ounce sone ki keemat mein $36.06 ka izafa hua. That's pretty much all that I have for you where your finance matters right here on Sunehri Kiran. We are heading on to a break. After the break, I will take attorney Sanjay Mathur live on air for your questions. Stay tuned and stay connected.
1: यार मॉडर्न मंगलसूत्र ढूंढते ढूंढते थक गई हूँ
2: तो कैरेट लेन चलो दे नाउ हैव अ स्टोर इन फ्रिस्को एंड द बेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस
1: सीरियसली कैसा कलेक्शन है
2: मिनिमल डायमंड एलिगेंट एवरीडे स्टाइल्स यू विल प्रोबेबली स्पेंड मोर टाइम चूजिंग देन शॉपिंग
3: फाइंड द मंगलसूत्र दैट मैचेस योर स्टाइल एट कैरेट लेन होम टू द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस कैरेट लेन नाउ ओपन इन फ्रिस्को नेक्स्ट टू तनिष्क
4: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
5: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
6: जीत उनकी होती है, जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है. चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसीजन शूटिंग फोकस डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी फ्रिस्को प्रिसीजन स्पोर्ट्स एकेडमी वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स स्ट्रक्चर्ड कोचिंग एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव
7: फ्रिस्को प्रिसीजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 4693331099
8: Mention Funasia and get 50% off on tryout session.
9: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
10: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
11: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
12: Zindagi ek safar hai suhana. Yahan kal kya ho, kisne jana?
13: Life ho ya health, kab kya ho jaye, pata nahi. 13 saal tak Texas Primary Care Clinic ne jeeta aapka trust. Aur ab wahi trusted care, urgent care services ke saath, naye Kaiserway location par. Lunoxy Medical, founded by Dr. Mandeep Acharya. एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर अर्जेंट केयर एक्सरे सीटी स्कैन हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा सब कुछ एक ही रूफ के नीचे लुनोक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 डेज अ वीक 8 AM टू 8 PM वॉक इन एनी टाइम 9191 काइजर वे स्वीट 205 फ्रिस्को
14: फ्लोर्स क्लीन
15: चेक
14: विंडोज क्लीन
15: चेक
14: किचन क्लीन
15: चेक
14: एयर डक्ट्स क्लीन
15: वेट एयर डक्ट्स भी क्लीन करना होता है
16: बिल्कुल जो दिखता है वो तो हम क्लीन कर लेते हैं लेकिन जो नहीं दिखता उसका क्या That's where Duct Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No roto brush. Plus dryer vent or chimney cleaning. Ghar ho, restaurants, hotels, offices, ya phir any business. Duct Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
17: Shaadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar. खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है
18: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग
19: वी नीड टू टॉक
14: अब क्या हुआ?
1: Nothing. It's not you.
14: Oh no.
1: It's the distance.
14: Distance? We live 10 minutes apart.
1: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
19: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे?
2: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
1: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
2: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
1: सच में? सब संभालेंगे?
2: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
0: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
3: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फोनेशिया 104.9 FM।

Listeners, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है राइट हियर ऑन द एयरवेव्स ऑफ फन एशिया रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर. दिस इज योर होस्ट पॉल भाटिया, दिस इवनिंग सिटिंग इन फॉर मार्विन. ही इज बिजी टुडे, तो मैंने कहा चलो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें कर लूं और बातों के साथ साथ कुछ एंटरटेनमेंट भी हो जाए, क्योंकि जहां एंटरटेनमेंट आता है वहां बहुत सारे नाम आते हैं और बॉलीवुड से तो बहुत ही सारे नाम आते ही हैं. और ये जो पर्टिकुलर नाम है मैं आपके लिए बताने वाली हूँ, ये फिल्म अभी कुछ ही महीने पहले आई थी और मे बी इट्स बिन मोर देन अ फ्यू मंथ्स, पति पत्नी और वो दो. अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो डेफिनेटली इट्स वर्थ वॉचिंग. और इसमें हैं आयुष्मान खुराना, वामिका, गब्बी, सारा अली खान, रकुल प्रीत, एंड ये जो आप गाना सुनेंगे वो गुरु रंधावा एंड तानिश्क बागची के डायरेक्शन में एंड सिंगिंग में है. एंड एट द सेम टाइम इसमें जो मस्ती है इस गाने में, यू कैन डेफिनेटली फील इट. बिकॉज ये तो बात पक्की है कि जब आयुष्मान खुराना ही हिट्स द स्क्रीन, देर इज अ सेंस ऑफ प्लेफुलनेस अबाउट हिम, देर इज अ सेंस ऑफ मस्ती अबाउट हिम. जस्ट हिज फेस, ही हैज दिस स्माइल एंड दैट स्माइल इज सो इन्फेक्शियस. डोंट यू थिंक लिसनर्स? विद दैट ये शो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ इस गाने से. और साथ साथ आपको ये भी बता दूँ दैट श्री कृष्णा ज्वेलर्स इज सेलिब्रेटिंग श्रावण मासम एंड 10 ग्लोरियस ईयर्स इन डालस विद 10 स्पेक्टैक्युलर ऑफर्स फ्रॉम फ्री सिल्वर, येस यू हर्ड मी, फ्री सिल्वर एंड गोल्ड गिफ्ट्स टू डायमंड एंड सॉलिटेयर as well as you know, exciting savings on gold and diamond jewelry. There is something special waiting for you. The celebration is on now through September 17th at Shri Krishna Jewelers in Frisco. Visit them and unka jo address hai wo bhi bata dungi main aapko aur phone number bhi. It's 13145 Main Street, Suite 220, Frisco, and their number is 430-231-1111. That's Shri Krishna Jewelers celebrating 10 sparkling years in Dallas.

आई जस्ट रिसेंटली वॉच दिस फिल्म पति पत्नी और वो नहीं और वो दो एंड इट्स अ कंप्लीट इसे कहते हैं ना वेरी वेरी फन फिल्म. यू डोंट थिंक मच, यू जस्ट हैव अ गुड टाइम. इट्स अ फील गुड फिल्म एंड काइंड ऑफ लाइक रिमाइंडेड मी ऑफ अ शेक्सपियर प्लॉट जहाँ की इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं

not the failure, but the lack of, you know, luster at the blockbuster scene for Cocktail 2, he has decided to be very mindful because Romeo bhi unki khas nahi chali. तो उन्होंने इस बार ये बोला कि ही विल बी वेरी केयरफुल एज टू व्हाट रोल्स ही पिक्स फॉर डिफरेंट मूवीज. जहाँ बेसिकली कहते हैं ना, जैसे डॉक्टर सुअस ने कहा है, यू हैव ब्रेन्स इन योर हेड, यू हैव फीट इन योर शूज, एंड आई थिंक ही हैज बोथ. इफ यू हैव दोज, यू कैन स्टीयर योरसेल्फ एनी डायरेक्शन यू चूज, एंड आई थिंक दैट अप्लाइज टू ऑल ऑफ अस. हम सबके दिमाग में, जिसे कहते हैं ना कि मग्स दिया है भगवान ने, और साथ साथ फीट में, भाई हमने जूते तो पहने ही हैं, तो कोई ना कोई डायरेक्शन हम चूज ही कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है दैट वी से ओ यू नो व्हाट अब क्या होगा, एंड गिविंग अप इज नॉट नॉट नॉट एन ऑप्शन. इसी बात पे एक और बढ़िया तड़कदार गाना मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ. और ये गाना, अभी आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ना कि मूवीज खास काम नहीं कर रही हैं लेकिन गाने फिर भी ठीक ठाक हैं, ये गाना डेफिनेटली मोर देन ठीक ठाक है. और ये फिल्म है जवानी तो इश्क होना है. आई एम गोना प्ले दैट सॉन्ग फॉर यू. और उसके छोटे ही देर बाद एक छोटा सा ब्रेक आने वाला है लिसनर्स. साथ साथ आपको बता दूं दैट दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज प्राउडली ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटेक्स, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स एंड अकाउंटिंग फर्म्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स. वेदर यू आर एन इंडिविजुअल, अ स्टार्टअप और एन एस्टैब्लिश्ड बिजनेस, एजी फिनटेक्स ऑफर्स इनोवेटिव फाइनेंशियल सॉल्यूशंस टेलर्ड टू योर नीड्स. From bookkeeping, payroll accounting, and bank and credit card reconciliation to proactive tax planning, tax compliance, financial reporting, and business advisory services. They help keep your finances organized, absolutely compliant, and future ready. Trusted, efficient, and committed to your success, AG Fintechs is your partner in building a stronger financial future. For more information, you can visit them at agfintechs.com or the number to call is 469-942-9888. Wow! Say what?

0: वाओ।
1: ऑलराइट, काफ़ी कूल सा गाना था, पंजाबी और मस्ती वाला गाना। जवानी तो है, जवानी तो इश्क होना है। वरुण धवन, मृणाल ठाकुर एंड पूजा हेगड़े पे बना था ये गाना। उस फिल्म से ये चुनरी चुनरी पे भी काफ़ी बातें हुई थी। बातें तो लिसनर्स हमेशा ही होती हैं। इनफैक्ट अभी लेटेस्ट बात मेरे को बहुत मज़ा आया पढ़ के, वो ये कि आपको पता है ना कि अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति। इट हैज़ बीन ओवर 25 इयर्स सिंस ही स्टार्टेड एंड होस्टिंग दिस पॉपुलर क्विज। ओवर द इयर्स द शो हैज़ बिकम वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग प्रोग्राम्स ऑन इंडियन टेलीविजन, नोन नॉट ओनली फॉर इट्स चैलेंजिंग क्वेश्चंस एंड नेल बाइटिंग मोमेंट्स बट ऑल्सो फॉर बिग बी'स एनेक्डोट्स एंड हिज करिश्मा एंड द वे ही टॉक्स एंड द वे ही मेक्स the contestants feel at home. And then of course appearances of different celebrities who are as much in awe of him as anybody who's not even in the industry, because that's his persona, that's who he is. And उन्होंने हिंदी में कुछ देर पहले बोला कि आई नो वट इज़ गोइंग टू हैपन, सो वट आई डू एज सून एज आई वेक अप, वी हैव ऑल आर फैमिली मेम्बर्स नेम सेव्ड इन आर कॉन्टैक्ट्स एंड हैव मेड अ ग्रुप वेयर आई सेंड अ मैसेज सेइंग नमस्कार विद फोल्डेड हैंड्स, देन आई टेल देम दैट आई हैव अ शूट समवेयर एंड विल बी लेट, सो दे शुड नॉट वेट फॉर मी फॉर डिनर। आई इन्फॉर्म ऑल बिफोर हैंड दैट एंड दैट सेव्स मी, बट सपोज आई डिडंट टेल हर दैट इज जया जी, देन आई विल बी स्कोल्डेड एंड आस्क वेयर वर यू, यू डिडंट इन्फॉर्म अस, इज दिस द टाइम टू कम होम? So if I'm very late, she eats her dinner and goes to sleep herself. Isn't that funny? And with that, उन्होंने ये भी बताया कि जब एक conversation में उनसे पूछा गया कि जो घर के काम हैं, अगर household ना हो तो आप क्या करते हैं? When there is no domestic help available, particularly at night, then what do you do? He said, whether there are 4, 8 or 10 staff members, when there is no one at home, I do all the work myself. I take care of the cleaning and everything. I don't know how to cook, he said. So sometimes we order food from outside, or sometimes I ask Jaya, Devi ji, please make something. That makes her very excited and she makes different dishes for me every day and asks how I like the food. My God, Amitabh Bachchan is Amitabh Bachchan. He often leaves audiences in splits with anecdotes about his personal life, particularly his equation with his wife, Jaya Bachchan. With that, वही जो मैं आपको कह रही थी, एक गाना बहुत फेमस हुआ था इस पर्टिकुलर फिल्म से, है जवानी तो इश्क होना है, और रीमेक था और पीपल लव्ड इट और दे डिडंट लाइक इट, ईदर वे इट्स अ रीमिक्स एंड यू कांट गो टू रॉन्ग विद द रीमिक्स अनलेस यू टोटली बुचर इट, एंड दिस हैज नॉट बीन बुचर्ड। एंजॉय।

0: चुनरी चुनरी ये गाना बहुत ही कूल था। और अब मैं थोड़ी बात आपको बताना चाहती हूँ कि जो स्टीवन किंग द फेमस ऑथर, ही हैज सेड समथिंग रियली रियली इंटरेस्टिंग विच मेक्स यू थिंक। सो दिस इज वन ऑफ दोज मोमेंट्स बिफोर वी टेक अ ब्रेक। आई एम गोना शेयर सम ऑफ हिज कोट्स। द रोड टू हेल इज पेव्ड विद एडवर्ब्स। द स्केरियस्ट मोमेंट इज ऑलवेज जस्ट बिफोर यू स्टार्ट। I mean, it's one of those things that makes you think, but so do all his books. They definitely make you think. They make you wonder. And some people have that, jise kehte hain na ki they have a knack for doing things. He definitely had a knack for the jump starts, for making you shocked, for making you wanna read more. And it was always very, very nail-biting. उनकी बात एकदम से इसलिए आई क्योंकि बात हो रही थी अभी कुछ चर्चा में है कृति सुनोन और कुछ बोला कंगना रनौत ने, उसके बारे में बताऊंगी। एक छोटा सा ब्रेक एंड देन
1: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सास के फेवरेट्स भी, अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह HEB में। सोना मसूरी राइस, नानक पनीर, पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ, वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं। और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहाँ पसंद है। अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सीरीज अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं। तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स। HEB, हियर एवरीथिंग इज बेटर।
2: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
2: कुछ भी नहीं. Oura Debt Relief will do it for us.
1: क्या मतलब?
2: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
1: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
2: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call तो करो. 888-888-9914.
1: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
3: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
4: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
5: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
6: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
7: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
6: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
8: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
9: We need to talk.
10: अब क्या हुआ?
9: Nothing. It's not you.
10: Oh no.
9: It's the distance.
10: Distance? We live 10 minutes apart.
9: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
0: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
11: Dad, प्रॉपर्टी पेपर्स कहाँ है?
12: लैपटॉप में.
11: इन्वेस्टमेंट?
12: गूगल ड्राइव.
11: इंश्योरेंस? पासवर्ड्स?
12: बेटा डोंट वरी, मुझे सब पता है.
11: डैड, वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है.
0: Your family shouldn't have to search for answers when you're not there to give them.
13: Hi, this is Deepthi Verma with NRI Wealth. With proper estate planning, protect what you have built and give your family clarity and control.
0: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess. Leave a plan.
14: Weekend ka plan abhi tak nahi bana. Bas 90 minutes north of Dallas, Choctaw Casino and Resort, Durant mein. हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चकचाव कैसीनो एंड रिजॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली. मस्ट बी 21 इयर्स और ओल्डर टू गेम.
15: ऑल राइट, बातें हो रही हैं कुछ इधर उधर की और ये बात दिमाग में आई कि जो पॉजिटिव थिंकिंग होती है, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, इट एनहांसेस रेजिलियंस एंड इट इम्प्रूव्स मेंटल वेलबींग. न्यूरोसाइंस सपोर्ट्स द बेनिफिट्स ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग ऑन इमोशनल रेगुलेशन. एम्ब्रेसिंग पॉजिटिविटी इन्वॉल्व्स कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट शिफ्ट्स, नॉट इग्नोरिंग चैलेंजेस. और एक अभी बात जो हुई है, कॉन्ट्रोवर्सी हुई है कि प्रीति सुनॉन हैज कम इन अ पर्टिकुलर एड इन विच अपेरेंटली शी इज वेयरिंग अ बिकिनी एंड इट्स अ रक्षाबंधन एड. एंड उनको किसने इसको शाउट आउट किया है, रादर हु हैज कॉल्ड हर आउट? वेल, आई एम श्योर दैट कुड बी अ क्विज एंड आई एम श्योर यू विल विन इफ आई वर टू गिव यू थ्री नेम्स. इट्स नन अदर दैन Kangana Ranaut. She slammed Kriti Sanon over her Raksha Bandhan ad and said, "Why would you tie Rakhi in a bikini?" And she also wrote in Instagram, "It is a wonderful time to be a woman. Our closets are full of variety of clothes today. Today's woman is a global woman. from cocktail dresses to lehenga cholis, jeans to saris, bikinis to salwar kameez, from all the options that are available to us today, why would you tie your brother a rakhi in your bikini undergarments? Where are all your styling options? And then she wrote, haha, the advert. That means the advertisement. So she wrote, haha, the advert looks intentionally creepy. I'm going to go ahead and play a song from Kriti Sanon, and later I'll try to even play the ad for you. And uske saath saath, before I do that, listeners, I'll quickly give you some very important information. So mark your calendars. Mark as in like write it down. Texas Star Rehab and Performance Center is proud to announce our new state-of-the-art Frisco location. From orthopedic and sports injuries to pelvic floor therapy, massage therapy, geriatric rehabilitation, sports medicine, red light therapy, and functional nutrition, they deliver personalized one-on-one care designed to help you perform at your best. Trusted by professional athletes, entertainers, and community leaders, they believe every patient deserves VIP treatment. Visit TexasStarRehab.com to schedule your consultation today. Conveniently serving Frisco and Irving, Texas Star Rehab and Performance Center. Move better, feel better, and live better.

That song was taken from the movie Bhediya, जिसमें वरुण धवन के साथ थी कृति सुनोन, सचिन जगर का म्यूजिक था, विशाल ददलानी का भी साथ में म्यूजिक था, एंड बहुत ही कूल सा गाना आप लोगों ने सुना। एक और गाना बहुत ही कूल है जिसका नाम है बिजुरिया, जो कि आने वाला है। ऑल्सो गिविंग यू अ हेड्स अप कि 6 बजे के ब्रेक के बाद देयर गोइंग टू बी 2 giveaways, वन फ्रॉम फन पिज्जा किचन एंड द अदर फ्रॉम हॉको। सो देयर विल बी 2 quizzes and you have to answer them. If you answer them correctly, guess what, you will win a couple of things from one each business, that is. And with that, listeners, it's very important to tell you about an upcoming concert, Sonu Nigam Revolution. Get ready for an unforgettable night of music. Yes, the one and only Sonu Nigam live in concert. Experience Revolution Saturday, September 26th at 8:30 p.m. at the Credit Union of Texas Event Center in Allen. Your favorite songs, that iconic voice, all live. Tickets available at Ticketmaster. For more information, the number to call is 855-360-SHOWS. Revolution, Sonu Nigam Live. Exclusive media partner, Fun Asia Network. And here it is, that song that you would totally, totally, totally love, Sonu Nigam.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, aur ab ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender and MLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Kahan gaya? Kahan rakha tha? Suno na, mera wo wala set kahan hai?
7: Kaun sa?
6: अरे वो गोल वाला थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
7: अरे सारे तो सेम है।
6: नहीं वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो ये वाला।
7: ओ हाँ ये तो अलग है।
8: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
9: बेटा 95% आए?
10: हाँ मम्मी।
9: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
11: मेरा?
9: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
11: वो
8: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। AG FinTax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG FinTax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
12: हेलो वीकेंड लंच एमरजेंसी हेल्पलाइन, हाउ मे आई हेल्प यू?
13: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन्स आस्किंग लंच में क्या है?
12: फिकर नॉट, वी हैव द परफेक्ट सॉल्यूशन।
8: द फ्लेवर लाउंज इन फ्रिस्को ब्रिंग्स यू इट्स ऑल न्यू वीकेंड लंच बुफे, फ्रॉम फ्लेवरफुल इंडियन फेवरेट्स टू लाइव काउंटर्स एंड शेफ स्पेशल, 25 प्लस डिशेस, वेलकम ड्रिंक, चाट, एपेटाइजर्स, मेन कोर्स एंड डिजर्ट, सैटरडे टू संडे 12 PM टू 3 PM। दिस वीकेंड लेट द फ्लेवर लाउंज डू द कुकिंग। What would happen to your business if a key owner, partner, or top employee passed away unexpectedly? Would revenue, credit, client relationships, or daily operations be affected? Key Person Life Insurance can help provide funds to support the business during a difficult transition. Protect the people who help keep your business running. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Benefits and tax treatment depend on individual circumstances. Consult qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice.
14: Suno, kal bahut kaam hai. Pehle grocery, phir puja ka saman, gifts bhi kharidne hain aur in sab kuch ke baad main cooking nahi karne wali. Kahin acha sa dinner karke aayenge.
15: Aur ye sab kuch agar ek hi jagah ho jaye to?
16: कहाँ? फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानीपुरी, केटरिंग सर्विसेज, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी, एंड इनसाइड फूडिस्तान एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइव, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
8: फूडिस्तान इन ऑबरी, मेंशन फन एशिया एंड एंजॉय 10% डिस्काउंट।
17: The biggest gift you can give your child is the gift of confidence. I, Sunhee Simon Santiago, and my co-founder, Audra Langston, have coached debate champions, valedictorians, and Ivy League grads. We've created an online 3rd through 6th grade course that isn't just a public speaking class. It's a guide for building lifelong leaders. For more information, visit NextGenSpeakersAcademy.com. That's NextGenSpeakersAcademy.com.
18: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. fiesta veggie, pollo loco, sanao cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
10: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे?
11: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
10: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
11: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
10: सच में? सब संभालेंगे?
11: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
15: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.
9: Welcome listeners, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है right here on the airwaves of Fun Asia Radio, bringing the community together. This is your host Parul Bhatia welcoming you this evening and sitting in for Marvin Das, अपना बंदा बिंदास. Since he's busy today, I'm going to be covering in for him. और साथ साथ listeners, अब बारी आ गई है कुछ giveaways की. और ये जो particular giveaway है, बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, स्वादिष्ट giveaway है, बहुत ही yummy giveaway है. ये है from Fun Pizza Kitchen, which has launched a brand new Mexican-inspired pizza lineup. And these aren't just pizzas; they are a full-on flavor fiesta. From the fresh fiesta veggie to the fiery pollo loco, the seafood-packed Señor Cameron. Every bite is bold, exciting, and made to impress. Head over to Fun Pizza Kitchen and taste the new obsession. You can do it for yourself. New flavors, new obsession. For more details, visit funpizzakitchen.com. And ye aapko $10 gift card mil raha hai Fun Pizza Kitchen se. और जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी उसका अगर आपने सही जवाब दिया देन आई विल बी टेकिंग योर इन्फॉर्मेशन सच एज योर ईमेल एंड योर कॉल नंबर ऑफ एयर एंड देन वी विल शेयर इट विद फन पिज़्ज़ा किचन एंड दैट वे यू कैन एक्चुअली रिडीम दिस पर्टिकुलर $10 कार्ड दिस इज फॉर FPK फ्रिस्को सो इन केस यू कैंट मेक इट टू फ्रिस्को देन Just enjoy the whole quiz. But if you can make it, then definitely participate. With that, listeners, आपको बताना है जो मैं next गाना play करने वाली हूँ. ये गाना एक तो कौन सी फिल्म से लिया गया है? इसमें hero heroine कौन है? Just want to know one hero heroine. I mean, you can give me more if you have, but that'll suffice. You know, like दो आप अगर मुझे बता दें कि कौन है. और इस उसके साथ साथ आपको बताना है कि ये फिल्म आई थिंक दैट्स प्रीटी गुड व्हाई नॉट मेक इट अ लिटिल सिंपल फॉर यू गाइस दिस टाइम व्हाट डू यू से ठीक है थोड़ा सिंपल करते हैं आप जस्ट मुझे फिल्म का नाम और हीरो हीरोइन का नाम बताइए हियर इज अ सॉन्ग स्पेशली फॉर यू

0: fun. Hello.
1: Hello.
0: Hi.
1: Hi.
0: How are you doing? Panasia Radio.
1: Good. The answer is Welcome to the Jungle.
0: Welcome to the Jungle. And isme hero heroine?
1: Akshay Kumar, Disha Patani.
0: अरे वाओ, आपने देखी है फिल्म?
1: नहीं देखी तो नहीं है, बट मुझे पता है.
0: या ये गाना काफी पॉपुलर हुआ ना?
1: हाँ काफी पॉपुलर हुआ है.
0: वेल, आपने बिल्कुल सही बोला. आपका फुल नेम?
1: ईशान जैन.
0: ईशान, दैट्स अ लवली नेम. ईशान, माय सन्स नेम इज ईशान टू बाय द वे. ओके ईशान, आई विल टेक योर इन्फॉर्मेशन ऑफ एयर. कांग्रेचुलेशंस गोइंग आउट टू ईशान जैन. Stay right
1: here. Thank you.
0: All right, enjoy this lovely track, listeners. We already have a winner. Ishan Jain has won this $10 gift card from Fun Pizza Kitchen.

All right, what a lovely, lovely quiz that was. And we have a winner, Ishan, won this particular quiz. Uccha Lamba Kad Tha Naam is Gaane Ka aur film thi Welcome to the Jungle, Akshay Kumar and Disha Patani. And Patani koi kehta hai, koi Patani kehta hai, jo bhi hai. Ye film kafi, jise kehte hai na, ki ye aisi film hai ki jisme maza aayega, aisa lag raha hai. So I'd like to check it out. If you have any, have you watched this film? If you have, and if you have any comments, then do tell us. Ye Nadia wala production hai, that's what I know. And iska direction bhi jo kiya hai, wo bhi maine suna hai ki he's a very good director. So with that, हम लोग पहुंच रहे हैं नेक्स्ट गाने की ओर. जहां नेक्स्ट गाने की बात आई है, यस, एक और क्विज भी आ रहा है आपके लिए लिसनर्स. अहमद खान, बाय द वे, डायरेक्टर हैं इस पर्टिकुलर फिल्म के, एंड ही इज नोन फॉर रियली रॉन्ची कॉमेडीज एंड दे कैन बी टोटल पैसा वसूल. तो चेकआउट कीजिए वेलकम टू द जंगल. विद दैट, सम इन्फॉर्मेशन, एंड देन आई हैव अ गिव अवे कमिंग एज वेल. In fact, the giveaway is coming first and then some information. और वो giveaway क्या है, मैं आपको ये बता दूँ. ये giveaway है Hoco की तरफ से. You know, you found a truly iconic food brand when just hearing its name brings back a flood of memories. That's exactly right, and that's what Hoco has been for generations across India, and now it's here in North Texas. Whether you've been craving their legendary chana puri, iconic sandwiches, flavorful curries, or the famous Hoco cold cocoa that people absolutely swear by, you don't have to wait for your next trip to India anymore. Visit Hoco, and unka address Frisco mein hai, 2693 Preston Road, Suite 1000, Frisco 75034, and you can experience the authentic flavors that have made it one of India's most loved food brands. For the full menu and more information, you can visit hoco.us. That's hoco.us, H-O-C-C-O. Come hungry and leave with the taste of India. And you know what you're going to win? You're going to win a plate of aloo tikki chaat from Hoco by answering a simple question. Aur wo question kuch aisa hai, aapko batana hai, jo gaana main play kar rahi hu, kaun si film se liya gaya hai, aur uske saath saath isme hero heroine kaun hai, और सिंगर एंड म्यूजिक कंपोजर कौन है. बाय द वे, वो एक ही बंदा है जिसने, मैंने बोल दिया बंदा, सो इट कुड हैव बीन अ गर्ल आल्सो, बट एनीवेज, नाउ आई हैव गिवन यू अ बिग हिंट, इट्स अ मेल हु हैज गिवन द म्यूजिक एंड आल्सो सिंगिंग. वेल, यू कुड हैव प्रोबब्ली गेस द सिंगिंग बाय द वॉइस. एंड डायरेक्शन अगर आपको पता है किसने की है, तो जिसे कहते हैं ना, सोने पे सुहागा हो जाएगा. आई एम गेटिंग अ कॉल ऑलरेडी, आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज आई हैवन्ट इवन प्लेड द सॉन्ग. तो पहले आप गाना सुनिए और फिर कॉल करके बताइए.

0: श्रावण हमें जोड़ता है भगवान से, रक्षाबंधन हमें जोड़ता है अपनों से, और कुछ रिश्ते एक डोर से शुरू होते हैं और एक अनमोल निशानी के साथ हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। हर रिश्ता अपनी एक कहानी लिखता है और पीएमजे ज्वेल्स उस कहानी को देता है सोने की चमक, हीरो की रोशनी और क्राफ्टमैनशिप जो पीढ़ियों तक साथ रहे।
1: पीएमजे ज्वेल्स नाउ ओपन ऑन 13215 मेन स्ट्रीट फ्रिस्को।
2: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी एंड ए लाइफटाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड। अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फनीशा रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस।
1: चौकटा कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर। मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, प्लीज प्ले रिस्पांसिबली।
3: तारा वो तारा हर तारा।
4: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
5: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
6: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
7: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
8: Floors clean.
9: Check.
8: Windows clean.
9: Check.
8: Kitchen clean.
9: Check.
8: Air ducts clean.
9: Wait, air ducts bhi clean karna hota hai?
10: Bilkul. Jo dikhta hai, wo to hum clean kar lete hain. Lekin jo nahi dikhta, uska kya? That's where Duct Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No roto brush. Plus dryer vent or chimney cleaning. Ghar ho, restaurants, hotels, offices ya phir any business, Duct Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
11: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
12: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
13: लिया।
12: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
13: नहीं आया।
12: मुझे भी नहीं आया।
14: आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-7772. That's 972-863-7772.
5: Visit www.senadainc.com today.
15: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
5: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
16: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
17: तुमसे मिलके दिल का है।
5: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
16: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
18: Ah,
8: And indeed, listeners, welcome, welcome. Welcome right here. With that, पहुंच गए हम लोग next गाने की ओर. Yeah. एंड ये जो गाना है बहुत ही कूल है. ये गाना मैं आपके लिए प्ले कर रही हूँ. ये है फिल्म भूत बंगला. लेकिन भूत बंगला से पहले अभी तो गिव अवेज हो गए हैं. पीपल हैव ऑलरेडी वन. बट येस, आई डू हैव सम रियली कूल इन्फॉर्मेशन दैट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू, विच इज पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. हाउ मच टाइम डज योर डॉक्टर स्पेंड विद यू? 5 minutes, 10 minutes? At Passion Health Primary Care, every appointment is scheduled for 30 minutes because truly understanding your health takes time. At Passion Health, you're not just a patient, you are family. For you, for your family, and for the health of our community, Passion Health Primary Care, 30 minutes is all it takes to complete your annual physical, anxiety care, fibro scan for alcohol-related liver concerns, vitamin B12 deficiency testing, and more. All of these things are available at Passion Health. Schedule your appointment today. And here is their number, 214-666-6259, to book your appointment. That is Passion Health Primary Care. Your health is our passion. With that, ye gana from the movie Bhoot Bangla for you.

लिसनर्स, बस मस्ती के साथ साथ आज सारे ही लेटेस्ट गाने सुने आप लोगों ने फ्रॉम डिफरेंट फिल्म्स, चाहे भूत बंगला हो या वेलकम टू द जंगल हो या आवारापन 2 या कॉकटेल 2. सो मेनी मूवीज आर डूइंग रियली वेल एंड सम ऑफ देम नॉट सो मच एंड सम ऑफ देम आर डायरेक्टली गेटिंग रिलीज टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स. लेकिन एक ऐसी फिल्म जो कि अब तो आ गई है ऑनलाइन में, लेकिन जिसने पूरा धूम मचा दिया था, वो फिल्म जिसकी सीक्वल भी था, आप पहचान गए होंगे कौन सी फिल्म की बात कर रही हूँ मैं, जिसका रेट्रो म्यूज़िक इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ, जिसकी एक्टिंग को बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना अप्रिशिएट किया गया, उसी के साथ मेरे को लगा कि ये गाना मैं आपके लिए प्ले करूँ बिफोर आई हेड आउट टुडे अ लिटिल अर्ली. बट डेफिनेटली एज ऑलवेज इट हैज़ बीन अ प्लेजर बीइंग हियर लिसनर्स. आई जस्ट वांट टू से बी ब्रेव, बी सेफ एंड कीप इट रियल, जेन्युइन एंड हैपनिंग विद Fun Asia Radio, bringing the community together. This is your host Parul Bhatia, and looking forward to always bringing you more shows, more masti, more magic, and more information. Kuch na kuch baatein ho, aur aap call karein, masti karein, giveaways dein. That's life. That's called fun, and that's what Fun Asia is all about. Lots of fun. With that, the song is going out to you, Dallas, because you totally, totally, totally rock.

0: थे जो सांस।
1: यार मॉडर्न मंगलसूत्र ढूंढते ढूंढते थक गई हूँ।
2: तो कैरेट लेन चलो, दे नाउ हैव अ स्टोर इन फ्रिस्को एंड द बेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस।
1: सीरियसली, कैसा कलेक्शन है?
2: मिनिमल, डायमंड, एलिगेंट, एवरीडे स्टाइल्स। यू विल प्रोबेबली स्पेंड मोर टाइम चूजिंग देन शॉपिंग।
3: फाइंड द मंगलसूत्र दैट मैचेस योर स्टाइल एट कैरेट लेन, होम टू द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस। कैरेट लेन, नाउ ओपन इन फ्रिस्को नेक्स्ट टू तनिष्क।
4: हेलो टेक्सास परिवार, क्या आपको पता है देर इज अ फर्स्ट टाइम होम बायर प्रोग्राम अंडर फेनी एंड फ्रेडी फॉर कंफर्मिंग लोन्स दैट हेल्प्स यू टू गेट बेटर रेट्स बाय ऑलमोस्ट हाफ अ पॉइंट टू 1%। सो कॉल कीजिए कामना को एट 214-845-4189, क्योंकि आपका भरोसा ही मेरी पहचान है। NMLS 96641।
5: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
6: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
3: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
1: इतना सब और प्राइस?
3: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
7: मैं हीरो।
8: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
9: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338, 4697343338। myfamilyhomeloan.com इस powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
10: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
11: Calculating route, rerouting.
10: अरे ये क्या? मुझे मेरे वाले grocery store में जाना है.
11: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
10: क्यों?
11: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के smart लोग जानते हैं. Daily groceries हो या Pooja essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत. Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
10: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो.
12: India Bazaar at 5152 Quadrant Way, Fort Worth. Switch the route.
11: Your new destination has arrived.
13: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया.
14: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
13: नहीं.
14: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
13: नहीं.
14: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
13: वो भी नहीं.
14: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त.
15: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए. बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो. फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555. AG Fintax, your growth, our strategy.
16: AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
17: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
18: 90s के गाने सिर्फ हिट्स नहीं, हमारी यादें हैं. और अब वो लेजेंडरी आवाज आ रही है लाइव टू प्लेनो, वो आवाज जिसने 90s को अनफॉरगेटेबल बना दिया. कुमार सानू लाइव इन कॉन्सर्ट, अनफॉरगेटेबल 90s. September 11th at the brand new Robinson Fine Arts, Plano. Limited seats, free parking and meet and greet options available. Tickets at eventbrite.com. More info 214-869-2668. Presented by Focus Entertainment and Fortune Group.

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड, डैलस में रेडियो का डैड, फोनेशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

डालस की धड़कन 104.9 FM फनीजिया रेडियो।

0: बॉक्सेस उठा ले रे।
1: अरे बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL वर्ल्ड वाइड को बुलाते हैं।
2: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
1: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
2: इंडिया तक।
1: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और वर्ल्ड वाइड कम्प्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज।
3: SFL वर्ल्ड वाइड, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
4: जिंदगी एक रंगमंच है
5: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल। रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो। दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन। फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग, एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेस